0: 90.5 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद से, देश का चैनल, देश के लिए आपने ट्यून किया है। आइए श्रोताओं, आपको बताते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। कार्यक्रम जीवन सौरभ आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर के बाद। अक्षय निधि कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा 7:10 से, जिसमें आज आप सुनेंगे प्रथम मंडल से सूक्त 142 का वाचन। भक्ति संगीत का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 7:20 से। हमारा नियमित कार्यक्रम वतन का राग आप सुनते हैं प्रातः 8 और संध्या 6। श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित रहेगा गणेश दामोदर सावरकर की जयंती पर। इतिहास के पन्नों से ये कार्यक्रम हम लेकर आएंगे देवगढ़ का गौड़ राज्य पर केंद्रित। 8:30 होगा इस कार्यक्रम का प्रसारण समय। सुबह 9 आप सुनेंगे कार्यक्रम योग संवाद। आज का विषय होगा श्री राम की वैराग्य दशा में शरीर की निंदा। सुबह 9:30 पर होगा कार्यक्रम भारत विभूति। ये कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा भिखारी ठाकुर पर। भोपाल शहर की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियां आप सुनते हैं कार्यक्रम परिक्रमा में। आज ये कार्यक्रम हम लेकर आएंगे आपके लिए सुबह 10:00। 10:30 पर होगा कार्यक्रम आजाद हिंद। आज का आकर्षण लाला लाजपत राय। 14 का भक्ति गायन आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरसागर में दिन में 11:00 से। और 11:30 पर कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद का एपिसोड 71 आज प्रसारित किया जाएगा। तो जुड़े रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रमों को प्रातः 7 से रात्रि 10 तक निरंतर सुन सकते हैं। ट्यून कीजिए 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है अब वो कार्यक्रम जीवन सौरभ।
1: जीवन सौरभ।
2: एक चिड़िया ने अपने बच्चों के साथ खेत में एक बहुत ही सुंदर घोंसला बनाया हुआ था। जब खेत में फसल अच्छी तरह से पक गई, तब किसान उस खेत पर गया और बोला, कल पड़ोसियों को बुलाकर फसल काटने के लिए कहूंगा। चिड़िया के बच्चों ने सुना तो पूरी तरह से डर गए और सहम गए। चिड़िया बोली, बिल्कुल भी घबराओ मत, हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। किसान कल फसल काटने नहीं आएगा। अगले दिन किसान पड़ोसियों के ना पहुंचने पर ये कहते हुए चला गया कि अगले दिन अपने रिश्तेदारों को लेकर आऊंगा फसल काटने। चिड़िया के बच्चे पूरी तरह से डर गए। चिड़िया बोली, बिल्कुल डरो मत, कल किसान फसल काटने नहीं आएगा। अगले दिन किसान पहुंचा तो उसने देखा कि कोई भी रिश्तेदार वहां नहीं पहुंचा था। तब किसान ने कहा, हमें अब पड़ोसियों और रिश्तेदारों के भरोसे नहीं रहना चाहिए, कल मैं स्वयं आकर फसल काटूंगा, ये कहकर चला गया। चिड़िया के बच्चे आपस में बात करने लगे कि हम सुरक्षित हैं, ये तो रोज का है। तब चिड़िया अपने बच्चों को कहती है, हम अब बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि अब स्वयं किसान ने ठाना है कि वो फसल काटेगा, क्योंकि किसान किसी पर भी निर्भर नहीं है। जब इंसान स्वयं ये निर्धारित करता है कि ये कार्य करना है तो वो अवश्य ही करता है। इसलिए हमको हमारे घर के लिए जल्दी ही दूसरी जगह तलाशनी होगी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान किसी भी कार्य के लिए दूसरे पर निर्भर ना रहकर इंसान जब स्वयं कार्य करने का ठान लेता है तो वो अवश्य ही उस कार्य को पूरा करता है।
1: जीवन सौरभ।
0: ₹90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम जीवन सौरभ। सुबह 7:07 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
4: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 142वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य, देवता हैं इद्म, समिद्ध अग्नि, तनूनपात, नराशंस, इड, बहिर, देवी द्वार, ऊषा सानकता, दिव्य होता प्रचेतस, देवियां हैं सरस्वती, इड़ा, भारती, त्वष्टा, वनस्पति, स्वाहाकृति और इंद्र। छंद है अनुष्टुप।
5: समिद्धो अग्न आवह देवाम अद्य यतस्रुचे तंतुम तनुष्व पूर्व्यम सुत सोमाय दाशुसे। हे अग्निदेव, आप प्रज्वलित होकर हविदाता यजमान के लिए देवताओं का आवाहन करें। सोम अभिषव करता दानी यजमान के लिए प्राचीन यज्ञ के संपादनार्थ अपनी ज्वालाओं को बढ़ाएं। घृतवंतमुप मासी मधुमंतम तनूनपात यज्ञम विप्रस्य मावतः शशमानस्य दाशुषः। शरीर के आरोग्य को बढ़ाने वाले हे अग्ने, आपके प्रशंसक तथा दानदाता हम ब्रह्मनिष्ठ विद्वानों द्वारा किए जाने वाले माधुर्य से युक्त तथा तेजस्वी यज्ञ में आकर आप प्रतिष्ठित हों। शुचिः पावको अद्भुतो मध्वा यज्ञम् मिमिक्षति नराशंसस्त्रिरा दिवो देवो देवेषु यज्ञेयः। हे अग्निदेव, आप देवताओं द्वारा पूजनीय, मनुष्यों द्वारा प्रशंसनीय, पवित्र रहकर दूसरों को भी पवित्र करने वाले आश्चर्यप्रद और तेजस्वी हैं। आप दिव्य लोक के मधुर रस रूपी यज्ञ को दिन में 3 बार सिंचित करें। ईडितो अग्न आवहेन्द्रम चित्रमिह प्रियम इयम हित्वा मतिर्ममाच्छा सुजिह्व वच्यते। हे अग्निदेव, आप प्रशंसित होकर विलक्षण कर्मों के निर्वाहक प्रिय इंद्रदेव को हमारे इस यज्ञ में लेकर आएं। हे सुंदर ज्वाला रूपी जिह्वा युक्त अग्निदेव, हमारी ये बुद्धियां सदैव आपकी ही प्रार्थनाएं करती हैं। स्त्रिणा नासो यतस्रुचो बहिर्यज्ञे स्वध्वरे वृंजे देवव्यचस्त ममिंद्राय शर्म सप्रथः। स्रुवा पात्र को धारण किए हुए ऋत्विगण श्रेष्ठ यज्ञ में कुश के आसनों को फैलाते हैं तथा देवों के आवाहक विशाल यज्ञ स्थल को इंद्रदेव के लिए शोभायमान करते हैं। विश्रयंता मृता वृधा प्रयै देवेभ्यो महीहि पावकासः पुरुस्प्रिहो द्वारो देवी रसश्चतः। महिमा युक्त यज्ञ का विकास करने वाले पवित्र सबके प्रिय अलग अलग स्थित दिव्य द्वार देवत्व की प्राप्ति के लिए यहां खुल जाए। आभन्दमाने उपाके नक्तो शासो उपेशसा यह्वी ऋतस्य मातरा सीदताम बरहिरा सुमत। मिलकर रहने वाली श्रेष्ठ स्वरूप युक्त महिमामय यज्ञ कर्म को सिद्ध करने वाली पारस्परिक सहयोग की प्रतीक रात्रि और उषा हमारे संबंध में श्रेष्ठ विचारधारा रखते हुए इस यज्ञ में आकर विराजमान हों। मंद्र जिह्वा जुगुर्वणी होतारा दैव्या कवि यज्ञम नो यक्षतामिमं सिद्ध्रमद्य दिविस्पृशम्। वाणी के प्रयोक्ता मेधावी उच्चारण विद्या में प्रवीण दैवी गुणों से संपन्न यज्ञ संचालक वर्तमान विशिष्ट आध्यात्मिक उपलब्धियों द्वारा देवत्व पद को प्राप्त कराने वाले हमारे देव यज्ञ में उपस्थित होकर यज्ञ संपन्न कराएं। शुचिर देवेश्वर पिता होत्रा मरुत्सु भारती इडा सरस्वती मही बरिहि सीदन्तु यज्ञियाः। देवताओं और मरुद्गणों में पूजनीय पवित्र यज्ञीय कर्मों के निर्वाहक होता रूप भारती सरस्वती और इडा इस यज्ञ में उपस्थित हों। तन्नस्तुरीप मद्भुतं पुर वारुं पुरुत्मना त्वष्टा पोषाय विश्यतु राये नाभा नो अस्मयुः। हमारे हितैषी निर्माता हे त्वष्टा देव, आप हम सबके द्वारा इच्छित शीघ्र प्रवाहित होने वाले अंतरिक्षस्थ अद्भुत मेघों से जलवृष्टि द्वारा सबके लिए पौष्टिक अन्न और ऐश्वर्यों को प्रदान करें। अवसृजन नुपत्मना देवान्यक्षी वनस्पते अग्निर्हव्या सुषुदति देवो देवेशु मेधिरः। हे वनों के अधिपति, आप यज्ञीय कर्मों की प्रेरणा से युक्त होकर देवताओं के निमित्त अग्नि प्रज्वलित करें। ज्ञानवान अग्निदेव को समर्पित आहुतियां सूक्ष्म रूप होकर देवताओं तक पहुंचती हैं। पूषणवते मरुत्वते विश्व देवाय वायवे स्वाहा गायत्र वेपसे हव्यमिंद्राय कर्तन। हम पूषा देव और मरुद्गणों से युक्त सर्वदेव समूह के लिए वायुदेव के लिए तथा गायत्री साधकों के संरक्षक इंद्रदेव के लिए श्रेष्ठ हव्य समर्पित करें। स्वाहा कृतान्या गहियुप हव्यानि वीतये इंद्रा गहि श्रुधि हवम त्वाम हवन्ते अध्वरे। हे इंद्रदेव, आप श्रद्धा भावना से समर्पित की गई आहुतियों को ग्रहण करने के लिए यहाँ पधारें। यज्ञीय सत्कर्मों के लिए मनुष्य आपको आवाहित कर रहे हैं। उनके निवेदन को सुनकर उनके सहयोग हेतु अवश्य आए।
6: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 142वें सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
0: हम रेडियो आजाद हिंद से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भक्ति संगीत।

भगवान मुनियों के मन को भी अगम है, वहीं भक्तों के लिए वे माता पिता के समान सुगम हैं। प्रभु समुद्र के समान हैं, स्वभाव से ही मित्र और अपने आप ही प्रेम करने वाले हैं।

हे मनुष्य, यह संसार एक घने वन की भांति है। जिस प्रकार सघन वन में जहरीले सर्प कीटादि निवास करते हैं, उसी प्रकार संसार में अनेक दुख द्वंद हैं। संसार के सभी विषय विकारों के फंदे त्याग कर प्रभु के चरणों में भजन कर

ईश्वर की शक्ति का दूसरा नाम प्रेम है, जो असीम और सर्वव्यापक सत्य है। हमारी बुद्धि की प्रधानता के कारण हम ईश्वरीय प्रेम के प्रति अधिक जागरूक नहीं होते, क्योंकि हमारी बुद्धि केवल तर्क वितर्क या मूल्यांकन ही कर सकती है, ये उस असीम और अनश्वर को नहीं समझ सकती।

भक्ति संगीत कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से। और श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये अगली और अंतिम भक्ति रचना कार्यक्रम भक्ति संगीत में।

श्रोताओं, इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम भक्ति संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम रेडियो आजाद हिंद से बोल रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजे हैं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम वतन का राग। श्रोताओं, आज ये कार्यक्रम केंद्रित है गणेश दामोदर सावरकर की जयंती पर।

भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के महायज्ञ में अनगिनत देशभक्तों ने अपना योगदान दिया, जिनकी गाथाएं इतिहास के पन्नों में आज भी धड़क रही हैं। इन गाथाओं में है अंग्रेजों की कुटिल चाल, उनके बर्बर अत्याचार, इन अत्याचारों के विरुद्ध प्रतिरोध, आंदोलन, सशस्त्र क्रांति और आत्म बलिदान के किस्से। ब्रिटिश राज के विरुद्ध तन मन धन से युद्ध करते हुए अपने राष्ट्रवादी लेखन से अनगिनत युवाओं को जागृत करने वाले, उन्हें क्रांति पथ पर चलने हेतु प्रेरित करने वाले महान राष्ट्रभक्त थे गणेश दामोदर सावरकर। गणेश दामोदर सावरकर का जन्म 13 जून 1879 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के पास स्थित भगूर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिताजी का नाम दामोदर सावरकर और माताजी का नाम राधाबाई था। चार भाई बहनों में गणेश सबसे बड़े थे। विनायक दामोदर सावरकर, जो वीर सावरकर के नाम से प्रसिद्ध थे, उनके छोटे भाई थे। इसके अलावा नारायण दामोदर सावरकर उनके भाई और मैनाबाई उनकी बहन थीं। ये एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार था, इसीलिए घर में एक आध्यात्मिक वातावरण भी था। गणेश दामोदर सावरकर एक तीक्ष्ण मेधा के बालक थे। औपचारिक शिक्षा के साथ ही स्वाध्याय में भी उनकी रुचि थी। वो अनेक खेलों में पारंगत थे तथा अपने पिता से उन्होंने तलवारबाजी और बंदूक चलाने का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया था। गणेश दामोदर सावरकर यानी बाबा राव पढ़ाई के साथ साथ धर्म, योग और जप तप में भी गहरी रुचि रखते थे। धीरे धीरे उनका मन इन्हीं विषयों में रमने लगा तथा वो इन विषयों के विशेषज्ञों से भी मिलने लगे। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें ये सारा संसार व्यर्थ लगने लगा और वो घर बार छोड़कर संन्यास लेने का मन बनाने लगे।

गणेश दामोदर सावरकर का अंतर्मन उन्हें आध्यात्मिक संसार की ओर खींच रहा था और उनका प्रारब्ध स्वाधीनता संघर्ष की ओर। प्लेग महामारी फैली और उनके पिता इसकी चपेट में आए, जिसके चलते उनका स्वर्गवास हो गया। मां राधाबाई का निधन पहले ही हो चुका था। घर में बड़ा होने के कारण दो छोटे भाइयों और एक बहन को पालने की जिम्मेदारी बाबा राव यानी गणेश दामोदर सावरकर पर आ पड़ी। इस तरह उनके जीवन की एक नई यात्रा आरंभ हुई। उनकी स्कूली शिक्षा मैट्रिक तक ही हो सकी, लेकिन योग, चिकित्सा, वेदांत और ज्योतिष जैसे विषयों का उन्होंने गहन अध्ययन किया। पराधीन भारत की दशा उन्हें विचलित कर देती थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारों से वो बहुत अधिक प्रभावित थे। ये वो समय था जब बंग भंग के बाद स्वदेशी का नारा चारों ओर गूंजने लगा था। गणेश दामोदर सावरकर इस आंदोलन में शामिल हो गए। स्वराज की मांग और उसके प्रयास में वो प्राणपण से जुट गए। उनके छोटे भाई विनायक दामोदर सावरकर भी क्रांति पथ पर चल पड़े थे। तात्या राव ने राष्ट्रभक्त समूह नामक एक गुप्त संस्था की स्थापना की थी। गणेश दामोदर सावरकर इसमें सक्रिय हो गए। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र चेतना से जोड़कर संगठित करने के उद्देश्य से मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना की। गणेश सावरकर मित्र मेला के कार्यवाहक थे। इसके माध्यम से उन्होंने गणेश उत्सव, शिवाजी जयंती और अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर सार्वजनिक भाषणों का आयोजन किया, कविता पाठ का आयोजन किया, ताकि युवा प्रेरित होकर स्वाधीनता के महासंग्राम में शामिल हों। गणेश सावरकर ने युवाओं के मार्गदर्शन के लिए समय समय पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक सहित कई अन्य नेताओं को नासिक में आमंत्रित भी किया। इसका व्यापक प्रभाव हुआ। उन्होंने केसरी, मराठा, लोकमान्य, सकाल और वंदे मातरम जैसे पत्रों में अनेक क्रांतिकारी लेख लिखकर लोगों को जागृत किया। गणेश सावरकर की पहल पर ही आत्मनिष्ठ युवती संघ महिला संगठन भी स्थापित हुआ। अपने सभी प्रयासों के माध्यम से इन संस्थाओं ने युवाओं को राष्ट्र चेतना से भरने का काम किया, देश हेतु अपना सर्वस्व बलिदान करने हेतु प्रेरित किया तथा उन्हें हथियार बांटकर सशस्त्र क्रांति की ज्वाला को और तेज कर दिया। गणेश दामोदर सावरकर और उनके भाई वीर सावरकर ने अपने प्रयासों से नासिक को राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बना दिया। सावरकर बंधु स्वाधीनता की इस लड़ाई में पूरी तरह संलग्न हो गए। उधर वीर सावरकर की पढ़ाई भी जारी थी। वकालत की पढ़ाई करने के लिए वो इंग्लैंड गए, लेकिन गणेश सावरकर ने उनके काम को भी अपने हाथों में ले लिया। दोनों भाइयों ने मिलकर जिस मित्र मेला नामक सोसाइटी की स्थापना की थी, वो अब अभिनव भारत सोसाइटी के नाम से क्रांति कार्य में सक्रिय थी। इस सोसाइटी में सैकड़ों क्रांतिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए, जिसकी शाखाएं भारत के विभिन्न हिस्सों में थीं। वीर सावरकर जब लंदन गए तो ये सोसाइटी लंदन में भी सक्रिय हो गई, और इधर भारत में गणेश दामोदर सावरकर इसे ऊर्जा देते रहे। विनायक सावरकर इंग्लैंड से देशभक्ति कविताएं और अन्य सामग्री भारत भेजते। गणेश दामोदर सावरकर इसे मुद्रित करवाकर वितरण करवाने का काम करते। इसके साथ ही वो अभिनव भारत के लिए धन एकत्रित करने का कार्य भी लगातार कर रहे थे, ताकि क्रांति कार्य में कोई बाधा न आए। इस तरह उनकी क्रांति गतिविधियां लगातार जारी रहीं।

गणेश दामोदर सावरकर एक बहुत अच्छे लेखक भी थे। उनके लेखों और किताबों का प्रभाव लोगों पर बहुत गहरा हुआ करता था। अनगिनत युवा उनके विचारों से प्रेरित होकर राष्ट्र सेवा हेतु समर्पित हुए और अनेक लोगों ने भारत की स्वाधीनता के लिए सशस्त्र क्रांति की राह पकड़ी। यही कारण है कि सावरकर बंधुओं की गतिविधियों पर अंग्रेजों की कड़ी नजर रहा करती थी। गणेश सावरकर ने अंग्रेजी में एक किताब लिखी, इंडिया एज अ नेशन। ये किताब जब्त न हो इसलिए उन्होंने इसे दुर्गानंद के छद्म नाम से लिखा, लेकिन अंग्रेजों को इस किताब और इसके मूल लेखक की भनक लग गई। इस किताब को प्रतिबंधित कर दिया गया और सन 1909 में नासिक से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सन 1909 में ही नासिक के कलेक्टर जैक्सन को अनंत गोपाल कन्हेरे, अन्ना कर्वे और विनायक देशपांडे ने मौत के घाट उतार दिया। अंग्रेजों ने यह माना कि नासिक हत्याकांड में सावरकर बंधुओं का ही हाथ है, क्योंकि इसमें अभिनव भारत सोसाइटी के 27 सदस्यों को दोषी ठहराया गया था। ये पाया गया कि वीर सावरकर द्वारा लंदन से भेजी गई पिस्तौल से ही जैक्सन की हत्या की गई है। मुकदमा चला और गणेश सावरकर को आजीवन कारावास, काला पानी और सभी संपत्ति जब्त करने के साथ ही सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। अंडमान की सेलुलर जेल में उन्होंने असीम यातनाएं सही। उन्हें प्रतीक्षा थी तो केवल इस बात की कि छोटा भाई वीर सावरकर जब वकालत की पढ़ाई पूरी करके आएगा तो उन्हें रिहा करवा लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वीर सावरकर को मदनलाल ढींगरा के साथ एक हत्या के जुर्म में अपराधी ठहराया गया और लंबी सजा देकर भारत भेज दिया गया और यहां से वो भी अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिए गए। दोनों भाई एक ही जेल की अलग अलग बैरकों में सालों रहे। उनके सबसे छोटे भाई नारायण राव ने अपने भाइयों की रिहाई के लिए सघन प्रयास किए। जेल यातना से गणेश सावरकर का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था। अंततः नारायण राव के प्रयासों से दोनों भाई सन 1921 में अंडमान जेल से रिहा हुए, लेकिन उनकी सजा पूरी नहीं हुई थी इसलिए भारत में वो विभिन्न जेलों में रखे गए। अंततः सन 1922 में गणेश सावरकर साबरमती जेल से रिहा हुए। जेल से छूटने के बाद वो डॉक्टर हेडगेवार के संपर्क में आए तथा बहुसंख्य भारतीयों को एकजुट करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना में सहयोग किया। राष्ट्र मीमांसा, वीर वैरागी, वीरा रत्न, ख्रिस्ताचे हिंदुत्व, हिंदुस्तान चे राष्ट्र स्वरूप जैसी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने भारतवासियों को जागृत किया। आजीवन राष्ट्र सेवा करते हुए 16 मार्च सन 1945 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए, और मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा, जो लेकर आया हूं कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। श्रोताओं, हमने पिछले एपिसोड्स में गढ़ा के गोंड राज्य के गौरवशाली इतिहास के बारे में सुना। मध्य भारत में राजा संग्राम शाह द्वारा स्थापित बावनगढ़, उनकी स्थापत्य शैली, सिक्कों आदि के माध्यम से हमने उस काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थितियों को जाना। इसी कड़ी में गढ़ा की वीरांगना रानी दुर्गावती के द्वारा निर्मित पचमठा मंदिर शैली, जल प्रबंधन और उनके द्वारा वल्लभ संप्रदाय को दिए गए संरक्षण के बारे में जाना। परिणाम स्वरूप रानी दुर्गावती तथा मुगल सेनापति आसफ खां के मध्य सन 1564 ईस्वी में नरई का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में गोंड रानी वीरांगना दुर्गावती के अदम्य साहस, शौर्य एवं बलिदान का इतिहास भी जाना। गोंड रानी दुर्गावती के प्रति हम सभी नतमस्तक हैं। भारत के इतिहास में वो स्वर्णाक्षरों की तरह सदा दैदीप्यमान रहेंगी। पिछले एपिसोड में हमने रानी दुर्गावती के वंशज हृदय शाह के बारे में सुना। वीरांगना रानी दुर्गावती के लगभग 70 वर्षों बाद राजा हृदय शाह ने 1635 ईस्वी में गढ़ा राज्य की राजगद्दी संभाली। उन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित करके वर्तमान मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थापित की। उन्होंने अपनी राजधानी का नाम रखा रामनगर। हमने रामनगर के नगर नियोजन और स्थापत्य कला के बारे में सुना। इसके अलावा कवि हृदय राजा हृदय शाह के द्वारा संगीत के क्षेत्र में दिए गए योगदान, हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश नामक पुस्तकों के बारे में भी चर्चा की। हमारे साथ इन सभी चर्चाओं में शामिल रही हैं अब तक प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर पूजा सक्सेना, जिन्होंने ये सब जानकारियां आप तक पहुंचाई हैं। आज भी पूजा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी आपका।
3: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो पूजा जी, इस एपिसोड को शुरू करने के पहले मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि राजा संग्राम शाह, वीरांगना रानी दुर्गावती और राजा हृदय शाह के योगदान के साथ गढ़ा मंडला राज्य का गौरवशाली इतिहास आपने हम सबको सुनाया, लेकिन क्या इनके समकालीन और भी गोंड राज्य हमें मध्य भारत में देखने को मिलते हैं?
3: बिल्कुल, वीरांगना रानी दुर्गावती के समकालीन मध्य भारत में कुछ अन्य छोटे राज्य भी थे जिनकी जानकारी हमको मिलती है। जैसे एक है गरोला का राजा, दनकी का राजा, खटोला का राजा, मुग्धा, मंडला, देवहार और लांजी का राजा।
2: अच्छा।
3: इनकी कुछ कुछ जानकारियां हमें यहाँ वहां मिलती हैं। इनमें ही एक और नाम मिलता है हरिया का राज्य।
2: अच्छा।
3: हरियागढ़ भी कहलाता था ये, जो आज मध्य प्रदेश है उसके छिंदवाड़ा जिले के आसपास था ये हरियागढ़।
2: अरे वाह।
3: और इसी के साथ में एक और राज्य का जिक्र मिलता है जो गोंड राज्य था, जिसका नाम था देवगढ़।
2: जी।
3: आज भी अगर छिंदवाड़ा जाते हैं तो इस देवगढ़ राज्य की जो ऐतिहासिक विरासतें हैं उनको हम देख सकते हैं। तो देवगढ़ राज्य के उद्भव की बहुत सी कथाएं हैं। पहली कथा का उल्लेख हमको एक 1864 ईस्वी का दस्तावेज है जिसमें मिलता है। तो इस दस्तावेज के अनुसार देवगढ़ का जो गोंड राजवंश था वो अपनी वंशावली महाभारत में वर्णित एक राजा है विचित्रवीर्य, उससे जोड़ते हैं।
2: अच्छा।
3: और कहते हैं कि इस वंशावली की 25वीं पीढ़ी में राजा रूपशाह हुए और इसी वंशावली में 51वीं पीढ़ी में महिपत शाह हुए, 52वीं पीढ़ी में सुरबाशाह और 53वीं पीढ़ी में बीरवान शाह का नाम आता है। और इसी वंशावली की 54वीं पीढ़ी में हमको एक राजा का नाम दिखाई पड़ता है, वो है जाटवा शाह अजान बाहू। तो देवगढ़ के यही प्रतापी राजा हुए हैं जिन्हें हम जाटवा के नाम से जानते हैं।
2: तो ये भी देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात पूजा जी ने हमें बताई कि गोंड राज्य महाभारत से भी संबंधित यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, जो कि निश्चित रूप से पूजा जी और हमें कुछ आगे बताएंगी। और इसके पहले कि हम अजान बाहू जाटवा की बात करें, कैसे वो राजा बने ये बात करें, एक चीज जरूर मेरे ध्यान में आ रही है, मुझे लग रहा है कि मैं आपसे ये जिक्र करूं श्रोताओं कि देखिए छिंदवाड़ा आज भी कितना हरा भरा है। और पूजा जी ने बताया कि तब जब वो गोंड राज्य वहां पर था तब हरियागढ़ उसका नाम था, तो निश्चित रूप से वो हरियाली के कारण ही वहां पर हरियागढ़ रहा होगा। और फिर छिंदवाड़ा भी जो वहां छींद के पेड़ कहते हैं कि वो जो उसके कारण छिंदवाड़ा नाम पड़ा है। तो पूजा जी अब आगे ये बताइए हमें कि देवगढ़ के गोंड राज्य की 54वीं पीढ़ी में जो जाटवा शाह अजान बाहू हुए वो राजा कैसे बने,
3: जाटवा कैसे राजा बने, इसकी एक लोक कथा हमको मिलती है
2: जी।
3: कहते हैं कि छिंदवाड़ा और उसके आसपास गवलियों का शासन था
2: जी।
3: यहाँ दो गवली भाई थे, एक का नाम था रणशूर और एक का नाम था घनशूर।
2: अच्छा।
3: तो रणशूर घनशूर का यहाँ पर शासन हुआ करता था और जाटवा गोंड जो था उनके यहाँ नौकरी करता था।
2: अच्छा।
3: ऐसा भी मानते हैं कि जाटवा बड़ा शक्तिशाली था। एक दिन क्या हुआ कि किले का जो दरवाजा होता है वो किले में जमीन पर रखा हुआ था, तो जाटवा ने उस भारी भरकम दरवाजे को, लकड़ी के दरवाजे को अपने हाथों से उठा लिया।
2: अच्छा।
3: और ये बात जब रणशूर घनशूर को पता चली
2: जी।
3: तो वो बहुत चिंतित हो गए क्योंकि इतना शक्तिशाली किसी व्यक्ति का अपने किले में होना एक चिंता का विषय किसी भी राजा के लिए होता है। अब रणशूर और घनशूर ने एक योजना बनाई। दिवाली के दिन जैसी की परंपरा है, खेल वगैरह होते हैं, शक्ति प्रदर्शन होता है, तो रणशूर घनशूर ने जाटवा को एक लकड़ी की तलवार दे दी और कहा कि ये जो भैंसा है इसको इस तलवार से मार दे।
2: अच्छा।
3: अब जैसी की योजना थी कि तलवार तो लकड़ी की थी, तो जब जाटवा वार करेगा तो भैंसा उल्टा उसको मार देगा। लेकिन जैसे ही वो तलवार जाटवा के हाथ में आई उसमें तो देवी शक्ति आ गई और जाटवा ने जैसे ही भैंसा पर वार किया उसका वध हो गया। और अगले ही पल
2: जी
3: कहते हैं कि जाटवा हाथी पर विराजमान हुआ और उसने उसी तलवार से रणशूर और घनशूर का वध कर दिया। तो इस तरीके से जाटवा जो है वो देवगढ़ का राजा बना।
2: तो मतलब बाजी यहाँ पर पूरी तरह से उल्टी पड़ गई।
3: हाँ, आज भी जो देवगढ़ का किला है छिंदवाड़ा में वहां पर एक बुर्ज है
2: जी,
3: और इस बुर्ज को देवी का स्थान माना जाता है
2: जी।
3: और जैसा कि आप जानते भी होंगे शायद कि देवगढ़ का जो गोंड राजवंश था उनके वंशज आज भी हैं, नागपुर में निवासरत हैं। तो आज भी उनके यहाँ कोई धार्मिक उत्सव होता है या पूजा पाठ होता है, या जैसे मुंडन हुआ, विवाह के उपरांत की जो संस्कार है, तो वो आज भी वे देवगढ़ आते हैं और इसी बुर्ज पर देवी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं।
2: ये किस तन की बात है पूजा जी, ये कब वो देवगढ़ के राजा बने?
3: अगर हम ऐतिहासिक तथ्यों पर जाएं तो स्पष्ट होता है कि 1584 ईस्वी के आसपास जाटवा जो है देवगढ़ के राजा बन चुके थे। और फिर उनके वंशजों के बारे में भी हमें पता चलता है और ये भी पता चलता है कि उनका शासन जाटवा का 1620 ईस्वी तक रहा होगा, यानी कि 1584 ईस्वी से लेके 1620 ईस्वी तक। तो देवगढ़ में जो उनके बाद के जो उनके वंशज हुए वो हुए दलशाह, जो 1620 में राजा बने
2: जी।
3: फिर दलशाह के बाद कोक्षा हुए, उनका राजत्व काल आरंभ होता है 1634 से, और इसके बाद केसरी शाह हुए हैं। और इनके बाद के जो राजा हैं उन्होंने भी अपना नाम जाटवा रखा, तो वो जाटवा द्वितीय के नाम से जाने जाते हैं
2: जी।
3: और उनका शासन काल है 1640 से 1657 तक। फिर कोक्षा द्वितीय हुए हैं 1657 से लेके 1687 के बीच में
2: जी।
3: और इसके बाद हमको एक और राजा का नाम मिलता है बख्त बुलंद
2: जी,
3: जो कि 1687 से 1700 ईस्वी तक आते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे राजा हैं जो बहुत शक्तिशाली नहीं रहे और फिर बाद में देवगढ़ राज्य का विलय नागपुर के मराठा राज्य में हो जाता है।
2: श्रोताओं, हमारे पिछले कुछ एपिसोड्स में भी हमें पूजा जी ने बताया था कि गोंड राज्य के बारे में, रानी दुर्गावती के बारे में आईना इकबरी में स्पष्ट उल्लेख है। और यहाँ भी ये पता चलता है आईना इकबरी से कि राजा जाटवा के पास 2000 घुड़सवार, 50,000 पैदल सैनिक और 1,001 से ज्यादा हाथी थे। पूजा जी, ये हाथियों से संबंधित एक कथा जो कि देवगढ़ से जुड़ी हुई है, वो हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को सुनाइए।
3: हाथियों से संबंधित एक बड़ी रोचक कथा देवगढ़ के साथ भी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि देवगढ़ में बहुत से हाथी थे। जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि हाथियों का उपयोग उस समय बहुत जरूरी था, सेना में, यातायात, माल ढोने में, भारी वाहन और या फिर जो सामान को ढकेलने में, निर्माण कार्य में, मनोरंजन, खेल, शानो शौकत सभी में तो हाथियों का उपयोग होता था। तो इसलिए मुगलों की नजर विंध्याचल और सतपुड़ा के वन क्षेत्रों में लगी रहती थी, क्योंकि यहाँ अच्छे किस्म के हाथी होते थे और वो भी ऐसे हाथी जिन्हें गोंड बहुत ही अच्छा प्रशिक्षित किया करते थे। तो हमेशा मुगल चाहते थे कि उनको यहाँ के हाथी मिल जाएं। ये समय है दिल्ली के मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल का। उनका समय था 1634 ईस्वी से 1644 ईस्वी के बीच में
2: जी।
3: और यहाँ पर उस समय जो हमने देवगढ़ के जाटवा राजा की बात की, उनके वंशज थे जाटवा द्वितीय।
2: अच्छा।
3: उनका शासन चल रहा था। तो जाटवा द्वितीय के समय की ये घटना है। कहते हैं कि जाटवा द्वितीय के पास एक बड़ा ही विचित्र हाथी था, जटाशंकर।
2: अच्छा।
3: और उसकी चर्चा बड़ी दूर दूर तक फैल चुकी थी। जब मुगल शासक शाहजहां को उस विचित्र और बलशाली हाथी जटाशंकर के बारे में पता चला, तो शाहजहां किसी भी कीमत पर उस हाथी को हासिल करना चाहते थे
2: जी।
3: तो उन्होंने अपने संदेश वाहकों को देवगढ़ के राजा जाटवा द्वितीय के पास भेजा और उनसे कहा कि जो भी आपके पास ये विचित्र हाथी है जटाशंकर, वो हमें दे दें। लेकिन जाटवा द्वितीय ने उन्हें कहलवाया कि उनके पास ऐसा कोई हाथी नहीं है।
2: अच्छा।
3: लेकिन शाहजहां उनकी इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ और वे बार बार संदेश भिजवाते रहे और हर बार जाटवा द्वितीय इस बात से इनकार करते रहे कि उनके पास किसी भी प्रकार का कोई भी जटाशंकर नाम का कोई विचित्र हाथी है
2: जी।
3: अब बात आगे बढ़ गई। हाथी के लिए मुगल शासक कितना व्याकुल था, इसका हमें पता चलता है जब शाहजहां और उनका जो बेटा था औरंगजेब
2: जी,
3: दोनों के बीच में 5 पत्र इस संबंध में लिखे गए हैं।
2: अच्छा।
3: जो अब ऐतिहासिक दस्तावेज हैं
2: जी।
3: तो उस समय जब शाहजहां दिल्ली के शासक थे तो उनका जो शहजादा था औरंगजेब, वो दक्कन का वायसराय था
2: जी।
3: इसलिए औरंगजेब दक्कन और उसके आसपास के मामले देखा करता था
2: जी।
3: तो देवगढ़ भी उसी क्षेत्र के आसपास था, देवगढ़ पर भी औरंगजेब ही नजर रखा करता।
2: अच्छा।
3: था। तो शाहजहां ने औरंगजेब को पत्र लिखकर सूचित किया कि देवगढ़ के राजा जाटवा के पास जटाशंकर नाम का एक विचित्र हाथी है और वह इसे कैसे भी प्राप्त करके दिल्ली ले आए। ये 5 पत्र जो हैं, ये आदाबे आलमगिरी में संग्रहित हैं।
2: अच्छा।
3: और इन पत्रों को अंग्रेज विद्वान विल्स ने अनुवाद किया है।
2: तो क्या उन पत्रों का, उन खतों का जो भी मजमून था वो कुछ पता चल सका है कि उनमें क्या लिखा था?
3: बिल्कुल। तो जैसे पहला पत्र है, तो पत्र औरंगजेब ने लिखा है शाहजहां को और उसने कहा कि आपने जैसा कि संदेश भिजवाया था, हमने देवगढ़ से 170 हाथी हासिल कर लिए हैं।
2: अच्छा।
3: इनमें से कोई सा भी हाथी जटाशंकर नहीं है। अभी भी उसके पास, यानी देवगढ़ के राजा के पास 200 हाथी और हैं। इनमें से कौन सा हाथी जटाशंकर हो सकता है, हमें नहीं पता। आगे वह लिखता है कि मैंने एक अधिकारी को देवगढ़ यह पता लगाने के लिए गुप्त रूप से भेजा था कि देवगढ़ में अब कितने हाथी हैं और जटाशंकर उनमें से कौन सा हाथी है। लेकिन वह अधिकारी 3 माह वहां छुप कर रहा और आखिर तक उसे जटाशंकर नाम का कोई हाथी प्राप्ति नहीं हुआ।
2: अच्छा।
3: फिर वह आगे लिखता है कि यह उचित होगा कि महामहिम शाहजहां, जिसने भी आपको जटाशंकर हाथी के बारे में जानकारी दी थी, उस व्यक्ति से ये पता करें कि उसे ये जानकारी कहां से कैसे मिली, तो फिर मैं जटाशंकर को ढूंढ पाऊंगा।
2: ये तो भाई हाथी ना हो गया, रहस्य हो गया। ऐसा लग रहा है हाथी नहीं, ये सुई ढूंढ रहे हैं और वो सुई इन्हें मिल नहीं रही। तो फिर क्या हुआ, क्या कोई और पत्र ऐसा मिलता है बाकी के, जो आपने 5 पत्रों का जिक्र किया, क्या अगले पत्रों में कुछ जिक्र हुआ कि जटाशंकर वास्तव में था या नहीं, मिला या नहीं?
3: दूसरा पत्र शाहजहां का है
2: जी,
3: और जिसमें वह फिर से जटाशंकर और अन्य हाथियों की जानकारी मांगता है। तीसरे पत्र में शहजादा औरंगजेब लिखता है कि वह चांदा के शासक से जटाशंकर के बारे में पता लगाने के लिए मदद ले रहा है, यानी दूर दूर तक के ये पता किया जा रहा है कि देवगढ़ में जटाशंकर नाम का हाथी है क्या और है तो कैसे मिलेगा। उसने देवगढ़ में भी चप्पे चप्पे पर अपने गुप्तचर लगा दिए हैं और जल्दी ही इस मामले में सफलता मिलेगी, उसने इस पत्र में ऐसी आशा व्यक्त की है। लेकिन तब भी जटाशंकर हाथी के बारे में औरंगजेब कुछ भी पता नहीं लगा पाया। तब औरंगजेब ने चौथे पत्र में लिखा कि मुझे अपने पत्र का जवाब आपसे प्राप्त हुआ है, आपने पत्र में निर्देश दिया है। ये पत्र वो शाहजहां को लिख रहे हैं, अपने पिता को लिख रहे हैं
2: जी, जी।
3: और उसमें वो लिखते हैं कि शाहजहां को कि आपने पत्र में निर्देश दिया है कि देवगढ़ के जमींदार से पूरा कर वसूल कर लिया जाए
2: जी।
3: और जटाशंकर नाम के हाथी के अलावा भी जितने हाथी हैं सभी हाथियों को अपने कब्जे में ले लिया जाए। आपके आदेशानुसार मैंने मिर्जा खान और हदीदा खान को रवाना कर दिया है। ऐसी आशा है कि हमारी कोशिशों से जल्दी ही सफलता मिलेगी और देवगढ़ के सभी हाथी हमारे कब्जे में होंगे।
2: भाई वाह, ये तो मतलब बहुत ही विचित्र वाकई घटना, हाथी से भी विचित्र घटना तो ये लग रही है। ये इतिहास के जो हमें दस्तावेज हैं, जो ये पत्र हैं, जो पिता पुत्र के बीच में मुगल शासक शाहजहां और औरंगजेब के बीच जो बातचीत हुई है, तो श्रोताओं को भी बहुत ज़्यादा अब यहाँ पर क्यूरियोसिटी हो रही होगी और मैं भी बहुत उत्साहित हूँ कि आखिर वो हाथी मिला या नहीं हुआ। अब पांचवें पत्र का राज भी आप खोल ही दीजिए।
3: जी हाँ, जैसे इस चौथे पत्र से पता चल रहा है कि एक हाथी को पाने के लिए किस तरीके से देवगढ़ पर कर भी लगाया गया और उससे वसूला गया
2: जी।
3: वो भी देखने लायक है। लेकिन जब आखिरी इस पांचवें पत्र से हमें पता चलता है कि मुगल सेना देवगढ़ के सारे हाथियों को हकाल कर ले गई, लेकिन उन्हें जटाशंकर फिर भी नहीं मिला।
2: अच्छा, तो मतलब अभी भी आज ये रहस्य है कि वो वाकई कोई जटाशंकर नाम का विचित्र हाथी था भी या नहीं,
3: या देवगढ़ उसे बचा के ले गया।
2: तो देखिए, इस राज से तो अभी भी पर्दा नहीं हटा है, लेकिन ये किस्सा बहुत दिलचस्प था और साफ इस बात से ये भी पता चलता है कि उस समय कोई भी शासक रहा हो, जबकि शाहजहां दिल्ली पर राज कर रहे थे, मुगल शासक थे, इतिहास में इतना बड़ा नाम आता है, पर वो एक विचित्र हाथी के चलते न सिर्फ उन्होंने पूरे गढ़ा राज्य पर वहां पर बहुत सारा कर लगा दिया, बल्कि एक हाथी को पाने के लिए जितने भी हाथी जाटवा द्वितीय के पास थे वो सब उन्होंने हड़प लिए। तो इससे ये जरूर समझ में आता है कि पशुधन उस समय कितना महत्वपूर्ण होता था और वो भी हाथी जैसा पशु जो न सिर्फ शक्तिशाली था बल्कि वो युद्ध नीति में, युद्ध कला में काम आता था, क्योंकि वो ज़्यादातर प्रशिक्षित होते थे और वो किसी भी राजा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संपत्ति हो सकते थे। पूजा जी, इस बारे में आपसे थोड़ा सा कुछ और जानना चाहेंगे।
3: जी हाँ, ये जो मध्यकाल है इसमें हाथियों का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि यदि आपको व्यापार करना है तब भी माल ढोने के लिए बड़े बड़े हाथियों की आवश्यकता होगी और हाथी शक्तिशाली होते हैं, लंबे समय तक सफर भी कर पाते हैं, यद्यपि धीमे चलते हैं लेकिन प्रशिक्षित होने के कारण उनके साथ का व्यवहार आसान होता है
2: जी।
3: तो हम देख ही रहे हैं कि गोंड राज्यों के आपस में दूसरे राज्यों के साथ व्यापारिक संबंध हैं, हमने गढ़ा के संबंध में भी देखा
2: जी।
3: इसके अलावा युद्ध में तो प्रयोग हो ही रहे हैं, हाथी उस समय सेना का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग था
2: जी।
3: और साथ ही हाथियों का उपयोग निर्माण कार्य में भी बहुत हो रहा था।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: जो मंदिर, महल, किले वगैरह बनते थे उनके जो माल को ढोने के लिए,
2: सामग्री पहुंचाने के लिए, या ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए,
3: ऊंचाई तक पहुंचाना है, या बड़े बड़े जो पाषाण खंड हैं
2: जी,
3: उनको रोलर की सहायता से जो धक्का देकर ले जाया जाता था उसके लिए भी हाथियों का बहुत ही उपयोग होता था। हम मुगल काल की यदि मिनिएचर पेंटिंग्स को भी देखें जिसमें कि किलों का निर्माण हो रहा है या कोई युद्ध का सीन है, तो उसमें भी बहुसंख्या में हमको हाथी नजर आते हैं
2: जी।
3: तो हाथियों का बहुत सारा उपयोग था। और हाँ, इसके अलावा मनोरंजन में भी हाथियों का बहुत ही उपयोग होता रहा, उनसे विविध प्रकार के खेल दिखाना या उनके ऊपर बैठकर तलवारबाजी करना या दूसरे तरीके के खेल। इसके साथ ही जो शाही सवारियां होती थी उसमें भी हाथियों का बड़ा ही उपयोग था। हम लोग देखते हैं ना कि बड़े ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर किले होते हैं
2: जी।
3: और उन किलों पर चढ़ना इतना आसान तो नहीं था, आज भी नहीं है। तो शाही सवारियां जब किलों पर चढ़ती थी तो वो हाथी पर पालकी रखकर ही जाया करते थे, तो उसके लिए भी बड़े उपयोगी थे हाथी।
2: अच्छा, एक एक एक और सवाल जहन में आ रहा है पूजा जी, कि बहुत सारे हम किलों की तरफ, महलों की तरफ जाते हैं तो द्वार पर हाथी जरूर वहां पर बने होते हैं, अंकित होते हैं या फिर दोनों तरफ होते हैं। क्या सिर्फ हाथी, क्योंकि शुभता का प्रतीक भी कहे जाते हैं, सिर्फ इसलिए या फिर कोई और इसके पीछे राज है?
3: जी हाँ, हाथी शुभ तो है ही, इसके साथ ही हाथी राजसी शक्ति का भी प्रतीक है, इसलिए ज्यादातर जगहों पर हमको द्वारों पर हाथियों की प्रतिमाएं मिलती हैं। देवगढ़ का किला जो है उसमें तो एक हाथी द्वार भी है।
2: अच्छा,
3: जिसके बारे में हम आगे जानेंगे।
2: बिल्कुल, हाथी द्वार, हाथी खाना, कितनी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो इतिहास के पन्नों में हमें समझ में आती हैं, हमें दिखाई देती हैं, हम उन्हें पढ़ पाते हैं इतिहास के पन्नों से। कार्यक्रम चल रहा है और पूजा जी प्रसिद्ध पुरातत्वविद हमें देवगढ़ के बारे में बता रही हैं, जाटवा के बारे में उन्होंने बताया, गोंड शासक जाटवा और जाटवा द्वितीय की कहानी चल रही थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प बात आज उन्होंने बताई। उस राज से तो पर्दा इतिहास के जो दस्तावेज है उसके जरिए भी नहीं हट पाया है, लेकिन पूजा जी से जानेंगे हम अपने अगले एपिसोड में कि देवगढ़ की जो स्थापत्य शैली थी वो किस तरह की थी, जो नगरीय नियोजन था वो किस तरह का था। क्योंकि आज समय हो गया है कार्यक्रम में आपसे विदा लेने का, तो पूजा जी को हम धन्यवाद देते हैं। पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी दिलचस्प जानकारियां देने के लिए।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपसे मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में, फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाजत। कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से आज का अंक यहीं समाप्त होता है। परिकल्पना और निर्देशन इस कार्यक्रम का सुश्री अदिति गौड़ का है, ध्वनि अंकन और ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, और मुझे यानी अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। इतिहास के पन्नों से, इतिहास के

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, भारतीय चिंतन परंपरा कहती रही है कि माटी का ये तन माटी में ही मिल जाएगा। वसंत की तरह यौवन के साथ ही पतझड़ की तरह उजाड़ भी इस शरीर का सच है। जो शरीर आज यौवन के गर्व से भरा है, वही कल समय के स्पर्श से बदल जाएगा। जो मुख आज सौंदर्य का दर्पण प्रतीत होता है, वो भी एक दिन काल के प्रवाह में अपनी चमक खो देगा। परिवर्तन ही इस देह का स्वभाव है और नश्वरता ही इसका अंतिम सत्य है। योग वासिष्ठ के वैराग्य प्रकरण में आज आप सुनेंगे श्री राम के उन गंभीर और हृदय स्पर्शी विचारों को, जिनमें वो शरीर के मोह पर प्रश्न उठाते हैं। संसार जिस देह को अपना सर्वस्व मानकर उसके लिए संघर्ष करता है, भगवान श्री राम उसी देह की असारता का विवेचन करते हैं। वो देखते हैं कि ये शरीर मिट्टी, जल, वायु और अन्य तत्वों का एक क्षणिक संगठन मात्र है। रोग, जरा और मृत्यु इसके अनिवार्य साथी हैं। फिर भी मनुष्य इसी नश्वर देह में अमरता खोजता है, इसी क्षणभंगुर रूप में स्थायित्व का स्वप्न देखता है। भगवान श्री राम की दृष्टि में देह एक साधन है, साध्य नहीं है। देह एक आवरण है, आत्मा नहीं है। इसलिए वो बाहरी रूप के मोह से ऊपर उठकर उस शाश्वत सत्य की ओर देखने का आह्वान करते हैं, जो जन्म और मृत्यु दोनों से परे है। तो आइए सुनते हैं योग वासिष्ठ का ये गहन वैराग्यमय प्रसंग, जहां भगवान श्री राम की वाणी हमें देहाभिमान के बंधनों से मुक्त होकर आत्मस्वरूप की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देती है, जहां नश्वरता के चिंतन से निराशा नहीं बल्कि सत्य की खोज का प्रकाश जन्म लेता है। आज इस बातचीत के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत।

0: सुख की आकांक्षा जीवन भर बनी रहती है
1: जी,
0: और आकांक्षा हमेशा उसी की होती है जो हमारे पास नहीं होता। ये भी आप माने कि जो चीज आपके पास है,
1: हाँ।
0: एक किसी गीत में ये बात कही भी गई है कि ये दुनिया जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। तो जो चीज खो जाता है वो हमारे लिए मूल्यवान है, या जो खोया हुआ है जिसको हम पा नहीं पाए हैं अभी। सतत सुख के लिए प्रयासरत रहना इसका मतलब कि सुखी व्यक्ति नहीं है,
1: कुछ खोया हुआ है,
0: कुछ खोया हुआ, सुख खोया हुआ है।
1: जी जी।
0: अब सुख खोया हुआ है लेकिन सुख के भ्रम में हम सभी जी रहे हैं। तो राम जी कहते हैं, राम जी की दृष्टि इसमें कहते ना, राम जी की दृष्टि, कबीर साहब ने तो कहा कि राम जी घट घट में बसते हैं, घट घट व्यापे राम, है ना, कहते हैं एक राम हर घट में लेटा। तो उस राम की दृष्टि देखिए कैसी है। वो राम कहते हैं कि महामुने, जो मैंने शरीरधारियों को देखा, गीली आंत जिसमें मल मूत्र की थैलियां हैं। आप देखिए, हमारे हम एक बहुत बड़े संत का जब सत्संग कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि संसार का पवित्र से पवित्र वस्तु भी शरीर के स्पर्श से अपवित्र हो जाता है। जैसे भोजन तब तक जूठा नहीं है जब तक आपने उसे चखा नहीं,
1: बिल्कुल।
0: आपने जिह्वा को जैसे स्पर्श दिया वो मतलब अशुद्ध हो गया। तो ऐसे में चाहे कितना भी पवित्र वस्तु शरीर में डालो, पानी आपने गंगा जल ही आप पी लीजिए लेकिन वो मूत्र बन के ही तो निकलेगा,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: कितना भी स्वादिष्ट कुछ खाइए वो मल बन के निकलेगा। तो वो कहते थे कि ये मल मूत्र बनाने की मशीन है और इससे प्रेम लोग करते हैं।
1: जी जी जी,
0: है ना। तो एक प्रकार की देखें, ये कहेंगे कि एक प्रकार का शरीर को नकारना हुआ, नकारना नहीं है, ये शरीर के प्रति सावधान होने की आवश्यकता है। जैसे ये शरीर ही हमें बहुत सारे दुखों में भी ले जाता है।
1: जी जी,
0: हम दुखी भी क्यों हैं? शारीरिक चिंतन की वजह से, मस्तिष्क के क्रियाकलापों की वजह से, अपने पूर्व की स्मृतियों या भविष्य की योजनाओं की वजह से हैं।
1: जी जी।
0: तो ऐसे में ये सब शारीरिक ही तो है, देखे तो चिंतन भी शरीर से ही होता है, है ना। तो राम जी कहते हैं, नाड़ियों से भरा हुआ है, नाना प्रकार के विकारों से युक्त और अंत में पतनशील है, जिसको आपने अभी कहा भी कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम, ये विवेकवान देखते हैं लेकिन जिनके अविवेक नहीं है वो इस जन्म लेने वाले शरीर को अमर देखते हैं, अमर बनाने की कोशिश में है। मैंने तो कई बार सुना कि मतलब अमरता के लिए मतलब लोग सोचते हैं कि शरीर अमर हो जाएगा, जबकि ब्रह्मा जी ने अपनी कथाओं में, पौराणिक कथाओं में आपने सुना भी होगा हिरण्यकश्यप की कथा, जब हिरण्यकश्यप तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लेता है तो कहता है कि मुझे कोई मार ना सके, यही बार मांगा उसने। अब आप देखिए, ये हिरण्यकश्यप नहीं, हर वो व्यक्ति जो मरना नहीं चाहता सब हिरण्यकश्यप की तरह,
1: रावण भी
0: जी। और उसने इतना तप किया कि ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका नाम ही मृत्युलोक है, यहाँ जो भी आया है मरेगा, तो इसको छोड़ करके तुम्हें जो मांगना है मांग लो। वो भी चालाकी किया, कम होशियार नहीं था, बौद्धिक चिकित्सा। देखिए यहाँ पर दिखाया ही जा रहा है कि बुद्धि कैसे खेलती है।
1: जी जी,
0: तो
1: जी।
0: उसने क्या किया कि मृत्यु के जो जो कारण हो सकते हैं उन सारे कारणों को उसने मिटा देने की कोशिश की कि न मुझे मनुष्य मारे, न पशु मारे, न हम दिन में मरे, न रात में मरे,
1: न घर में मरे, बार
0: न जमीन पर, न आसमान।
1: जी।
0: तो भगवान, उन्होंने कहा तथास्तु तथास्तु, तो कहते हैं वो नरसिंहा होता,
1: बिल्कुल
0: कैसी मृत्यु हुई।
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: मृत्यु नहीं टाली जा सकी, लेकिन कथा सुनने के बाद भी लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं होता और वो जीवन भर इसी शरीर की चिंता में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। जबकि जब तक आपके पास शरीर मिला था, अगर आप सत्कर्मों की बात करते, उसके सदुपयोग की बात करते तो शायद श्रेष्ठ होता। इसी शरीर से आपने कितने निकृष्ट कर्म किए हैं, किए जा रहे हैं, कैसा चिंतन हम कर रहे हैं, सच्चिंतन करें, सत्संग करें।
1: जी जी जी।
0: गोस्वामी जी ने कितना सुंदर लिखा रामचरित मानस के कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। लेकिन शरीर से आप असत का संग करने में लगे हैं, तृष्णा को पूरा करने में लगे हैं, जड़ पदार्थों को ही आप चेष्टा बनाए हुए हैं अपने शरीर का। राम जी कहते हैं कि इस शरीर से एक ही चीज भोगा जाता है, सिर्फ दुख, सुख नहीं भोगा जाता। अब संसार क्या करता है, संसार शरीर से सुख भोगता है, कितनी उल्टी दृष्टि।
1: तो शरीर को लेकर ये दृष्टि है श्री राम की?
0: नहीं, ये दृष्टि श्री राम की नहीं है। ये तो उन्होंने कहा कि शरीर से, तो उनका जीस्ट है, कह सकते हैं ये सारांश है कि इससे सिर्फ दुख भोगा जा सकता है। पहले तो आगाह करते हैं लोगों को वो कि भैया तुम जो ये समझ रहे हो कि शरीर से सुख भोगोगे, सुख नहीं देता शरीर। शरीर से सुख तभी तक है जब तक शरीर के संपर्क में नहीं आया, शरीर के संपर्क में आते ही वो दुख का भोग बन जाता है। और राम जी कहते हैं कि यह शरीर सिर्फ दुख भोगने के लिए ही है। आपने जब प्रश्न किया कि इसको कैसे देखते हैं, तो वो कहते हैं कि इसकी दशा जरा देख लो कि शरीर कैसा है तुम्हारा।
1: हाँ।
0: थोड़े से खान पान आदि से आनंदित हो उठता है
1: जी।
0: यही है कहानी।
1: हाँ, हाँ।
0: हर दिन हम टेस्ट बदलने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं।
1: हाँ, हाँ।
0: तो ये है कहानी। कहते हैं थोड़े से शीत और उष्ण से ये खिन्न हो जाता है। अतः इस शरीर के समान गुणहीन शोचनीय और अधम कोई दूसरा है ही नहीं।
1: अच्छा जी।
0: और शास्त्रों में कहा था कि शीत उष्ण को सही है, और मनुष्य क्या करता है थोड़े से ताप बढ़ने में थोड़ी सी बेचैनी में वो परेशान होता है।
1: हाँ।
0: तो परेशान किस लिए होता है? शरीर से तो होता है। अभी आजकल गर्मी खूब पड़ रही है
1: जी, जी, जी।
0: तो आदमी गर्मी कहता है बहुत गर्मी हो गई, थोड़ी सी ठंड बढ़ती है तो ठंड बहुत बढ़ गई, थोड़ी बरसात होने लगे बढ़ गई, तो उससे भी खिन्नता। तो शरीर अंततः आपको करता क्या है? खिन्न ही तो करता है।
1: बिल्कुल।
0: तो शांत कहाँ हो रहे हैं आप शरीर से? तो राम जी शरीर को ऐसे देखते हैं, कहते हैं कि ये गुणहीन है, सोचने योग्य है और अधम है, और हम लोग इसको सर्वस्व मान के बैठे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी।
1: अच्छा शशिकांत जी, इसी ग्रंथ में मैंने देखा कि एक जगह शरीर को जीव और ईश्वर रूपी पक्षियों का घोंसला कहा गया
0: जी।
1: इसे थोड़ा सा समझाएं हमारे सुनने वालों के लिए।
0: बहुत सुंदर कहा आपने। इसको समझाने के लिए मैं फिर वेदांत का सहारा लूंगा, क्योंकि ये ग्रंथ जो है अद्वैत दर्शन का ग्रंथ है। वेदांत में कहते हैं कि ब्रह्म जब माया से युक्त होता है तो वो ईश्वर हो जाता है।
1: अच्छा
0: ठीक है। और ब्रह्म जब अविद्या से युक्त होता है तो जीव हो जाता है।
1: अच्छा
0: इसको जरा समझें। माया का मतलब यह है कि ये संसार जो आभासित हो रहा है, जैसे यहां पर शुरू में ही इस ग्रंथ में कहा गया है कि जैसे आकाश में नीलिमा, पीलापन, गुलाबी होना ये प्रतीत होता है नहीं?
1: है नहीं। हाँ।
0: ठीक है। जैसे आज विज्ञान इस बात पर पहुंच चुका है कि जो चीजें आपको ठोस दिखाई दे रही हैं उसमें 99.999% चीजें खाली हैं, ठोस नहीं है। अब ये विज्ञान सिद्ध कर रहा है, लेकिन आपको तो ठोस दिख रही है, आप तो मान रहे कि ये तो ठोस है। आसमान अंध काला है लेकिन आपको पीला भी दिखता है, नीला भी दिखता है, लाल भी दिखता है, जैसे जैसे मतलब कहते हैं ना जो इंद्रधनुष भी आकाश में आपको दिखाई देता, सतरंगी भी दिखता है
1: जी, जी।
0: तो जो दिखता है वो है नहीं। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि जो माया से ये सृष्टि जो हुई है ये ईश्वर इसका नियंता है। इसीलिए ऋषियों ने वेद में देवताओं की पूजा की है, अग्नि की पूजा की है, वायु की पूजा की है, प्रकृति की पूजा की है, क्योंकि प्रकृति में वो शक्ति है। अगर आप देखें सूर्य न हो, आज जैसे हम सोलर एनर्जी की बात
1: जी,
0: करते
1: जी,
0: हैं
1: जी, जी।
0: तो इस जगत में जो ऊर्जा दिखाई दे रही है विभिन्न जीवों में वो किसकी है? सूरज की है।
1: सूरज की।
0: सिर्फ सूरज न हो तो आप वनस्पतियों की कल्पना नहीं कर सकते, वनस्पतियां न हो तो ऑक्सीजन की कल्पना नहीं कर सकते, कोई जीव होगा ही नहीं, जीवन की ही कल्पना नहीं हो सकती। तो ऐसे में आदित्य की पूजा, सविता की पूजा
1: जी
0: होती है। तो वो कहते हैं कि ये जो देवता है जिसमें शक्ति है, तो जब ब्रह्म माया की शक्ति से युक्त होता है तो वो ईश्वर बन जाता है,
1: ईश्वर हो जाता है।
0: और जब ब्रह्म अविद्या के आवरण से ढक जाता है, अविद्या के विच्छेद से, मतलब वो नहीं देख पाता सत्य को, तो जीव बन जाता है, जिसको आचार्य शंकर कहते हैं कि जीवो ब्रह्म ही बना पर, जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, है ना। तो यहां पर जो कहा कि ये शरीर रूपी यानी मानव का जो शरीर है, इसी शरीर पर जीव और ईश्वर रूपी पक्षी घोंसला बना के रहते हैं। इस जगत में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो जीव और ईश्वर को जानता है, अन्यथा किसी भी जीव को ईश्वर और जीव की और ब्रह्म की कल्पना भी नहीं है,
1: नहीं।
0: वो अपना जीवन सिर्फ जीते हैं।
1: जी जी जी।
0: मनुष्य ही है।
1: हाँ।
0: क्योंकि मनुष्य के लिए ये शास्त्र है, इसलिए भगवान मनुष्य के अवतार में आए हैं, है ना, और आए हैं तो उनको योग वासिष्ठ की शिक्षा दी जा रही है, जबकि उनके अवतारों में मत्स्या अवतार भी है, वाराह अवतार भी है, वहां योग वासिष्ठ नहीं पढ़ाया गया है, है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: ये मनुष्य के लिए है।
1: जी जी जी।
0: इसलिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आप भी शास्त्र का अध्ययन करती हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस बात का कि जीव और ईश्वर रूपी जो पक्षी है इस मनुष्य के शरीर पर ही ये घोंसला बना के रहते हैं, और इन्हें हमें समझना होगा। और जैसे ही इन्हें जीव और ईश्वर को आप समझेंगे, आप अपने ब्रह्म स्वरूप को भी जान लेंगे और ब्रह्मानंद से भर जाएंगे और जीवन मुक्त की तरह व्यवहार भी करने लगेंगे, जिसके लिए ये योग वासिष्ठ राम जी को सुनाया
1: जा रहा है। अच्छा, शुभ और अशुभ की चर्चा बहुत होती है, किसके फल हैं ये?
0: शुभ और अशुभ जो फल हैं वो शरीर के फल हैं। ये शरीर से जो कर्म होता है उसी कर्म का परिणाम बनता, उसी कर्म का तो फल बनता है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भुर् मा संगोश्च कर्मणि। जो भगवान कह रहे हैं ये उसका उत्तर आपने इस प्रश्न को पूछ करके मतलब देने के लिए प्रेरित किया। वो कहते हैं कि जो भी फल है शुभ और अशुभ कर्म का फल है, तो कर्म शरीर से होगा, शरीर कर्म के बिना होगा नहीं। तो जो आपने कहा कि फल भी जो होगा वो आप जब फल प्राप्त हो तो फल पर विचार मत करो, कर्म पर विचार करो, ये भगवान कहते हैं क्योंकि वो तुम्हारे अधिकार में था। और हम लोग क्या करते हैं, फल पर विचार करते हैं, कर्म पर विचार नहीं करते। इसी को कई लोग संत कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए, कर्म आपने अगर अशुभ किए हैं तो फल कैसे आपको आनंददायक मिलेगा, और कर्म आपने अगर श्रेष्ठ किए हैं तो उसका फल दुखद नहीं हो सकता। इसलिए जो ज्ञानी पुरुष है वो हमेशा आनंद में होता है क्योंकि वो सजग वही है, वो बीज के वक्त सजग है, जानता है मैंने आम बोया है तो इसमें कांटे नहीं आने वाले, इसमें फल ही आएगा। और जो अन्य लोग हैं वो कर्म पर सावधान नहीं होते, इसलिए परिणाम से हमेशा दुखी रहते हैं।
1: जी अच्छा, अहंकार जो है
0: जी
1: हर मनुष्य के भीतर होता है, ये बात होती है, तो इसके रहने का स्थान कहाँ है?
0: भगवान राम कह रहे हैं कि सुख दुख रूपी फल जो है इस शरीर के द्वारा मिलते हैं, और उस सुख दुख रूपी फल का जो भोगता है वो अहंकार है। आप कहते भी ना कि मुझे दुख हुआ, मुझे सुख हुआ, तो जब आप उस फल के साथ अपनी आइडेंटिटी जोड़ते हैं
1: जी, जी,
0: तो वो अहंकार जोड़ता है। तो भगवान राम कहते हैं महर्षि से, कहते हैं कि हे मुने, इस शरीर ये जो है ये अहंकार रूपी गृहस्थ का विशाल गृह है। अब देखिए, जो हम लोग कहते हैं गृहस्थ कौन है, जो गृह में रहता है, है ना, तो जो ये गृह जो शरीर है इसका गृहस्थ कौन है, अहंकार, इसमें अहंकार रहता है, और भोगता क्या है, वो सुख दुख भोगता है। तो कहते हैं कि इस शरीर का फल सुख दुख है, और इसका जो गृहस्थ है वो अहंकार है। तो अहंकार अगर न हो तो सुख दुख भी ना हो। आप कभी भी कोई सुख या कोई दुख बिना अहंकार के आप उसके भोगता नहीं हो सकते,
1: नहीं हो सकते, बिल्कुल।
0: आप कभी विचार करके देखिएगा, जिससे आपने सम्मान की अपेक्षा नहीं की वो आपको अपमानित भी नहीं कर सकता,
1: बिल्कुल।
0: जिससे आपने सुख की कामना नहीं की वो आपके दुख का कारण कभी नहीं हो सकता।
1: बिल्कुल,
0: दुख का कारण तभी कोई बनेगा जब आपके सुख की कामना हो, है ना। तो ये देखें, ये शरीर पर दो ही फल लगते हैं, सुख और दुख के, और उसका भोगता जो है इस गृह में रहने वाला गृहस्थ अहंकार है।
1: अहंकार है, बहुत ही सुंदर।
0: जी।
1: अच्छा, शरीर को सुदृढ़ कौन करता है फिर?
0: देखिये, शरीर को सुदृढ़ जो करता है वो चित्त करता है, जिस चित्त में असंख्य वृत्तियां हैं। महर्षि पतंजलि ने तो योग सूत्र में कहा कि इस चित्त में असंख्य संस्कार हैं, वृत्तियां हैं, और उन्हीं वृत्तियों का जो निरोध है वो योग है। वो ये नहीं कहते कि योग किसी वृत्ति का निर्माण है। आप मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि हमारे आर्ष ग्रंथों को, शास्त्रों को लोग इतने सतही स्तर पर समझने समझाने लगे हैं।
1: जी, जी,
0: ये पीड़ा देता है। अब वो जब उन्होंने कहा कि योगस चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है, तो लोगों ने इस परिभाषा की एक वृत्ति बना ली, और वो सोचते हैं कि ये योग है, और इसको बताते फिरते हैं, रट लिया उन्होंने योगस चित्त वृत्ति निरोध। जो आपने ये सवाल किया कि इसको सुदृढ़ कौन करता है, ये चित्त करता है, और चित्त की वृत्तियां करती हैं, क्योंकि चित्त में चेतना का प्रकाश प्रकट न हो उसका कारण कौन है, वृत्तियां। ठीक है, तो ये वृत्तियां, अब राम जी को ये दिख रहा है, राम जी योगी हैं, वो कह रहे हैं कि चित्त रूपी वृत्ति ने नाना प्रकार की अनंत चेष्टाओं द्वारा इसको सुदृढ़ कर रखा है शरीर को, और चित्त को उन्होंने नाम क्या दिया, भृत्य नाम
1: दिया।
0: और हम लोग चित्त को स्वामी बना के बैठे हैं, चित्त हमारा स्वामी है, जैसी वृत्ति लाता है वैसा हम कर बैठते हैं, वैसा ही विचार करते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा भी, जो तुम विचार करते हो वो तुम हो जाते हो। तो हमारे चित्त में जैसी वृत्ति उत्पन्न हो गई वैसा विचार करने लगे, उसी विचार के हिसाब से हमारी भावनाएं भी डेवलप हो गई, और हम उसी को पूरा करने में सुखी दुखी हो रहे हैं। तो ऐसे में वृत्ति को जब स्वामी बना लेंगे आप, तो क्या होगा,
1: यही होगा।
0: तो ऐसे में कहते हैं कि जो विवेकवान है, जिसको विवेक से वैराग्य उत्पन्न हो रहा है, वो चित्त को देख रहा है कि ये चित्त स्वामी नहीं है, इसका स्वामी कोई और है,
1: और
0: इस गृह में रहने वाला जो गृहस्थ है वो भी अहंकार बन के बैठा है। जबकि सच ये देखें तो इन सबको जो ऊर्जा मिल रही है उस चेतना से मिल रही है, उस परम तत्व से, जिसको आपने कहा ईश्वर और जीव रूपी जो घोसला है, तो ईश्वर में भी ब्रह्म है, जीव में भी ब्रह्म है, और माया और अविद्या के बिना ब्रह्म तो ब्रह्म ही है। तो ऐसे में में इस शरीर से एक ही चीज को उद्घाटित करने की जरूरत है, जिसको गोस्वामी जी कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अपाहि न जेहि परलोक संवारा। वो कितना दुर्भाग्यशाली है कि जिसने इसको पाने के बाद, जो मोक्ष का द्वार है उसको पाने के बाद भी वो बंधन में ही अपने जीवन को व्यतीत कर दे। अवलो नसानी अबना नसही हो, क्या लिखते हैं, नाश में ही नाश कर रहे हैं हम इस शरीर का, है ना। देखें तो ये परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है जो कहते हैं कि सुर दुर्लभ सद ग्रंथ है यहाँ गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो ये तन पाने के क्या ये अवसर एक पशु को मिल सकता है? अभी जो हम लोग आज ये बात कर रहे हैं, जो हमारे श्रोता सुन रहे होंगे, क्या ये किसी और जीव पर अपना प्रभाव छोड़ सकता है? मनुष्य के लिए है। तो उसके बाद भी मनुष्य अगर अशांत है और इतने तत्व चिंतन से भरे हमारे शास्त्र हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्य है, ये भाग्य नहीं है मनुष्यतन का।
1: तो भगवान श्री राम शरीर को उस स्थिति में देख रहे हैं जिस स्थिति में देखा जाना चाहिए
0: जी।
1: तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि फिर शरीर मनोरम क्यों प्रतीत होता है?
0: आपने बहुत सुंदर सवाल किया, मुझे लगता है कि आप ठीक से पढ़ती होंगी इसे। राम जी ने शरीर को देखिए, शरीर के द्वारा जो हम विषयों का भोग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? मोह के कारण कर रहे हैं, तृष्णा के कारण कर रहे हैं। राम जी कहते हैं कि इस शरीर में मनोरम की प्रतीति, यानी मन को हर लेने की प्रतीति। अच्छा, एक बात कभी आप विचार करके देखिए, मन का हरण कहाँ होता है? विषयों से कभी मन का हरण नहीं होता। विषय तो मन में यज्ञ की अग्नि की भांति आग प्रज्वलित करते हैं। विषय का भोग हमेशा विषय के भोग के प्रति आपको प्रेरित करता है। मनोरम इस शरीर में एक ही स्थान है, वो है निद्रा।
1: अच्छा,
0: हाँ, राम जी की दृष्टि देखिए, जबकि निद्रा में आपको शरीर का भी ज्ञान नहीं होता,
1: नहीं होता। हाँ, हाँ।
0: किसी भी मनुष्य को मनुष्य होने का ज्ञान निद्रा में नहीं हो सकता, या मनुष्य होने के ज्ञान के साथ नींद नहीं आ सकती कभी किसी दिन।
1: और अभी हम लोगों ने पिछले अंकों में बात भी की है कि निद्रा यानी एक अस्थायी मृत्यु।
0: हाँ, तो राम जी की दृष्टि देखिए, कहते हैं एक ही मनोरम स्थान है शरीर में, वो है निद्रा।
1: अच्छा,
0: और मांडुक्य उपनिषद में निद्रा को प्राज्ञावस्था कहा गया।
1: प्राज्ञावस्था
0: कि आप देखें तो उस समय आप ये जड़ पदार्थों के ज्ञान से मुक्त होते हैं। निद्रा आप रोज शयन करते हैं, स्वप्न भी आता है सोने में
1: जी जी,
0: लेकिन स्वप्न से इतर जो गाढ़ी नींद होती है, क्या विज्ञान आज तक कोई जान पाया कि गाढ़ी नींद में हम क्या होते हैं?
1: बिल्कुल भी
0: कुछ भी नहीं होता। हम जिन जिन चीजों की संसार में चिंता करते हैं, जिस शरीर की चिंता करते हैं, वो शरीर भी तो छूट जाती है नींद में। अब देखिए, जागते वक्त शरीर का छूटना, सपने में शरीर का छूटना डर देता है, लेकिन नींद में जाने के लिए आप कभी नहीं डरते, जबकि उस समय भी शरीर छूट रही होती है।
1: जी जी जी,
0: है ना। आप कहते हैं कि अरे भाई अब बहुत हो गया, आप सोने दो। मतलब एक तरह से मैं कहूं, अगर थोड़ा सा इक्वेशन बदल दूं, तो अब शरीर छोड़ने का समय आ गया, था शरीर छोड़ने दो। अगर ये बात निद्रा की जगह ये बात भी कही जाए तो निद्रा के लिए उपयुक्त होगी
1: जी जी जी,
0: कि शरीर छोड़ना है अब। और यहाँ संसार में कह दिया जाए कि शरीर छोड़ना है, तो जितने आपके प्रियजन है रोने रहेंगे कि क्या कह रहे हैं आप, क्यों कह रहे हैं आप। तो निद्रा परम वैराग्य है, परम शांति है, शरीर ही छूट जाता है सही देखें अपन। लेकिन तार्किक लोग ये भी कहते हैं कि इसके बाद हम जागते तो भी हैं। अरे भाई, जागते आप हैं, मैं मानता हूं, लेकिन जागने को जागते वक्त छोड़ने की बात कोई करे तो आप लड़ मर जाएंगे। भाई, जागते वक्त जो कुछ भी आपने अर्जित किया है, कोई मांगने अगर आ जाए तो दे दोगे क्या? और नींद में तो आप अपने घर को छोड़ देते हो, बिस्तर छोड़ देते हो, है ना, कुछ पता ही नहीं होता नींद में कहां सो रहे हैं क्या है। तो नींद एक तरह से शरीर छूटने का नाम है। राम जी ने कितनी गहरी दृष्टि दी है कि अगर मनोरम कोई स्थान है शरीर में
1: तो वो निद्रा,
0: सिर्फ निद्रा। शायद हमारे श्रोताओं को भी ये बात समझ में आ रही होगी कि निद्रा मनोरम है। मन, मन कहते हैं ना, अमन हो जाता है।
1: हाँ,
0: मन होता ही नहीं वहाँ
1: जी। अच्छा, शरीर में जो मन है वो किस रूप में स्थित है?
0: आपने जो सुंदर कहा, इसको राम जी कहते हैं कि जिस तरीके से चूहा चारों तरफ से बिल बना के बैठा रहता है, कहीं से भी घुस सकता है, राम जी कहते हैं ये मन ऐसे ही शरीर में रमा हुआ है।
1: अच्छा,
0: हर तरफ से ये अपना मार्ग खोद के बैठा है। यहां से रोकोगे तो वहां से घुसेगा, वहां से घुसोगे तो वहां से घुसेगा। कहते हैं कि हे मुनि, यह शरीर केवल रक्त और मांस का ही बना हुआ है, इसमें एक ही धर्म है। इसका एक ही धर्म है कि ये जो चूहा जैसे घुसेगा तो क्या कहते हैं, जैसे अपने यहाँ संत लोग कहते हैं ना कि दर्जी भी कपड़ा काटता है और चूहा भी कपड़ा काटता है। चूहा कपड़ा काटता है तो पहनने योग्य नहीं होगा, और दर्जी जो है कपड़ा काट के पहनने योग्य बनाता है।
1: जी जी जी।
0: तो ये जो मन रूपी चूहा हर तरफ से बिल बना के बैठा है, ये आपको ये दुर्लभ तन मिलने के बाद भी जीने नहीं देगा। तो ये पूरी तरीके से शरीर में नाड़ी रूप में यंत्रों के माध्यम से संचार करता है और चंचल बना रहता है, और मन रूपी सुंदर चूहे ने इसमें सब ओर से बिल खोद रखे हैं, इसलिए मुझे यह प्रिय नहीं है। राम जी कहते हैं कि जी, मन जी. का इस पर इतना प्रभाव है, चूहे की भांति हर तरफ से बिल खोद रखा है
1: जी,
0: और
1: जी,
0: जब भी इस शरीर का उपयोग करेंगे वो मन के द्वारा ही उपयोग किया जाएगा इसका,
1: जी, जी, जी.
0: तो ऐसे में ये शरीर मुझे प्रिय नहीं है, क्योंकि शरीर से मन ही जिया जाता है। आप देखें तो सुख दुख जो है वो मन की ही चाह और नहीं चाहने की बात है, कि आपके मन के अनुरूप हो गया तो आप सुखी हो गए, मन के प्रतिकूल हो गया तो दुखी हो गए, जबकि सुख दुख विषय और विषयों के योग में नहीं है, मन की चाह और मन की अचाह में है जी। तो कहते हैं इसलिए मुझे प्रिय नहीं है, क्योंकि सब ओर से उस मन का ही तो व्यवहार होता है, इससे मन से ही तो तृष्णा आती है।
1: अच्छा, तो फिर शरीर का धर्म क्या है?
0: शरीर का धर्म क्या है, ये आपने सुंदर सवाल किया। राम जी कहते हैं शरीर का एक ही धर्म है, विनाश।
1: अच्छा,
0: हाँ। अब आप देखिए कितना क्रांतिकारी उद्घोष है, और शरीर से ही हम धर्म करना चाहते हैं, है ना? सारा धर्म, जिस शरीर का धर्म विनाश हो उस शरीर से अगर धर्म करने की बात की जाए तो तृष्णा ही तो होगी।
1: हाँ।
0: जो हमने पिछली बार मतलब तृष्णा की निंदा में राम जी ने कहा भी है कि आप जो स्वर्ग नर्क की बात करते हैं या उसके लिए शुभ और अशुभ कर्म करते हैं वो देखें तो वो सब विनष्ट हो जाते हैं। और इसी ग्रंथ में बात आता है अरिष्टनेमी का, जब वो कहते हैं कि स्वर्ग में क्या है, तो कहते हैं जिनका उत्तम भोग है उनको उत्तम भोग मिला हुआ है, और जब उनका वो फल कर्म जो समाप्त होगा तो फिर वो ढकेल दिए जाएंगे वहां से। तो कहा ऐसे स्वर्ग की मुझे कामना नहीं है। और इस स्वर्ग से आदमी क्या करता है शरीर से, भाई मरने के बाद व्यक्ति स्वर्गीय हो जाता है। हम लोग बोलते भी उपमा देते हैं ना कि स्वर्गीय श्री, इस शरीर से अधिक यात्रा स्वर्ग की हो सकती है ना? तो वो भी मृत्यु के बाद होती है। तो कहते हैं कि वो भी विनाश नाशवान है, स्वर्ग भी नाशवान है। तो शरीर का जो धर्म है वो विनाश है, इसलिए इस शरीर के धर्म में न पड़ करके इस शरीर रूपी यंत्र का उपयोग अपने आत्मस्वरूप के चिंतन में किया जाए और जीवन मुक्त की भांति व्यवहार किया जाए। व्यवहार आबद्ध होकर के पक्षियों की तरह, जो कहा ना ईश्वर और जीव रूपी पक्षी, बन करके न जिया जाए, क्योंकि यहाँ ईश्वर भी आता है तो दुख भोगता है। आप देखिएगा जितने भी हमारे अवतार हैं, क्या वो दुख नहीं भोगे हैं?
1: बिल्कुल।
0: जब हम कहते हैं, विचार करके देखिए कि जब राम और कृष्ण ने शरीर धारण किया तो उन्हें भी शरीर त्यागना पड़ा, शरीर के दुख भोगने पड़े। तो आम आदमी उन्हीं से अपने शारीरिक दुख को मिटाने का अगर मांग कर रहा है तो कितनी बड़ी मूढ़ता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चूंकि समय बहुत कम रह गया तो मैं चाहती हूँ संक्षेप में आप कुछ प्रश्नों के उत्तर दे दें कि जो बुद्धिमान पुरुष है वो शरीर पर आस्था क्यों नहीं करते हैं?
0: बुद्धिमान पुरुष, अब ये तो बड़ा आपने मार्मिक प्रसंग छेड़ दिया। वो आस्था इसलिए नहीं करते क्योंकि ये शरीर किसकी वजह से जीवित है? जीव से। मैंने कहा ना दो पक्षी, आपने कहा ईश्वर और जीव। ईश्वर प्रकृति हो गई और जीव कौन हो गया? अज्ञानता वश ब्रह्म, अज्ञान जो मान बैठा है कि मैं शरीर हूं, है ना? तो कहते हैं कि वो इसलिए इस पर भरोसा नहीं करते। कहते हैं कि जिस दिन ये जीव साथ छोड़ता है तो उस समय मरने पर जीव का साथ छोड़ देता है ये शरीर।
1: हाँ।
0: ये शरीर जो है इतना कृतज्ञ है, कृतघ्न है, कृतज्ञ नहीं,
1: कृतघ्न है,
0: कृतघ्न है
1: जी,
0: कि उस जीव का साथ छोड़ देता है जिस जीव ने इसके समस्त भोगों के भोगने में सहयोग किया है। क्योंकि उसी की चेतना से हम कहते हैं कुछ भी आप अच्छा बुरा जो भी आपके जीवन में हुआ है वो चेतना जो जीव है जो अविद्यावश अपने को शरीर मान बैठा है तो उसकी वजह से है। लेकिन जब जिस दिन वो मरता है शरीर, उस दिन शरीर यहीं रह जाता है, पांच तत्वों में मिल जाता है और जीव अकेला जाता है यहाँ से। तो कहते हैं कि ये आस्था करने योग्य नहीं है, विवेकवान है वो ये जानते हैं कि अंत में जीव अकेला ही जाएगा
1: जी,
0: यहां
1: जी।
0: से।
1: बहुत ही संक्षेप में दो बातें आप बता दें
0: जी।
1: कि जो शरीर है उसको लेकर किसी तरह की विशेषता का अनुभव किया जा सकता है क्या, और दूसरा कि उत्तम पुरुष का चित्त कैसा होता है?
0: मैं तो ये मानता हूँ कि शरीर को लेकर के विशेषता का अनुभव बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर किसी को अपने रूपवान होने का अहंकार है तो बूढ़ा होगा, वो रूप ढल जाएगा। कोई बहुत ताकतवर है, ताकत भी रहने वाली नहीं है। तो ये एक प्रकार की अज्ञानता है कि हम लोग शरीर को लेकर अपने विशेषता का अनुभव करते हैं। विशेषता तो बिल्कुल नहीं, राम जी कहते हैं कि शरीर को लेकर विशेषता का अनुभव नहीं किया जा सकता,
1: नहीं किया जा सकता।
0: और जो आपने कहा उत्तम पुरुष का चित्त कैसा होता है, तो राम जी कहते हैं कि उत्तम पुरुष का चित्त इस प्रकार होता है कि वो अपने शरीर के किसी भी प्रभाव में नहीं होता और वो पूरी तरह से अपने आप को मुक्त रखता है। और कहते हैं कि हे मुने उत्तम पुरुष, मैं न तो इस शरीर का कोई संबंधी हूं और न शरीर हूं, न यह शरीर मेरा है और ना मैं ही यह शरीर हूँ ऐसा भाव रखते हैं हमेशा।
1: तो ऐसे भाव के साथ वो जीते हैं और हमें भी
0: ऐसे भाव के साथ आप रह के देखिए, अब भी आपके सारे जितने भी व्यवहार हैं व्यवहार में अचानक परिवर्तन आएगा, क्योंकि जब आप शरीर मान करके जीते हैं तभी आपसे अनुत्तम कर्म होते हैं। जब आप मानते हैं मैं शरीर ही नहीं हूँ तो फिर आपसे उत्तम कर्म होगा और आप उस जीव की भी स्थिति से, जीव की अज्ञानता से मुक्त होकर अपने ब्राह्मी स्थिति में होंगे और ब्राह्मी स्थिति में होकर के ही जीवन मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा जीवन मुक्त होकर के जीना मतलब संभव नहीं है।
1: जी। तो शशिकांत जी, बहुत ही सुंदर चर्चा रही आज की, आप हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका हम हृदय से आभार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज आपने बातचीत सुनी श्री राम की वैराग्य दशा में शरीर की निंदा विषय पर। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको बता दें कि हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वन्यांकन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब अनुमति दें, नमस्कार। आप सुनते रहें 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुन सकते हैं प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: और अब समय है कार्यक्रम भारत विभूति का। नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा।
2: और मैं हूं आपके साथ स्वाति।
1: और आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे भारत विभूति भिखारी ठाकुर की। श्रोताओं, इस धरती पर कुछ लोग जन्म नहीं लेते बल्कि मिट्टी उन्हें अपने हाथों से गूंथ कर रचती है। वे लोग हवा में उड़ते नहीं, पेड़ की जड़ की तरह धरती में धंस जाते हैं, गहराई तक, एकदम भीतर तक, जहां से फूटता है कला का जल, स्वच्छ, निर्मल, जीवन देने वाला।
2: और यही वो जल है जिसे पीकर सभ्यताएं आगे बढ़ती हैं, जिससे गीत जन्म लेते हैं, नाटक खिलते हैं और मानवता की धड़कन लिखी जाती है। कला के ऐसे स्रोत आसानी से नहीं जन्मते। सदियों के मौन, पीढ़ियों के दुख और जीवन की अनगिनत ठोकरों से एक कलाकार बनता है।
1: और ऐसा ही एक कलाकार बिहार की उस हरी भरी, गीतों से भरी, माटी भरे आंचल वाली धरती से जन्मा था, जहां हवा में चहकते चिड़ियों का सुर लोक गीत बन जाता है, जहां नदियों का बहाव कहानी का छंद बन जाता है, जहां खेतों की मिट्टी अपनी खुशबू में भी कविता रचती है। उसी माटी ने रचा, उसी माटी ने संवारा, उसी माटी ने दुनिया को सौंपा एक अनमोल रत्न, जिसे आज पूरी दुनिया भोजपुरी का शेक्सपियर कहती है। वो थे भिखारी ठाकुर।
2: भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर 1887 को छपरा के कुतुबपुर दियारा में एक साधारण परिवार में हुआ। ये वही गांव था जो पहले शाहबाद जिले, जो कि अब भोजपुर है, उसका हिस्सा माना जाता है। पर 1926 में गंगा की धारा बदलने से ये क्षेत्र सारण जिले में शामिल हो गया। उनके ननिहाल का बसेरा आरा में था, जहां से उन्हें बचपन में स्नेह और संस्कार दोनों ही मिले। वो दलसिंगार ठाकुर के पुत्र थे। माता शिवकली देवी सरल, कर्मठ और गृहस्थी संभालने वाली स्त्री थी। भिखारी दो भाइयों में बड़े थे। छोटे भाई का नाम बहोर ठाकुर था। घर में गरीबी थी पर प्यार और लोक संस्कृति की गर्माहट कभी कम ना हुई।
1: पर प्रकृति ने उनका मन किसी और ही ताल पर रखा था। वे औपचारिक शिक्षा से वंचित होकर भी उनके लोक जीवन में खेत खलिहान की पगडंडियां नापना, नदी की हवा में गांव के गीत सुनना, सब कुछ गहराई से दर्ज था। गरीब परिवार जहां पर रोटी मुद्दा था, कपड़े फट जाते थे और चिंताएं कभी नहीं रुकती थी। बचपन में वो मिट्टी से छोटी गुड़िया बनाते, उनसे बातें करते, उन्हें रुलाते, हंसाते, सुलह करवाते, जैसे कोई अकेला बच्चा नहीं, एक पूरा नाटक मंडल उनकी मुट्ठियों में खेल रहा हो।
2: भिखारी तब छोटे थे, बस वही उम्र जब बच्चे खेलते तो हैं, पर सपनों में उनसे भी ज्यादा दौड़ते हैं। गांव की कच्ची गलियों में नंगे पैर भागता हुआ भिखारी हर चीज में जादू ढूंढ लेता था। कभी वो बांसुरी की किसी अनजानी तान में खो जाता, कभी मंदिर के भजन के शब्दों के भीतर छिपी किसी आग को महसूस करता। चूल्हे की आंच में उन्हें कहानियों की लपट दिखाई देती और खेतों की सरसराहट में नाटक के संवाद सुनाई देते।
1: बचपन से ही उसे मोह था ढोलक की आवाज का, मंच के रंगों का, जहां कोई आदमी किसी और का रूप धरकर जीवन से भी बड़ा बन जाता था। बचपन बीत गया जैसे कोई नदी चुपचाप बहकर नए मोड़ पर पहुंच जाए।
2: भिखारी ठाकुर के पिता दलसिंगार ठाकुर सीधे साधे मेहनत से जीने वाले व्यक्तित्व थे। उनकी हथेलियों पर खेतों की मिट्टी और जीवन की थकान दोनों ही जमी रहती। उनकी एक ही चाहत थी, भिखारी वही काम करे जो पीढ़ियों से उनका घर संभालता आया है। लोगों के बाल बनाना, शादी ब्याह में सेवाएं देना, उसी से रोजी रोटी कमाना। भिखारी ठाकुर अपने पुश्तैनी काम का सम्मान खूब किया करते, लेकिन उनके भी सपने कुछ और थे। पिता भिखारी जी को समझाते हुए कहते,
3: बेटा, कविता, कहानी, गाना बजाना मन बहलावे खातिर ठीक बा, बाकी जीवन ऐसे ना चलेला। अगर हवा के रंग धरे में लागब, तो जिंदगी के धूप में जुड़ी जाइब, भिकारी ही दुनिया सपना से ना चल, हुनर धर हाथ में तबे घर गृहस्थी चल पाई। भिखारी सर झुका के सब सुनते रहे। यौवन में पहुंचते पहुंचते वो अपने पारिवारिक पेशे में उतर आए। किशोर उम्र में ही उनकी शादी मतुना से हुई। इस विवाह ने भिखारी ठाकुर के जीवन को नया आयाम दिया, जहां घर की जिम्मेदारी और प्यार का सहारा मिला। मातुना के साथ जीवन की शुरुआत भिखारी ठाकुर के लिए एक नई राह बन गई, जहां प्रेम और परिवार की मजबूती उनके भीतर की कविता और लोक संगीत को धीरे धीरे पंख देने लगी।
2: 1911 में उनके पुत्र शिलानाथ ठाकुर का जन्म हुआ। घर में नई उम्मीद का उजाला फैल गया, लेकिन खुशियां कहां ही लंबी चलती हैं और समय का पहिया घूमता रहा। एक दिन गांव की मिट्टी उस साल अजीब सी लग रही थी, सूखी फटी हुई, जैसे उसके भीतर रोती हुई नदियों की लकीरें छिपी हों। हवा में धूल थी, खेतों में सन्नाटा और आसमान में बादलों के नाम पर बस उम्मीद की राख उड़ रही थी। भिखारी ठाकुर दल सिंगार और शिवकली का बेटा अपने घर की हालत को धीरे धीरे बिखरते हुए देख रहे थे। रसोई में अनाज का आखिरी दाना भी माँ की मुट्ठी से फिसल चुका था। चूल्हा कई दिनों से ठंडा पड़ा था।
3: बचपन से सरल, विनम्र, दूसरों के दुख को अपना समझ लेने वाला वो युवक जब अपनी ही माँ की थकी आंखों में मजबूरी का कांपता हुआ साया देखता, तो उसके भीतर का सारा साहस डगमगा उठता। फिर आया 1914 का काल, जिसने जैसे पूरे गांव की खुशियों को निगल लिया। कहीं घास नहीं, कहीं दाने नहीं, लोग अपने ही आंगनों में अजनबी बनते जा रहे थे। इन्हीं दिनों भिखारी ने पहली बार महसूस किया कि गरीबी सिर्फ पेट नहीं काटती, वो आत्मा को भी छोटा कर देती है।
2: और उसी रात जब घर में भूख की चुप्पी सबसे ऊंची आवाज बन चुकी थी, उन्होंने निर्णय लिया कि अब वो नहीं रुक सकता। माँ के पैरों को छूकर बोला,
3: तुहार आशीर्वाद चाही माई, एक दिन हमें सबके ठीक कर देव। और इस तरह भिखारी ठाकुर अपने फटे झोले में दो जोड़ी कपड़े, कुछ सपने और बहुत सारी मजबूरियां लेकर परदेश की राह पर निकल पड़े।
2: वो चल पड़े कुतुबपुर तियारा गांव से छपरा, छपरा से हाजीपुर और फिर ट्रेन पकड़कर कलकत्ता। ट्रेन में पहली बार इतने लोग देखे, इतना बड़ा शहर देखा, इतना शोर, पर उनके दिल में केवल एक ही सपना था, कमाई करूंगा, घर भेजूंगा और परिवार का जीवन बदल दूंगा।
3: श्रोताओं, उस समय कलकत्ता भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त शहर था। गांव के शांत माहौल से आया एक साधारण युवक भिखारी ठाकुर जब इस शहर पहुंचा, तो शहर ने उसका खुले हाथों से स्वागत नहीं किया। गांव से निकले भिखारी जी पहली बार इतने बड़े शहर में आए थे, जहां लोग भागे जा रहे थे, कहीं ठहराव नहीं, किसी को किसी से मतलब नहीं। स्टेशन की भीड़, अजनबी चेहरे, ऊंची ऊंची इमारतें, अलग तरह की बोलचाल, गंगा से अलग हुगली का विशाल घाट, ये सब देखकर वो हैरान हो गए और मन ही मन में कहा, हम इस शहर में रह पाइब का।
2: कलकत्ता पहुंचते ही सबसे बड़ी समस्या थी रहने की जगह। पैसा कम था, रिश्तेदार कोई था नहीं, कई दिनों तक घाट किनारे रात गुजारना, मजदूरों के साथ किसी कोने में सो जाना, फुटपाथ पर जगह ढूंढना, ये सब उनके हिस्से आया। कलकत्ता में रोजगार तो था, लेकिन गांव से आए, पढ़े लिखे नहीं थे, पहचान भी नहीं थी, ऐसे इंसान को तुरंत कौन काम देता है भला। भिखारी ठाकुर जैसे साधारण युवक के लिए जगह बनाना एक बड़ी चुनौती थी।
3: उनकी दुनिया बीच बीच में उकड़ती दीवारें थी, टूटी चौखटें थी और लोगों के दुख भरे चेहरे थे, लेकिन इसी दुनिया से वे सीख रहे थे कि मनुष्य का असली विश्वविद्यालय मिट्टी होती है और मनुष्य का असली शिक्षक दर्द होता है।
2: ऐसे में उन्होंने सबसे पहले वही काम पकड़ा जिसे वो सबसे अच्छी तरीके से जानते थे, अपना पुश्तैनी काम, बाल काटने का काम, वही कोलकाता में शुरू किया। कहते हैं कि हावड़ा स्टेशन के आसपास और मजदूर बस्तियों में वो छोटे से बक्से में उस्तरा, कैंची और कंघी रखकर बैठ जाया करते। सुबह से शाम तक लोगों के बाल बनाते, हजामत करते और कुछ पैसों में दिन काटते। उनके लिए ये सिर्फ कमाई का जरिया नहीं था, बल्कि जिंदगी बचाने का संघर्ष था।
3: श्रोताओं, कलकत्ता में वो अक्सर रामलीला देखने जाते। वो मंच जहाँ देवत्व और मानवता एक साथ चलती है, जहाँ दुख भी है, धर्म भी और धूल में छिपे आदर्श भी, इन्हीं रंगमंचों से उन्होंने अभिनय का मंत्र सीखा और शब्दों को जीवित रूप में ढलते देखा। यहीं से उनके भीतर नाटक लिखने और मंच पर जीवन को उतारने की अंतर यात्रा शुरू हुई। इसी शहर में उन्होंने पहली बार सिनेमा का जादू भी देखा। चलती तस्वीरों में कहानियों का उगना उन्हें किसी चमत्कार से कम नहीं लगा।
2: फिर उनकी मुलाकात हुई बाबूलाल से, जो बिहार का रहने वाला था और एक नाच हॉल चलाता था। बाबूलाल से मिले अनुभवों ने उनकी कला को नए आयाम दिए। मानो लोक धुनों में बसी सादगी और शहर के रंगों में छिपी चपलता एक साथ उनके भीतर संगीत रच रही हो। आखिरकार इन सब अनुभवों को अपनी झोली में समेटे वो वापस अपने गांव लौट आए। गांव लौटना उनके लिए घर की देहरी पर लौटना भर नहीं था, ये तो एक कलाकार का अपने स्रोत, अपनी मिट्टी और अपने लोगों के पास फिर से लौट आना था।
3: और जब वो गांव पहुंचे तो लोगों में हलचल फैल गई। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, कुछ ने शक किया। चौराहे पर बैठे एक बूढ़े ने तंज कसा, हे भिखारी बिटवा नाटक करी यही काम से पेट भरे।
2: दूसरा व्यक्ति बोला,
4: गांव में नाटक तमाशा के का जरूरत बा, लोग हंसी उड़ाई।
2: भिखारी चुपचाप मुस्कुराए। उन्हें मालूम था कि रास्ता आसान नहीं होगा। सबसे बड़ी दिक्कत थी लोगों को तैयार करना। कोई कहता,
4: हमरा घरवाली मानत नहीं के।
2: कोई कहता,
4: नाटक नौटंकी में बदनामी होई।
2: धीरे धीरे कुछ युवा तैयार हुए, लेकिन अभ्यास के लिए जगह ही नहीं थी। भिखारी ठाकुर ने अपने घर के टूटे आंगन में लालटेन जलाकर रिहर्सल करना शुरू किया। लोग दूर से झांकते, हंसते और फप्तियां कसते। एक शाम किसी ने तेज आवाज में कहा,
4: भिखारी दा ई नाटक से का होई, खेत खलिहान छोड़ी के नटुआ बनब।
2: भिखारी शांत स्वर में बोले,
4: कला खेला ना जनाब, मनुज के जियल जिंदगी के सांच हा।
3: और फिर कई हफ्तों की मेहनत के बाद उन्होंने पहला नाटक तैयार किया। उनका छोटा सामाजिक नाटक जो गांव के झगड़ों और व्यसनों पर आधारित था। गांव के मेले में मंच लगाया गया, लोग बड़ी संख्या में देखने आए। लेकिन जैसे ही नाटक शुरू हुआ समस्याएं आनी शुरू हो गईं। कलाकार मंच पर चढ़ते ही संवाद भूल गए, ढोलक की चमड़ी फट गई, लालटेन हवा से बुझ गई। दो कलाकार आपस में झगड़ पड़े और भीड़ हंसने लगी।
2: गांव के कुछ शरारती लड़कों ने चिल्लाया,
4: एगो नटुआ मंडली यहाँ इसे नाटक हो खेला।
2: भिखारी मंच पर खड़े थे, भीतर तक टूट चुके। नाटक अधूरा ही बंद करना पड़ा। उस रात मंडली के कई लोग डरकर भाग गए। एक ने जाते जाते कहा,
4: भिखारी दा अब हमसे ये सब न हुई,
3: कौन करेगा नाटक। लोग कहते नाटक करना नीच काम है। इसलिए शुरुआत में भिखारी ठाकुर के नाटकों में भिखारी खुद सबको समझाते, मनाते, हिम्मत देते। ये कला की सेवा है, समाज की सेवा। अगले दिन भिखारी ठाकुर ने टूटे लालटेन की बत्ती ठीक की, ढोलक के फटे हिस्से पर नया चमड़ा चढ़ाया और बचे हुए कलाकारों से कहा, हार मान लेप त हमनी से बड़का कायर केहू न होई, फिर से शुरू करब। भिखारी ठाकुर हर दिन हर रात बस यही सोचते, हमरा गांव के लोगन के दुख पीड़ा बेचैनी ये सबके आवाज देहल जरूरी बा।
2: एक दिन भिखारी ठाकुर गांव में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा बाप अपनी नाबालिग बेटी का ब्याह पैसे के लिए कहीं दूर तय कर रहा था। लड़की डरी हुई थी, माँ रो रही थी और गांव चुप, बिल्कुल चुप। ये दृश्य भिखारी के दिल में तीर की तरह उतर गया। रात को वो नींद नहीं ले पाए। यही कच्ची पीड़ा धीरे धीरे बेटी बेचवा के रूप में आकार लेने लगी। जब मंडी ने बेटी बेचवा खेला तो वही लोग जो कल तक हंस रहे थे आज भीड़ में चुपचाप खड़े रो रहे थे। गांव की औरतें अपने आंचल से अपनी आंखें पोंछ रही थी, पुरुष सिर झुकाए खामोश खड़े थे। किसी ने भिखारी ठाकुर से आके कहा,
4: भिखारी तोरा नाटक में हमनी की जिंदगी बोलत बा।
2: और उस रात भिखारी ठाकुर समझ गए कि हंसी उड़ाने वालों से बड़ी ताकत दर्द को आवाज देने वाली कला के पास होती है। जो लोग कुछ दिन पहले उनकी मंडली को नटुआ मंडली कहकर हंस रहे थे अब सम्मान से बोलते हैं,
4: हे भिखारी जी आप ता समाज के आंखी खोल देलन।
2: गांव में जब भी मंडली रिहर्सल करती लोग दूर से आकर चुपचाप देखते। रात के अभ्यास में अब कोई ताना नहीं मारता, बल्कि कोई पानी दे जाता, कोई लालटेन के लिए तेल। भिखारी ठाकुर की मंडली अब गांव की इज्जत बन गई।
1: भिखारी जी का मन और भी मजबूत हो गया। अब उन्हें लगा कि उनका रास्ता सही है। बेटी बेचवा की सफलता ने भिखारी को नई ऊर्जा दी। अब वो सोचने लगे कि गांव में सबसे बड़ा दर्द क्या है, और उन्हें जवाब मिला परदेसिया का दुख। वो रोज देखते थे युवक रोजी रोटी के लिए कलकत्ता जाते, पीछे रह जाती उनकी पत्नियां, मायके में रोती हुई बहुएं, खाली चौखटें और सूने आंगन। एक दिन भिखारी ने एक औरत को रोते सुना,
5: हमर घरेला परदेश चली गई, हम अकेली पड़ गई नी।
1: यह आवाज उनके दिल में उतर गई। बिचोहों का दर्द, परदेश की मजबूरी, गृहस्थी की टूटन और प्रेम की पुकार, इसी से विदेशिया का जन्म हुआ,
2: जो 1917 में उन्होंने अपनी 30 वर्ष की उम्र में लिखा। यह नाटक सिर्फ कहानी नहीं, गांव-गांव में बजने वाली वेदना की प्रतिध्वनि था। जब पहली बार यह नाटक खेला गया, लोगों की आंखें नम हो गईं। पुरुषों ने अपनी अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया, औरतें रो पड़ी और बुजुर्ग बोले,
4: ये नाटक था हमनी के रोज की जिंदगी हा।
2: विदेशिया ने भिखारी ठाकुर की पहचान को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। अब उनकी मंडली की चर्चा पास पड़ोस के गाँव तक फैलने लगी।
1: विदेशिया के बाद उन्होंने अपनी मंडली को नए रंग, नई कथाएं और नई जिम्मेदारियां दी। रोज रात लालटेन की रोशनी में बैठकर वे कलाकारों को समझाते। नए कलाकार जुड़े, नए ढोलकी आए और मंडली धीरे धीरे पूर्वी भारत की सबसे बड़ी लोक नाट्य मंडलियों में गिनी जाने लगी। 1938 से 1962 के बीच उनकी रचनाओं का जैसे स्वर्णकाल रहा। इन 24 वर्षों में भिखारी ठाकुर ने 3 दर्जन से अधिक पुस्तकों, नाटकों और गीतों की रचना की। उनके मन में बस एक ही धुन थी, समाज का दर्द, प्रेम, बिछोह, संघर्ष और व्यंग्य, सबको मंच की रोशनी में उतार देना। यही भीतर की ज्वाला नागपंचमी, कवन संकट, राधे श्याम बहार, आमोर सजनवा, कलयुग प्रेम, विरह लीला, घरवारी बाहर वाली, भाई विरोध और बुढ़वा बाबू जैसे अनेक नाटकों के रूप में फूटती गई।
2: बचपन में नियमित शिक्षा नहीं मिली थी, इसीलिए भिखारी ठाकुर ठीक ढंग से लिखना पढ़ना नहीं सीख पाए। लेकिन उनकी कला में एक ऐसी आग थी जो शिक्षा की कमी को कभी बाधा नहीं बनने दिया। भिखारी ठाकुर मौखिक परंपरा के उस्ताद थे। वो कहानी और गीत संवाद पहले अपने मन में बनाते, फिर उन्हें बोल बोल कर याद करते। उनकी स्मरण शक्ति बहुत अद्भुत थी। कहा जाता है कि वो एक एक गीत, पूरा का पूरा नाटक कई कई घंटे बिना कागज के सुना देते थे। जब वो अपने शब्दों को अंतिम रूप दे देते, तब गांव के पढ़े लिखे लोगों से कहते,
1: बाबू ये सब कागज पर उतार दा।
2: और इस तरह अपने नाटक, गीत और बोलचाल की पंक्तियां दूसरों से लिखवाते रहे। इसके जहां फायदे थे, वहां नुकसान भी बहुत थे। उनकी लोकप्रियता इतनी बड़ी कि कई प्रकाशक और व्यापारी उनके नाम पर नकली पुस्तकें छापकर बेचने लगे। ऐसी रचनाएं भी जिनका उन्होंने नाम तक नहीं सुना था। इससे उन्हें 2 बड़ी हानियां हो रही थी। उनकी सच्ची रचनाएं गुम होती जा रही थी और उनके नाम से घटिया और गलत सामग्री फैलने लगी थी। वो लिखने पर दूसरों पर आश्रित भी होने लगे थे। यदि लिखने वाला गलती करता तो गलती पुस्तक में भी रह जाती। भिखारी ठाकुर अपने शब्दों पर पूर्ण अधिकार नहीं रख पाते और इन सब बातों ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया।
1: और इन्हीं कारणों से उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीखना शुरू किया। उन्होंने कभी स्कूल की पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उम्र के उस पड़ाव में जब लोग हार मान लेते हैं, उन्होंने तय किया, हमके अब अपना लेखन पर पकड़ बनावे के बाद। धीरे धीरे अक्षर पहचानना, शब्द पढ़ना और थोड़ा लिखना उन्होंने सीख लिया। वे इतना जरूर करने लगे कि कोई भी पांडुलिपि या किताब बिना देखे बिना जांचे प्रकाशित ना हो।
2: इसीलिए उन्होंने 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ तैयार करवाए, भिखारी पुस्तिका सूची और भिखारी शंख शमदान। ये उनकी सभी असली रचनाओं की प्रामाणिक सूची है। सबसे पहले भिखारी ठाकुर पुस्तिका सूची, ये सूची उन्होंने इसीलिए बनवाई ताकि नकली पुस्तकें, झूठे दावे और गलत प्रकाशनों से उनकी कला को बचाया जा सके। ये उनकी रचनाओं का एक सत्यापित अभिलेख बन गया।
1: और दूसरा, भिखारी शंख शमदान, ये उनके जीवन, उनकी कला और उन पर लगे झूठे आरोपों का जवाब है। इस पुस्तक में उन्होंने अपने जीवन की सच्चाई बताई, अफवाहें खारिज की, अपने कला की दिशा समझाई और बताया कि वो क्यों और क्या लिखते हैं। कह सकते हैं कि ये उनका आत्मघोष, उनका आत्मपक्ष और उनकी सच्चाई का दस्तावेज है। भिखारी ठाकुर ने लिखना पढ़ना इसलिए सीखा ताकि भिखारी पुस्तिका सूची और भिखारी शंख शमदान जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ तैयार किए जा सकें, जो आज भी उनके साहित्यिक जीवन का सबसे विश्वसनीय प्रमाण है।
2: धीरे धीरे उनकी कला का प्रभाव आरा से बलिया तक, मुजफ्फरपुर से गोरखपुर तक और जौनपुर से झरिया तक और फिर बहुत दूर असम से डिब्रूगढ़ तक पहुंच गया। जहां भी उनकी मंडली मंच सजाती, वहां एक नया सामाजिक प्रभात उगता। लोग हंसते, रोते और स्वयं को पहचानते।
1: श्रोता, हम आपको बताना चाहेंगे, पुराने समय में गांव में औरतों का मंच पर आना समाज स्वीकार नहीं करता था, इसलिए नाटक, नौटंकी, बिरहा सब में पुरुष ही स्त्रियों की भूमिका निभाते थे। कहानी, लोकगीत और नृत्य बचाने का बस यही तरीका था।
2: भिखारी ठाकुर की मंडली में भी स्त्रियां मंच पर नहीं आती थी, इसीलिए भिखारी ठाकुर खुद कई बार स्त्री का अभिनय करते, उनके साथी भी किया करते। यही शैली आगे चलकर उनकी पहचान बन गई। इसमें पुरुष कलाकार औरत का रूप धरकर स्त्री भूमिकाएं निभाते हैं। नाच, गाना, अभिनय सब पुरुष ही किया करते।
1: श्रोताओं, उत्तर भारत, खासकर बिहार, पूर्वी यूपी और भोजपुरी अंचल में सदियों से ऐसे प्रदर्शन होते आए थे जहां पुरुष स्त्री रूप में नाचते थे। भिखारी ठाकुर ने इस परंपरा को व्यवस्थित रूप दिया, इसे सामाजिक मुद्दों से जोड़ा और कथा में भावनात्मक गहराई जोड़कर इसे लोकप्रिय बना दिया। उन्होंने अपने नाटकों विदेशिया, बेटी बेचवा, गबर घिचोर में स्त्री किरदार बहुत गहरे और संवेदनशील बनाए। इन्हें निभाने के लिए लौंडा नाच कलाकार बेहद महत्वपूर्ण साबित हुए।
2: उनका जीवन उस नदी की भांति था जो पहाड़ों से निकलकर शहरों और गांवों के बीच बहती है और बहते बहते मिट्टी को भी उपजाऊ बना देती है। भिखारी ठाकुर ने सिर्फ नाटक नहीं रचे, उन्होंने समाज की आंखें भी खोल दी। उनकी आवाज आज भी हवा में तैरती है और उनकी कला समय की धूल पर अमिट अक्षरों की तरह अंकित है। भिखारी ठाकुर अब सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि एक परंपरा, एक लोक ध्वनि, एक कला संसार बन चुके थे। लोग कहते,
4: जैसे धूप बिना छांव ना, भिखारी बिना मंच ना।
2: उनकी कला ने इतना प्रभाव डाला कि उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाने लगा।
1: भिखारी ठाकुर की मंडली सिर्फ कलाकारों का समूह नहीं थी, वो एक परिवार थी, एक परंपरा थी और एक जीवित नदी थी जिसमें हर सुर अपनी कहानी लेकर बहता था। इस नदी के सबसे चमकदार मोती थे रामचंद्रमा जी, जिनके कदमों की थिरकन में स्त्री पात्रों की पीड़ा और कोमलता दोनों समाई थी। मंच पर महिलाओं का आना तब संभव नहीं था और यही वजह थी कि मांझी जैसे कलाकारों ने नारी रूप धारण कर उस रिक्ति को भरा, जैसे कोई दीपक अंधेरे की जगह ले लेता है। उनके साथ थे महेंद्र, जिनकी गायकी मंच को जीवित कर देती थी, राम, लच्छन और जूठन, जिनकी हंसी से भारी कथा हल्की हो जाती थी।
2: और संगीत की नींव संभाले थे घिनगांव की ढोलक, तफजुल की ताल, अलीजान की सारंगी और जगदेव का हारमोनियम, जो भिखारी ठाकुर के प्रत्येक संवाद को सांस देने का काम करते। ये मंडली उस दौर का जीवंत प्रमाण थी कि कला जाति, धर्म या रूप नहीं देखती, बस मन की सच्चाई और प्रस्तुति की निष्ठा को पहचानती है। सन 2021 में भारत सरकार ने रामचंद्र मांझी को पद्मश्री देकर इस परंपरा को सम्मान दिया, ये बताते हुए कि जो कला कभी उपहास झेलती थी अब देश की शान बन चुकी है।
1: और यादगार तो 1963 का भूषण भी है, जब भोजपुरी फिल्म विदेशी आई, जिसमें भिखारी ठाकुर ने अपनी कविता डगरिया जोहतना अपनी आवाज में गई। भिखारी ठाकुर जी का नाम भले ही भिखारी था, पर लोक भावना को उन्होंने इतनी समृद्धि दी कि कोई युग उसकी गिनती नहीं कर सकता। वे एक कलाकार नहीं, पूरी भोजपुरी सभ्यता की धड़कन थे। उनके नाटक, उनके गीत और उनकी बोली आज भी उसी तरह जिंदा है जैसे बारिश के बाद मिट्टी की सुवास। उनकी देह भले मिट्टी में समा गई, पर उनकी कला वो आज भी गांव की हर चौपाल में, हर मेले की हलचल में और हर गायक की सांस में बसी हुई है।
2: दिन ढलने से पहले आसमान का रंग सबसे उज्जवल होता है और शायद कलाकार का जीवन भी ऐसा ही होता है, जिसमें सूरज ढलने लगता है और उसकी रोशनी उतनी ही दूर तक फैलती है। भिखारी ठाकुर के जीवन का अंतिम पड़ाव भी उसी सुनहरे उजाले जैसा था। उनकी आवाज में अब पहले वाली ताकत नहीं थी, पर उनकी कला अब भी नदी की तरह बह रही थी, एक ऐसी नदी जो सूखने से पहले सबसे ज्यादा गाती है।
1: 10 जुलाई 1971 की सुबह जब भिखारी ठाकुर ने दुनिया को अलविदा कहा तो पूरा इलाका थमसा गया। सचमुच ऐसे लगा जैसे गीत की तान टूट गई हो और सांझ बिना रंग की हो गई हो। उनकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित की गईं, मानो उनकी कला अब नदी से निकलकर समुद्र की अनंत लहरों में घुल रही हो।
3: गांव देहात की गलियों में आज भी लोग कहते हैं, जे माटी से उपजल वही माटी में समाइल।
2: जीवन में उन्हें संघर्ष ज्यादा मिला पर सम्मान भी कम नहीं। 1930 से 40 के दशक में ब्रिटिश सरकार ने राय साहब जैसे बड़े आदर के संबोधन दिए और आज उनकी हर पुण्यतिथि पर सरकारी समारोह होते हैं, मंच सजते हैं, गीत गूंजते हैं, अनगिनत कलाकार, नेता और साहित्यकार ये मांग भी करते हैं कि इस मिट्टी के बेटे को भारत रत्न मिलना चाहिए।
3: श्रोताओं, भिखारी ठाकुर केवल एक व्यक्ति नहीं पूरे पूर्वांचल की धड़कन बन गए थे। उनके नाटक बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल तक पहुंचे। लोगों की भीड़ उनका नाटक देखने ऐसे उमड़ पड़ती जैसे मेला लग गया हो। आज उनके गीत किताबों में पढ़े जाते हैं, शोध संस्थानों में समझे जाते हैं और नए नए गायकों की आवाज में फिर से जन्म लेते हैं। छपरा, पटना, सारण, हर जगह उनके नाम पर मंच, पुरस्कार और केंद्र खुल चुके हैं।
2: श्रोताओं, कला के लिए भिखारी ठाकुर ने हमें सिखाया कि कलाकार वो है जो समाज की पीड़ा को खुद महसूस करे और फिर शब्दों, सुरों और अभिनय में ढाल दे। आज भी हर गायक, हर नाटककार भिखारी जी से यही सीख पाता है। इस कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में हम आपको भिखारी ठाकुर जी के लिए चार पंक्तियां सुनाना चाहेंगे जो उनके जीवन, उनकी कला और उनकी आत्मा को एक साथ समेट लेती है।
3: माटी से उठल, माटी में मिलल, सुरवा बनके ऊ बही गईल, रोवेला समय गावे लोक, भिखारी नाम अमर हो गई। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद और आज हमने अपने इस कार्यक्रम भारत विभूति में खूब सारी बातें की महान नाटककार, गीतकार, संगीतकार श्री भिखारी ठाकुर जी पर। अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन दीपक नेमा का और आपके सामने प्रस्तुत किया मैंने यानी संदीप शर्मा,
2: मैंने यानी स्वाति ने।
3: फिलहाल दीजिए इजाजत, सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए रेडियो आजाद हिंद।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ और सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
0: नब्बे दशमलव 5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। श्रोताओं, आप समय मिला सकते हैं, सुबह के ठीक 10 बजे हैं और ये कार्यक्रम है परिक्रमा का। भोपाल शहर की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी आप सुनते हैं परिक्रमा कार्यक्रम में। तो आइए श्रोताओं, जानते हैं कल क्या क्या हुआ हमारे भोपाल शहर में। दिन भर की तपिश के बाद जैसे ही शाम ढली, रविंद्र भवन का हंस ध्वनि सभागार, घुंघरुओं की मधुर खनक, शास्त्रीय संगीत, सांस्कृतिक रंगों से सराबोर हो उठा। मंच पर हल्की रोशनी, बैकग्राउंड में गूंजते मंत्र, पारंपरिक वेशभूषा में सजी नन्ही कलाकार, उनके हाथों की सुंदर मुद्राएं, आंखों का गहरा श्रृंगार, पैरों में बंधे घुंघरुओं की लय, जैसे जैसे वे मंच की ओर बढ़ी, सभागार में बैठा हर व्यक्ति बस उन्हें निहारता ही रहा। मौका था शुक्रवार को 27वें कलांजलि महोत्सव का, जहां 102 बच्चों ने भरतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुति दी। श्रोताओं, कार्यक्रम का सबसे भावुक पल रहा रंग प्रवेशम। इस दौरान 27 नन्ही नृत्यांगनाएं मंच पर पहुंची, भगवान के आह्वान के साथ पारंपरिक पुष्पांजलि नृत्य उन्होंने प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुति के माध्यम से देवताओं देवियों को पुष्प अर्चन कर मंचीय यात्रा की शुरुआत की गई। रंग यानी मंच, प्रवेशम यानी प्रवेश, यह केवल पहली औपचारिक प्रस्तुति नहीं थी, यह गुरु द्वारा अपने शिष्य को एक पेशेवर नर्तक के रूप में सार्वजनिक मान्यता देने का प्रतीक भी माना जाता है। 2 घंटे के कार्यक्रम में 10 प्रस्तुतियां हुई। नृत्य संयोजन गुरु प्रदीप कृष्णन ने किया। भगवान शिव को समर्पित इस उत्सव में अगली प्रस्तुति नटेश कौथुवम रही। यह भरतनाट्यम की एक पारंपरिक ऊर्जावान प्रस्तुति है। यह भगवान नटराज की प्रस्तुति नटराज की स्तुति पर आधारित थी। इसके बाद अलारिप्पू की प्रस्तुति हुई, जिसका अर्थ होता है खिली हुई कली। भरतनाट्यम नृत्य प्रदर्शन के आरंभ में इसे किया जाता है। यह देवताओं के लिए एक आह्वान है। इसी क्रम में जतीश्वरम में कठिन ताल लयकारी की सुंदर प्रस्तुति देखने को मिली। शब्दम

श्रोताओं, रविंद्र भवन में शुक्रवार को 22वें स्मरण हबीब रंग आलाप नाट्य महोत्सव के समापन अवसर पर जब नया थिएटर के कलाकारों ने इस नाटक का मंचन किया तो पूरा सभागार कभी ठहाकों से गूंजा, कभी लोग धुनों पर झूमा और अंत में एक गहरे सन्नाटे में डूब गया। नाटक था चरणदास चोर, हबीब तनवीर का वह कालजयी नाटक जिसने पिछले 5 दशकों से दुनिया भर के दर्शकों को हंसाया भी है, रुलाया भी है और सोचने पर मजबूर भी किया है। राजस्थानी लोक कथा पर आधारित इस कहानी का नायक एक साधारण चोर है जो अपने गुरु को 4 वचन देता है। किस्मत उसे बार बार उन वचनों को तोड़ने की स्थिति में लाती है, लेकिन वह अंतिम वचन सत्य बोलने का नहीं तोड़ता। यही जिद उसे मौत तक पहुंचा देती है। नाटक का सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि जब सच बोलने वाला मर जाता है तब असली चोर कौन है। सादे मंच, ढोलक मांदल की थाप, पंथ नृत्य और छत्तीसगढ़ी लोक शैली के बीच सतीश व्याम का चरणदास दर्शकों के दिल में उतर गया। क्लाइमेक्स में जब चरणदास झूठ बोलने से इनकार करता है और उसकी हत्या कर दी जाती है तो पूरा हॉल कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह जाता है। 5 दिनों तक चले महोत्सव का समापन इस नाटक के साथ होना प्रतीकात्मक भी था।

परिक्रमा में श्रोताओं, अब हम आपको देते हैं आगामी गतिविधियों की जानकारी। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय भोपाल अपने 15वें स्थापना दिवस के अवसर पर 17 से 20 जून तक 4 दिवसीय स्थापना रंग महोत्सव का आयोजन करेगा। संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आयोजित इस महोत्सव में मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और रंग प्रयोगशाला के विद्यार्थियों की प्रस्तुतियां मंचित की जाएंगी। सभी नाटक प्रतिदिन शाम 7 बजे से रविन्द्र भवन स्थित अंजनी सभागार में होंगे। महोत्सव का शुभारंभ 17 को राम सिंह पटेल लिखित और कन्हैया लाल कैथवास निर्देशित आलो माटी आलो राज से होगा। 18 को नंद किशोर तिवारी द्वारा लिखित और डॉक्टर योगेंद्र चौबे द्वारा निर्देशित रानी दाई का मंचन किया जाएगा। 19 को संस्कृत के महानाटककार महाकवि शूद्र के कालजयी नाटक मृच्छकटिक की प्रस्तुति होगी। वहीं समापन 20 को होगा, जहां गुड़िया की शादी का मंचन किया जाएगा।

रंग प्रेमी रंगमंच प्रेमियों के लिए शनिवार शाम एक खास नाट्य प्रस्तुति होने जा रही है। रविंद्र भवन में शाम 7 बजे चौक सर्कल कॉकेसिया का नाटक मंचन किया जाएगा। यह विश्व प्रसिद्ध जर्मन नाटककार बर्टोल्ट ब्रेख्त की चर्चित नाटक द कॉकेशियन चौक सर्कल का हिंदी रूपांतरण है। नाटक का निर्देशन अभिजीत सोलंकी ने किया है। यह प्रस्तुति टैगोर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एमए ड्रामेटिक्स प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों द्वारा तैयार किया गया है। नाटक में समाज, सत्ता, इंसानियत, न्याय जैसे विषयों को मंचित किया जाएगा। निर्देशक अभिजीत सोलंकी ने बताया कि इस प्रस्तुति को तैयार करने में विद्यार्थियों ने काफी मेहनत, समय, भावनात्मक जुड़ाव दिया है। नाटक में संगीत तेजस्वी और अनिरुद्ध ने दिया है, जबकि प्रोजेक्शन डिजाइन निखिल बंसल ने किया है। ये प्रस्तुति दर्शकों के लिए निशुल्क रहेगी। वहीं शनिवार शाम छतनारा समूह द्वारा अनहद कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रख्यात सूफी बैंड अधिरोहा सूफी कव्वाली प्रस्तुत करेगा। कार्यक्रम रंग श्री सभागार श्यामला हिल्स पर आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत पहले गायक वेद पांड्या प्रस्तुति देंगे, जिसके बाद कवि निशांत सूफी साहित्य और परंपरा को समझाएंगे। इसके बाद अधिरोह बैंड की मुख्य प्रस्तुति होगी। छतनारा समूह की निर्देशिका मोहिनी शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम की परिकल्पना इस आधार पर की गई है कि हम सूफी परंपरा के इतिहास, विस्तार और संदेश को सुंदरता के साथ लोगों तक पहुंचा सकें। अधिरोह बैंड हाल ही में दुबई और श्रीलंका में भी प्रस्तुति दे चुका है। कला, साहित्य और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से कार्यरत कला व्योम फाउंडेशन द्वारा अक्षदा सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से आयोजित मासिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत कवि सम्मेलन का आयोजन कुबेर बैंक्वेट बाग मुगालिया में संपन्न हुआ। श्रोताओं, इस सम्मेलन में डॉक्टर नुसरत मेहंदी ने अपनी शायरी के माध्यम से प्रेम, इंसानियत और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम परिक्रमा, जिसमें आप सुन रहे थे भोपाल शहर की सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियों की जानकारी। परिक्रमा कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आप बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों रणबांकुरों जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

0: नमस्कार श्रोताओं, आजाद हिंद में हम रोज करते हैं कुछ ऐसे वीर महापुरुषों की बातें जो अपने आप में अद्वितीय रहे हैं। वो लोग जो एक मिसाल बनकर आज भी सारे जग को रोशनी दे रहे हैं। उन वीरों की बातें यहां करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि सभी को उन जैसा ही बनने की प्रेरणा मिले और सभी का उद्धार हो।
1: इसी कड़ी में एक और मोती आज जोड़ा जाएगा और ये मोती है लाला लाजपत राय जी। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1856 को पंजाब में अपने नाना के घर दुड्डिक के ग्राम में हुआ। लाला जी का पैतृक घर लुधियाना जिले में जगराव नाम के छोटे से कस्बे में था, जहां लाला जी के पिता राधा कृष्ण जी स्कूल में शिक्षक थे। वे उर्दू के अच्छे ज्ञाता और स्वामी दयानंद के परम भक्त थे।
0: लाला जी को सेवा और साहित्य से गहरा प्रेम था। माना जाता है कि उन्हें साहित्य से लगाव और देश प्रेम का जज्बा अपने पिता से विरासत के रूप में ही मिला था। राधा कृष्ण जी की यही इच्छा थी कि पुत्र लाजपत उन्हीं की तरह दीन दुखियों की सेवा करे। इसीलिए उन्होंने पुत्र के लिए अच्छी शिक्षा का भी प्रबंध किया ताकि वो समाज की कठिनाइयों को भली भांति समझ सके।
1: एक बार लाला जी के पिता बहुत बीमार पड़े। बालक लाजपत ने उनकी बहुत सेवा की और छोटे भाई बहनों को भी संभाला। पिता जब अच्छे हुए और उन्होंने जाना कि कितनी परेशानी के बीच स्वयं को रखकर लाजपत ने घर और उनकी देखभाल की है और नौकर के न होने पर भी सारा काम खुद किया है, तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। बेटे को तकलीफ देने के लिए जब उन्हें ग्लानी हुई और उन्होंने लाजपत से ये कहा तो लाजपत ने उन्हें रोक दिया। पिता की सेवा को अपना परम कर्तव्य मानते हुए उन्होंने इसे अपना सुख बताया।
0: बालक लाजपत की ये बात सुन पिता को पूरा भरोसा हो गया कि बेटा जरूर बड़ा होकर देश सेवा में ही अपना जीवन समर्पित कर देगा। शायद उनके आशीर्वादों के ही फलस्वरूप लाला लाजपत राय भारत के सबसे निष्ठावान सेवकों में से एक माने जाते हैं।
1: सही है, माता पिता के आशीर्वाद के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं। लाला जी ने पिता की इस बात को गांठ बांध लिया और विद्यार्थी जीवन से ही सेवा कार्य में लग गए। वे अपने पिता की ही तरह उर्दू में लेख भी लिखते और भाषण भी करते। इससे उनकी योग्यता में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी हुई। जब उन्होंने वकालत पास की तो सभी नतीजे बहुत ही बढ़िया आए।
0: फिर उन्होंने हिसार में वकालत शुरू की, क्योंकि बुद्धि उनकी विलक्षण थी और बोलने में तो वो तेज थे ही। बस बहुत जल्द सफलता उनके कदम चूमने लगी। बस एक बात यहाँ बताना बहुत जरूरी है कि वो जो भी कमाते उसका अधिकांश हिस्सा वो सेवा कार्यों में लगा देते। हिसार में उन्होंने ही आर्य समाज की शाखा स्थापित की। इस कार्य हेतु अपने पास से 1500 रुपए की राशि उन्होंने दान की। हिसार में ही संस्कृत विद्यालय की भी स्थापना उन्होंने की और भी बहुत कुछ केवल सेवा के उद्देश्य से किया।
1: लाला जी की कई सारी विशेष बातें हैं जो हम जानेंगे इस गीत के बाद।

0: हिसार में अपने कार्यों से लाला जी बहुत प्रिय नेता हो गए थे। आर्य समाज का मुख्य कार्य अछूतोद्धार था। लाला जी की भी इसमें विशेष रुचि थी। उन्हें किसी एक समुदाय को इस तरह समाज से काट देना ठीक नहीं लगता था। उन्होंने कांगड़ा और संयुक्त प्रांत के पहाड़ी इलाकों में जाके अछूतों के लिए बहुत काम किया।
1: किसी भी व्यक्ति के उद्धार में सबसे बड़ा हाथ होता है शिक्षा का, पर इस शिक्षा के प्रचार के लिए पैसा चाहिए होता है। लाला जी ने इसी काम के लिए 40,000 रुपये दान किए। इस पैसे से अछूतों के लिए पाठशालाएं खोली गईं। इसके अलावा आर्य समाज के स्कूलों में भी अछूतों को स्थान दिलाने की दिशा में बहुत काम किया। उनके ही प्रयासों से ये छात्र गुरुकुलों में भर्ती हो सकते थे।
0: नौजवानों की शिक्षा दीक्षा को लेकर लाला लाजपत राय बड़े चिंतित रहते थे। हूँ भी क्यों ना, आखिर देश का भविष्य नौजवान पीढ़ी ही तो होती है। अगर इसी पीढ़ी में शिक्षा और ज्ञान का प्रसार अच्छी तरह न हुआ तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। अंग्रेजी स्कूलों में भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाता था। इसके अलावा वो बहुत ही महंगे और खर्चीले भी थे। कॉलेज से लड़के पढ़कर निकलते थे तो वे बस साहब बन जाते थे। व्यवहारिक पक्ष से वो कमजोर भी होते थे। उनके मन में स्वदेश प्रेम नहीं के बराबर होता था।
1: इस बात पर लाला जी अक्सर सोचा करते थे कि ऐसा कॉलेज खोला जाए जिसमें अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी और संस्कृत भी पढ़ाई जाए। इससे ही नौजवानों में अपने इतिहास के प्रति गौरव का भाव उत्पन्न होगा। ये विचार बहुत ही अच्छा था। इसका खर्चा भी वे कम ही रखना चाहते थे ताकि सभी को समान रूप से शिक्षा मिल सके, खासकर गरीब तबके के जहीन विद्यार्थियों को।
0: लाला हंसराज की मदद से लाहौर में कॉलेज भी खुल गया। इस कॉलेज का नाम दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज रखा गया। इस कॉलेज के लिए सरकारी सहायता लेना लाला जी को बिल्कुल गवारा न था। सभी सरकारी कॉलेजों के मुकाबले भी यहाँ की फीस सबसे कम थी। लाला लाजपत राय ने कॉलेज चलाने के लिए बहुत सा धन एकत्रित किया। फिर ऐसे ही कॉलेज भारत के कई और शहरों में भी खोले गए। इन कॉलेजों से ऐसे ऐसे क्रांतिकारी और देशभक्त पैदा हुए जिन्होंने भारत की उन्नति के लिए बहुत कार्य किया।
1: लाला जी ने शिक्षा को आगे बढ़ाने में जो कार्य किया वो अतुल्य है, पर तुम अपना कार्य भूल रहे हो इतिहास। श्रोताओं को एक अच्छा सा देशभक्ति गीत तो सुनवाओ।
0: हाँ।

0: इस गीत के बाद अब आगे भी तो बताओ, और क्या क्या किया लाला जी ने?
1: अब तुम तो जानते ही हो कि कितने देशभक्त और सेवा भाव वाले व्यक्ति थे लाला जी। एक बार की बात है, उन दिनों देश में अकाल पड़ा, लाला जी से रहा न गया। उन्होंने पीड़ितों की सेवा करने का निश्चय कर लिया। प्रभावित इलाकों में जाकर वे अन्न और दूसरी सहायता पहुंचाने में लग गए।
0: वे क्रांतिकारी विचारधारा वाले व्यक्ति थे। उन्होंने उर्दू दैनिक वंदे मातरम में लिखा, मेरा मजहब हक परस्ती है, मेरी मिल्लत कौम परस्ती है, मेरी हबादत खलक परस्ती है, मेरी अदालत मेरा अंतःकरण है, मेरी जायदाद मेरी कलम है, मेरा मंदिर मेरा दिल है, और मेरी उमंगे सदा जवान है।
1: धर्म के बारे में उनका विचार था, धर्म सिखाया नहीं जा सकता, वो उसी वातावरण में उन्नति पाता है जिससे विचारों की मलिनता हटा दी गई हो। धर्म ठीक विचार है, सही अनुभव है और उचित कार्य है। कितने लोग ऐसी सुलझी हुई बात कह पाते हैं?
0: उनके ये शब्द तो अनमोल हैं। जो धर्म वर्तमान सामाजिक ढांचे को कर्मों के आधार पर सही बताए और जायदाद विरासत और विवाह के कानून की बाबत प्रचलित विचारों का पक्ष ले, वो धर्म झूठा है। इस कड़कती हुई बात से उनके व्यक्तित्व का रौब और साहस झलकता है।
1: कई बार जेल यात्राएं की, कई बार उन्हें छल से फंसाया भी गया, पर अपने साहस को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। जेलों में भी रहे तो पुस्तकें लिखते रहे। महान अशोक, श्री कृष्ण और छत्रपति शिवाजी पर उन्होंने पुस्तकें लिखी। इटली के महान क्रांतिकारियों मेजिनी और गैरिबाल्डी पर भी उन्होंने पुस्तकें लिखी। वे अच्छे लेखक थे, अंग्रेजी के विद्वान थे, परंतु पुस्तकें उर्दू में ही लिखते थे। साधारण जनता के समझ में आने वाली भाषा उन दिनों उर्दू ही थी।
0: मांडले की जेल यात्रा से लौटते ही उन्होंने वकालत छोड़ दी, देश को ही समर्पित हो जाने का फैसला ले लिया। 1914 में कांग्रेस ने उन्हें एक डेप्यूटेशन पे इंग्लैंड भेजा। लालाजी काम खत्म हो जाने के बाद भी वहीं बने रहे, फिर वहां से जापान चले गए। जापान से लौटने को ही थे कि विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। भारत सरकार ने उन्हें लौटने की आज्ञा नहीं दी, इसलिए वे दोबारा इंग्लैंड होते हुए अमरीका निकल गए। वहां उन्होंने देश हित में काफी काम किया। उनकी पुस्तक यंग इंडिया वहां बहुत प्रसिद्ध हुई।
1: अरे इतिहास, अपनी धुन में इतने मगन हो कि गीत का समय हो गया ये भी भूल गए?
0: मैं इतिहास हूँ, कुछ नहीं भूलता। ये लो, तुम्हारा पसंदीदा देशभक्ति गीत भी लगा दिया। श्रोताओं के साथ तुम भी इसका आनंद लो।

0: हाँ, गीत तो बहुत ही सुंदर था, पर इससे भी सुंदर बात ये है कि तुम लाला लाजपत राय की बातें सुना रहे हो। आगे तो सुनाओ।
1: हाँ, तो आगे की बात ये है कि जब वे स्वदेश लौटे तो उन दिनों कांग्रेस का आंदोलन जोरों पर था। कलकत्ता के अधिवेशन में लाला जी इसके प्रधान चुने गए, पर थोड़े ही दिनों बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया गया। उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, पर बिना इसकी परवाह किए वो देश सेवा में रत रहे।
0: 1928 में साइमन कमीशन हिंदुस्तान आया। कांग्रेस ने इसे बॉयकॉट किया और जहां भी ये कमीशन गया इसे विरोध ही झेलना पड़ा। देश भर में काले झंडों से इसका स्वागत किया जा रहा था। ऐसे ही जब ये जत्था लाहौर पहुंचा तो स्टेशन पर हजारों की भीड़ ने साइमन वापस जाओ के नारे लगाना शुरू कर दिया।
1: लोगों की अपार भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया। लाला जी सबसे आगे विरोध में खड़े थे, इसलिए कई लाठियां उनके सीने में एक साथ लगी। भय से पीछे हट जाने के बजाय उन्होंने गर्जना की कि मेरी छाती पर लगा एक एक वार भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की काठी में एक एक कील साबित होगा।
0: पंजाब केसरी थे वो, पर आखिर थे तो इंसान ही, कितना सहते। छाती लाठियों के वार से सूज गई और बुखार रहने लगा। अंत में इन्हीं वारों की वजह से उनके प्राण निकले और 17 नवंबर 1928 को वे धरती धाम से कूच कर गए।
1: भारत माँ के इस लाडले ने अपने जैसे कई वीर सपूतों को बनाने में अप्रतिम योगदान दिया और अपना ही नहीं कईयों का जीवन सफल किया। ऐसे महान देशभक्तों को शत शत नमन।

0: वादा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। तो अब दीजिए हमें इजाजत, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे,
3: तब तक के लिए नमस्कार।

0: स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: फिर से अनूप भट्ट हास सिंह नाद होवे, फिर से

रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुन सकते हैं प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आज़ाद हिंद है। अब वक्त कार्यक्रम सुरसागर का है। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं गायन वादन, लोकगीत, गजलें और बहुत कुछ। आज आप सुनेंगे भक्ति पदों का गायन।

0: कलाकार हैं पूर्वी सप्रे। ये प्रस्तुति हुई भारत भवन में आयोजित संतवाणी समारोह में।
1: आज की सभा की शुरुआत हम सृष्टि पूर्वी सप्रे के गायन से कर रहे हैं। पूर्वी सप्रे और उनके सभी संगत कलाकारों को कर्तध्वनि से आइए हम इस उदीवान संभावनाशील प्रतिभा का अभिनंदन करें, स्वागत करें। आज की सभा में आपके साथ जो संगत कलाकार मंचासीन हो रहे हैं, तबले पर उस्ताद इकरार हुसैन, हारमोनियम पर श्री अतुल अजवाल, तानपुरी पर शंभवी और शिविका सक्सेना, सारंगी पर श्री सिराज हुसैन और मंजीरी पर श्री सुहास बाजखेड़े। प्रिय श्रोताओं, संगीत अनंत की यात्रा है। इस सृष्टि की पहली श्रुति ओंकार से निकला है नाद। हमारी ऋषि परंपरा ने नाद को पराशक्ति कहा, ईश्वर कहा, प्रार्थना और पूजा कहा। जाने कितने रूपों में ढलती रही है यह अमृतवाणी। इसी से प्रेरित होकर साधक मनीषियों ने परंपराओं, प्रवृत्ति और घरानों का बहुरंगी संसार बसाया। पीढ़ियों को इस महान विरासत का उत्तराधिकार सौंपा। इस महादेश का सौभाग्य है कि संस्कारवान पीढ़ियां सुरों का परचम थामे भारतीय संस्कृति का दिग्दिगंत उद्घोष करती रही है। संतवाणी स्वर शब्द और गान की त्रिवेणी में आवाहन करती इसी महिमा का जीवंत साक्ष्य है। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश का गौरवशाली अतीत हमें बार बार याद दिलाता है कि यहाँ ग्वालियर संगीत घराना भी हुआ करता है। उसकी महिमा का साक्ष्य आज भी नई पीढ़ी के संगीतकारों में हमें दिखाई देता है। सृष्टि पूर्वी सप्रे कैसे ही इस घराने की होनहार और संभावना से भरी प्रतिभा है। ग्वालियर के ही संगीत संस्कारी परिवार में आपका जन्म हुआ। गुरु तुल्य दादी श्रीमती माणिक सप्रे और गायक पिता श्री विजय सप्रे से बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत मूर्धन्य गायक पंडित श्रीराम मराठे तथा बाद में उस्ताद इकरार हुसैन के सानिध्य में आपने कंठ संगीत की बारीकियों तथा विधागत गायन के व्यवहार की तालीम ली। अपनी अनेक स्वतंत्र प्रस्तुतियों के साथ पूर्वी ने तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर सहित मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के अनेक उत्सवों में दस्तक दी है। जवाहर बाल भवन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन। जो

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद के ज्ञान भंडार का परिचय आपको मिला। उन्हें भारतीय प्राचीन ग्रंथों के साथ साथ देश तथा संप्रदायों के इतिहास का भी ज्ञान था। वे सिर्फ पढ़ते ही न थे बल्कि तथ्यों को अपने तर्क से समझकर उसकी व्याख्या भी करते थे।
1: स्वामी जी पूरे देश में भ्रमण कर लोगों से मिलकर ये समझे थे कि हमारे देश में दो प्रचलित धारणाएं हैं। एक मत ये है कि जो कुछ पश्चिम देशीय है वही निर्दोष, पूर्ण और सर्वांग सुंदर है। हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं जो विचार योग्य हो या जिसका पालन किया जा सके।
0: दूसरे मतावलंबी ये समझते हैं कि हमारे देश का आचार, आचरण और विचार ही श्रेष्ठ हैं। हम पश्चिम से कुछ सीख सकते हैं ये उन्हें मान्य नहीं। दोनों ही विचार संकुचित तथा संकीर्ण हैं।
1: स्वामी जी ने दोनों मतों को समझा और इन धुंधली धारणाओं को दूर करने के लिए प्राच्य तथा पाश्चात्य नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में उन्होंने दोनों संस्कृतियों की तुलना, प्रशंसा तथा आलोचना की है। इसमें उन्होंने उन सभी तथ्यों को शामिल किया है जिनमें विभिन्न संस्कृतियों का जन्म हुआ है।
0: आज हम स्वामी जी के कुछ विचारों को देखेंगे कि उन्होंने प्राच्य और पाश्चात्य जातियों के चरित्र के बारे में क्या कहा है।
2: प्रत्येक जाति का एक जातीय उद्देश्य है। प्राकृतिक नियमों के अनुसार या महापुरुषों की प्रतिभा के बल से प्रत्येक जाति की रीति नीति उस उद्देश्य को सफल करने के लिए उपयोगी है। प्रत्येक जाति के जीवन में इस उद्देश्य एवं उसके उपयोगी उपाय स्वरूप आचार को छोड़कर और सब रीति नीति व्यर्थ है। इन व्यर्थ की रीति नीतियों के ह्रास या वृद्धि से कुछ विशेष बनता बिगड़ता नहीं। यदि उस विशेष उद्देश्य पर आघात होता तो वो जाति जरूर नष्ट हो जाती है।
1: उन्होंने विभिन्न जातियों की तुलना भारतीयों से की है।
2: तीन वर्तमान जातियों की तुलना कीजिए जिनका इतिहास आप थोड़ा बहुत जानते हैं। वे हैं फ्रांसीसी, अंग्रेज और भारतीय। राजनीतिक स्वाधीनता फ्रांसीसी जातीय चरित्र का मेरुदंड है। फ्रांसीसी प्रजा सब अत्याचारों को शांत भाव से सहन करती है। करों के भाव से पीस डालिए फिर भी वो चूं तक न करेगी। सारे देश को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर डालिए पर कोई आपत्ति न की जाएगी, किंतु जब कोई उनकी स्वाधीनता में हस्तक्षेप करता है तब सारी जाति पागलों की तरह प्रतिघात करने लगती है। कोई व्यक्ति किसी के ऊपर जबरदस्ती अपना हुक्म नहीं चला सकता। यही फ्रांसीसियों के चरित्र का मूल मंत्र है। ज्ञानी, मूर्ख, धनी, दरिद्र, उच्च वंशीय, नीच वंशज, सभी को राज्य के शासन और सामाजिक स्वाधीनता में समान अधिकार है। इसके ऊपर हाथ डालने वाले को ही इसका फल भोगना होगा।
0: अब सुनिए उन्होंने अंग्रेज जातीय चरित्र के बारे में क्या कहा था।
2: अंग्रेजों के चरित्र में व्यवसाय बुद्धि तथा आदान प्रदान की प्रधानता है। अंग्रेजों की आवश्यकीय विशेषता है समान भाग, न्याय विभाग। अंग्रेज राजा और कुलीन जाति के अधिकार को नतमस्तक होकर स्वीकार कर लेते हैं, परंतु यदि गांठ में से पैसा बाहर करना हो तो वे हिसाब मांगते हैं। राजा है तो अच्छी बात है, उसका लोग आदर करेंगे, किंतु यदि राजा रुपया चाहे तो उनकी आवश्यकता और प्रयोजन के संबंध में हिसाब किताब समझा बूझा जाएगा, तब कहीं देने की बारी आएगी। राजा की बलपूर्वक रुपया इकट्ठा करने की इच्छा से यहाँ विप्लव खड़ा कर दिया, उन लोगों ने राजा को मार डाला।
1: अब वे भारतीयों के चरित्र की व्याख्या करते हैं।
2: भारतीय कहते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक स्वाधीनता बहुत अच्छी चीज है, किंतु वास्तविक चीज आध्यात्मिक स्वाधीनता अर्थात मुक्ति है। यही जातीय जीवन का उद्देश्य है। वैदिक, जैन, बौद्ध, द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत सभी इस संबंध में एकमत हैं। इसमें हाथ न लगाना, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। इसे छोड़कर और चाहे जो कुछ करो चुप रहेंगे। लाठी मारो, काला कहो, सर्वस्व छीन लो, इससे होता कुछ नहीं, किंतु इसी दरवाजे को छोड़ दो। प्राचीन काल में पठान लोग आते जाते थे, कोई स्थिर होकर राज्य नहीं कर सका क्योंकि धर्म पर वे बराबर आघात करते रहे। परंतु दूसरी ओर मुगल राज्य किस प्रकार सुदृढ़, प्रतिष्ठित तथा बलशाली हुआ, कारण यही है कि मुगलों ने इस स्थान पर आघात नहीं किया, भारतीय ही तो मुगलों के सिंहासन के आधार थे। जहांगीर, शाहजहां, दारा, शिकोह आदि सभी की माताएं हिंदू थीं। और देखो, जो ही भाग्यहीन औरंगजेब ने उस स्थान पर आघात किया, क्यों ही इतना बड़ा मुगल राज्य स्वप्न की तरह हवा हो गया। अंग्रेजों का ये सुदृढ़ सिंहासन किस चीज के ऊपर प्रतिष्ठित है? कारण यही है कि किसी भी अवस्था में अंग्रेज उस धर्म के ऊपर हस्तक्षेप नहीं करते। पादरियों ने थोड़ा बहुत हाथ डालकर ही तो सन 1857 में हंगामा उपस्थित किया था। अंग्रेज जब तक इसको अच्छी तरह समझते तथा इसका पालन करते रहेंगे, तब तक उनका राज्य कई पीढ़ियों तक संभव है बना रहे। विज्ञ बहुदर्शी अंग्रेज भी इस बात को समझते हैं।
0: उन्होंने समझाया था कि हर देश तथा जाति के पीछे एक खास शक्ति होती है, उसी जाति से चरित्र गठन होता है।
2: उसी एक महाशक्ति का फ्रांसीसियों के विस्तार के रूप में और हिंदुओं के हृदय में मुक्ति लाभ की इच्छा के रूप में विकास हुआ है। किंतु इसी महाशक्ति की प्रेरणा से कई शताब्दियों से नाना प्रकार के सुख दुखों को झेलते हुए फ्रांसीसी और अंग्रेजी चरित्र गठित हुआ है, और उसी की प्रेरणा से लाखों शताब्दियों के आवर्तन में हिंदुओं के जातीय चरित्र का विकास हुआ है।
1: उन्हें अपने देशवासियों पर पूरा भरोसा था कि एक दिन वे अपने खोए हुए आदर्शों को फिर से प्राप्त कर लेंगे।
2: ये सोचना कि हमारे राष्ट्रीय आदर्श में भूल रही है निरी मूर्खता है। पहले अन्य देशों में जाइए, अपनी आंखों से देखकर, दूसरों की आंखों से नहीं। उनकी अवस्था और रहन सहन का अध्ययन कीजिए, और यदि मस्तिष्क हो तो उन पर विचार कीजिए। फिर अपने शास्त्रों और पुराने साहित्य को पढ़िए और समस्त भारत की यात्रा कीजिए तथा विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले अधिवासियों के चाल चलन, आचार विचार का विस्तीर्ण दृष्टि और उन्नत मस्तिष्क से, बेवकूफों की तरह नहीं, विचार कीजिए। तब समझ सकोगे कि जाति अभी भी जीवित है, दुखदुखी चल रही है, केवल बेहोश हो गई है। और देखोगे कि इस देश का प्राण धर्म है, भाषा धर्म है तथा भाव धर्म है। आपकी राजनीति, समाज नीति, रास्ते की सफाई, प्लेग निवारण, दुर्भिक्ष पीड़ितों को अन्नदान आदि आदि चिरकाल से इस देश में जैसे हुआ है वैसे ही होगा। अर्थात धर्म के द्वारा यदि होगा तो होगा, अन्यथा नहीं। आपके रोने चिल्लाने का कुछ भी असर न होगा।
1: स्वामी जी सभी को मनुष्य बनने की शिक्षा देते थे, व्यर्थ के आचार विचार को वे नहीं मानते थे।
2: एक बात पर विचार कर देखिए, मनुष्य नियमों को बनाता है या नियम मनुष्यों को बनाते हैं? मनुष्य रुपया पैदा करता है या रुपया मनुष्यों को पैदा करता है? मनुष्य कीर्ति और नाम पैदा करता है या कीर्ति और नाम मनुष्य पैदा करते हैं? मेरे मित्रों, पहले मनुष्य बनिए, तब आप देखेंगे कि वे सब बाकी चीजें स्वयं आपका अनुसरण करेंगी। परस्पर के घृणित द्वेष भाव को छोड़िए और सउद्देश्य, सदुपाय, सत्साहस एवं सद्वीर्य का अवलंबन कीजिए। आपने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो अपनी कीर्ति यहीं छोड़ जाइए। तुलसी आयो जगत में, जगत हसे तुम रोए, ऐसे करनी कर चलो, आप हसे जग रोए। अगर ऐसा कर सको तब तो तुम मनुष्य हो, अन्यथा तुम कैसे मनुष्य हो?
0: हमारे देश में बहुत से लोग अंग्रेजों के चाल चलन का अनुसरण करने लगे थे। उसी में वे अपने को सभ्य तथा अंग्रेजों के बराबर समझते थे। परंतु स्वामी जी ने उन्हें समझाकर कहा था,
2: पाश्चात्य जाति के गुणों को अपने सांचे में ढाल कर लेना होगा। मेरे मित्रों, एक बात आपको और समझ लेना चाहिए, हमें अवश्य ही अन्यान्य जातियों से बहुत कुछ सीखना है। जो मनुष्य कहता है कि हमें कुछ नहीं सीखना है, समझ लो कि वो मृत्यु की राह पर है। जो जाति कहती है कि हम सर्वज्ञ हैं, उसकी अवनति के दिन बहुत निकट हैं। जितने दिन जीना है उतने दिन सीखना है, उसे अपने सांचे में ढाल लेना है, अपने असल तत्व को सदा बचाकर फिर बाकी चीजें सीखनी होंगी। खाना तो सब देशों में एक ही है, पर हम पैर समेट कर खाते हैं और यूरोपीय पैर लटका कर खाते हैं। अब मान लो कि मैं उन्हीं की तरह खाता हूं, तो क्या मुझे भी उन्हीं की तरह टांग लटका कर बैठना पड़ेगा? ऐसा होने से निश्चय ही मेरी टांग यम के ग्रह की ओर प्रस्थान करेंगी। इस दुख में जो प्राण जाएगा उसका क्या लाभ? इसलिए हमें उनका भोजन पैर समेट कर ही खाना होगा। इसी प्रकार जो कुछ भी विदेशी बातें सीखनी होंगी, उन्हें अपनी बनाकर पैर समेट कर अपने वास्तविक जातीय चरित्र की रक्षा कर तब सीखनी होगी।
1: उन्होंने जातिगत भिन्नता को समझाया था, उसके कारण बताए थे, पर कभी किसी की निंदा नहीं की।
2: वे भी अच्छे हैं और हम भी अच्छे हैं। काको बंदों काको निंदों दोनों पल्ला भारी। हाँ, ये अवश्य है कि भले की भी श्रेणियां हैं। हमारे विचार से तीन चीजों से मनुष्य का संगठन होता है, शरीर, मन और आत्मा। पहले शरीर की बात लीजिए, जो सबसे बाहरी चीज है। देखिए शरीर में कितना भेद है, नाक, मुंह, गठन, लंबाई, चौड़ाई, रंग, केश आदि में कितनी विभिन्नताएं हैं।
0: उन्होंने रंग भेद पर कहा था,
2: आधुनिक पंडितों का विचार है कि रंग की भिन्नता वर्ण संकरता से उपस्थित होती है। गर्म देश और ठंडे देश के भेद से कुछ भिन्नता जरूर होती है, किंतु काले और गोरे का असली कारण पैतृक है। बहुत ठंडे देशों में भी काले रंग की जातियां देखी जाती हैं, एवं अत्यंत उष्ण प्रदेश में भी खूब गोरी जाति बसती है। कनाडा निवासी अमेरिका के आदि मनुष्य और उत्तरीय ध्रुव प्रदेश की एस्किमो जाति काली है, तथा भूमध्य रेखा के पास बोर्नियो, सेलेबीज आदि टापुओं में बसने वाले आदिम निवासी गौरांग हैं, जबकि उनकी जलवायु गर्म है। पर चाहे गोरे हों अथवा काले, दुनिया की सब जातियों की अपेक्षा ये भारतीयों की जाति अधिक सुंदर और श्री संपन्न है। ये बात मैं अपनी जाति की बढ़ाई करने के लिए नहीं कर रहा हूं, ये जग प्रसिद्ध बात है। इस देश में प्रति सैकड़ा जितने स्त्री पुरुष सुंदर हैं, उतने और कहां हैं? इसके बाद विचार कर देखो, दूसरे देशों में सुंदर बनने में जो लगता है, उसकी अपेक्षा हमारे देश में कितना कम लगता है। कारण यह है कि हमारा शरीर अधिकांश खुला रहता है। दूसरे देशों में कपड़े लत्ते से ढककर कुरूपता को बदलकर सुंदरता बनाने की चेष्टा की जाती है।
1: परंतु स्वामी जी ने पश्चिमी देशों के लोगों के स्वास्थ्य की बहुत तारीफ की थी,
2: किंतु स्वास्थ्य के संबंध में पाश्चात्य देशवासी हमारी अपेक्षा अधिक सुखी हैं। उन देशों में 40 वर्ष के पुरुष को जवान कहते हैं, छोकरा कहते हैं, 50 वर्ष की स्त्री युवती कहलाती है। अवश्य ही ये लोग अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, एवं सबसे अच्छी बात तो ये है कि बाल विवाह नहीं करते। हमारे देश में जो दो एक बलवान जातियां हैं, उनसे पूछ कर देखिए कितनी उम्र में विवाह करते हैं। गोरखाली, पंजाबी, जाट, अफरीदी आदि पहाड़ी जातियों से पूछिए। इसके बाद शास्त्र को पढ़ देखिए, 30, 25 और 20 वर्ष में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को क्रमानुसार विवाह करने को लिखा है। आयु, बल, वीर आदि में इनमें और हम लोगों में बहुत भेद है। हमारी बल वृद्धि 30 वर्ष की उम्र पार करते ही शेष हो जाती है, और वे लोग उस समय बदन झाड़ कर उठ खड़े होते हैं।
0: स्वामी जी ने दोनों देशों में होने वाली बीमारियों की भी व्याख्या बड़े ही रोचक ढंग से की है।
2: हम लोग निरामिष भोजी हैं, हमें अधिकांश पेट के ही रोग होते हैं। हमारे अधिकतर बूढ़े इसी पेट की बीमारी से मरते हैं। वे मांस भोजी हैं, उन्हें अधिकतर हृदय की बीमारी होती है। पाश्चात्य देशों में अधिकतर बूढ़े बूढ़ी हृदय रोग और फेफड़े की बीमारी से मरते हैं। एक पाश्चात्य देशीय विद्वान डॉक्टर पूछते हैं कि क्या पेट की बीमारी से पीड़ित लोग प्रायः निरुत्साह और बैरागी होते हैं? हृदय आदि शरीर के ऊपरी भाग के रोगों में आशा और पूरा विश्वास रहता है। हैजे का रोगी आरंभ से ही मृत्यु के भय से अस्थिर हो जाता है। टीबी का रोगी मरने के समय तक भी विश्वास करता है कि उसे आराम हो जाएगा। अतएव क्या इसलिए भारतवासी सदा मृत्यु और वैराग्य की बातें कहा करते हैं? मैं तो अभी तक इस प्रश्न का कोई समुचित उत्तर ही नहीं सोच सका, किंतु बात विचारणीय है अवश्य।
1: उन्होंने आगे और भी कहा है कि
2: हमारे देश में दांत और केश के रोग बहुत कम होते हैं और उस देश में बहुत ही कम लोगों के स्वाभाविक दांत होते हैं। गंजे तो सभी जगह पाए जाते हैं। हमारी स्त्रियां नाक और कान गहना पहनने के लिए छिदवाती हैं। वहां की भले घर की स्त्रियां नाक कान नहीं छिदवाती, किंतु कमर को बांधकर रीढ़ की हड्डी को मरोड़कर प्लीहा और यकृत को अपनी जगह से हटाकर शरीर को ही कुरूप बना डालती हैं। अपने शरीर को सुंदर बनाने के कारण उन्हें मृत्यु का कष्ट झेलना पड़ता है।
0: स्वामी जी की पैनी नजर उनके पोशाक पर भी पड़ी थी। उसकी तुलना भी वे हमारी पोशाकों से करते हैं।
2: पाश्चात्य देशीय पोशाक कामकाज करने के लिए अधिक उपयुक्त होती है। धनी लोगों की स्त्रियों की सामाजिक पोशाक को छोड़कर अन्य स्त्रियों की पोशाक भद्दी होती है। हमारी स्त्रियों की साड़ी और हमारे पुरुषों का चोगा, चपकन और पगड़ी के सौंदर्य की तुलना इस पृथ्वी पर है ही नहीं। ढीले ढाले कपड़ों की सुंदरता को तंग कपड़े पा ही नहीं सकते। हमारे सभी कपड़े कलीदार और ढीले ढीले रहते हैं, इसलिए उन्हें पहनकर कामकाज नहीं किया जा सकता। काम करने में वे नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। इनका फैशन कपड़े में है और हमारा फैशन कहने में। अब थोड़ा थोड़ा हमारा ध्यान कपड़े की ओर भी गया है। स्त्रियों की पोशाक के पेरिस और पुरुषों के लिए लंदन केंद्र है। पेरिस की नर्तकियां नए नए फैशन निकालती हैं। किसी प्रसिद्ध नर्तकी ने जो पोशाक पहनी उसी का अनुकरण करने के लिए सब दौड़ पड़ती हैं। आजकल कपड़ा बेचने वाले बड़े बड़े दुकानदार नए फैशन का प्रचार करते हैं। कितने करोड़ रुपये प्रतिवर्ष इस पोशाक बनाने में लगते हैं, इसे हम समझ नहीं सकते।
1: उन्हें पश्चिमी फैशन का भी ज्ञान था। वे बड़े मजे लेकर वहाँ के फैशन की बात करते हैं।
2: इन नई पोशाकों की सृष्टि करना इस समय एक बड़ी कला हो गई है। किसी स्त्री के शरीर और केश के रंग के साथ किस रंग की पोशाक मेल खाएगी, उसके शरीर का कौन अंग ढकना होगा और कौन खुला रखना होगा, इत्यादि बातों पर खूब गंभीर विचार कर तब पोशाक तैयार करनी पड़ती है। इसके बाद दो चार बहुत ऊंची श्रेणी की महिलाएं जो पोशाक पहनती हैं, वही पोशाक अन्य स्त्रियों को भी पहननी पड़ेगी, नहीं तो उनकी जाति चली जाएगी। इसी का नाम फैशन है। फिर भी ये फैशन घड़ी घड़ी बदलता है। वर्ष के चार मौसमों में चार बार बदलना तो आवश्यक ही है। इसके अलावा और भी कितने समय आते हैं जब पोशाक बदली जाती है ना मजे की बात।
0: इन बातों को बताते हुए स्वामी जी खूब मजा लेते थे। फैशन के बारे में तो उनकी बहुत हंसी उड़ाते थे।
2: जो बहुत अमीर होते हैं उनके कपड़े पेरिस से बनकर आते हैं, बाकी लोग अपने देश में ही उनकी नकल कर कपड़े बनवाते हैं, किंतु स्त्रियों की टोपियां तो फ्रांस की ही बनी होनी चाहिए। जिसके पास फ्रांस की ही बनी टोपी नहीं है वो अच्छी स्त्री ही नहीं समझी जाती। अंग्रेज और जर्मन स्त्रियों की पोशाक अच्छी नहीं समझी जाती। 10-20 अमीर स्त्रियों को छोड़कर वे अच्छे कपड़े नहीं पहनती, इसलिए दूसरे देशों की स्त्रियां उन पर हंसती हैं। बहुत से अंग्रेज पुरुष बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं। बिना किसी भेद के अमेरिका के सभी स्त्री पुरुष बहुत सुंदर कपड़े पहनते हैं। यद्यपि विदेशी वस्त्रों का आना रोकने के लिए अमेरिका की सरकार पेरिस और लंदन के कपड़ों पर बहुत अधिक चुंगी लेती है, फिर भी सभी स्त्रियां अपने कपड़े पेरिस तथा सभी पुरुष अपने कपड़े लंदन से ही मंगवाते हैं। तरह तरह के रंग के पश्मीना और बनात तथा रेशमी कपड़े प्रतिदिन निकलते हैं। लाखों आदमी उसी को काट छांट कर पोशाक बनाते हैं। पोशाक यदि ठीक ढंग की न हुई तो सभ्य पुरुष या स्त्री का रास्ते में निकलना ही कठिन हो जाता है। हमारे देश में कपड़ों के फैशन का यह हंगामा नहीं है, पर गहनों में थोड़ा थोड़ा फैशन घुस रहा है। रेशमी और ऊनी कपड़े के व्यापारी उन देशों में दिन रात फैशन के परिवर्तनों पर और लोगों को कौन फैशन अधिक पसंद हुआ इस सब पर खूब तीखी नजर रखते हैं, अथवा कोई नया फैशन तैयार कर उस ओर लोगों के मन को आकृष्ट करने की चेष्टा करते हैं। जहां एक बार भी अंदाजा पक्का बैठ गया कि वो व्यवसायी मालामाल हो गया। जब तृतीय नेपोलियन फ्रांस देश के बादशाह थे, उस समय साम्राज्ञी येजुनी पाश्चात्य देश की वेशभूषा की अधिष्ठात्री देवी समझी जाती थी। उन्हें कश्मीरी शाल बहुत पसंद था, इसलिए यूरोपीय लाखों रुपए का शॉल खरीदते थे। नेपोलियन के पतन के पश्चात फैशन बदल गया और कश्मीरी शॉलों की खपत यूरोप में रुक गई।
0: स्वामी जी जब ये बातें सुनाते तो लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाते थे, क्योंकि उनका सुनाने का ढंग ही इतना मजेदार होता था कि लोग सुनते ही चमत्कृत हो जाते थे। अब स्नान करने की प्रथा पर वे क्या कहते थे, सुनिए।
2: पहले शरीर को ही लेकर देखिए, बाह्य और आभ्यंतरिक शुद्धि का नाम ही पवित्रता है। मिट्टी जल आदि के द्वारा शरीर शुद्ध होता है। दुनिया की ऐसी कोई जाति नहीं है जिसका शरीर भारतीयों के सदृश साफ हो। भारतीयों के अतिरिक्त और किसी भी जाति के लोग शौचादि में जल का इतना अधिक व्यवहार नहीं करते। यदि ये कहें कि पाश्चात्य देश वाले नहाते ही नहीं तो भी कोई हर्ज नहीं। भारत में आने के कारण अंग्रेजों ने अपने देश में स्नान करने की प्रथा चलाई है। जो विद्यार्थी विलायत से पढ़कर लौटे हैं उनसे पूछिए कि वहां स्नान करने का कितना कष्ट है। जो लोग स्नान करते हैं अर्थात सप्ताह में एक दिन, उसी दिन वे भीतर पहनने का कपड़ा गंजी अधभैया आदि बदलते हैं। अवश्य ही कुछ अमीर लोग प्रतिदिन स्नान करते हैं। अमेरिका वालों में प्रतिदिन स्नान करने वालों की संख्या अधिक है। जर्मनी वाले सप्ताह में एक दिन और फ्रांस तथा दूसरे देश वाले तो बहुत ही कम स्नान करते हैं। स्पेन इटली आदि गर्म देश हैं, फिर भी वहां लोग बहुत कम स्नान करते हैं। लहसुन बहुत खाते हैं, पसीना बहुत होता है, पर सात जन्म में भी जल का स्पर्श नहीं होता। उनके शरीर की दुर्गंध से भूतों के 14 पुरखे भी भाग जाएंगे। भूत तो लड़के बच्चे हैं।
1: इसी संदर्भ में स्वामी जी ने एक आप बीती कही थी।
2: सभ्यता की राजधानी, रंग ढंग भोग विलास का स्वर्ग, विद्या शिल्प के केंद्र पेरिस में एक बार मेरे एक धनी मित्र बुलाकर ले गए। एक किले के समान होटल में उन्होंने मुझे ठहराया। राजाओं जैसा खाना मिलता था, किंतु स्नान घर का नाम भी नहीं था। 2 दिन किसी प्रकार मैंने सहा, फिर मुझसे नहीं सहा गया था। तब मैंने अपने मित्र से कहा, भाई ये राजभोग तुम्हें ही मुबारक हो, मैं यहाँ से बाहर जाने के लिए व्याकुल हो रहा हूँ। ये भीषण गर्मी और स्नान करने का कोई ठिकाना ही नहीं, पागल कुत्ते के जैसे मेरी दशा हो रही है। ये बात सुनकर मेरे मित्र बहुत दुखी हुए और होटल के कर्मचारियों पर बड़े कुपित हुए। उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हें यहां नहीं ठहरने दूंगा, चलो चलो कोई दूसरी अच्छी जगह ढूंढी जाए। 12 बड़े होटल देखे गए, पर स्नान करने का प्रबंध कहीं नहीं था। अलग स्नान करने के स्थान थे जहां एक बार 4-5 रुपया देकर स्नान किया जा सकता था। उसी दिन शाम को मैंने एक अखबार में पढ़ा कि एक बुढ़िया स्नान करने के लिए हौज में बैठी और वहीं मर गई। डॉक्टर चाहे जो कहें, पर मैं तो यही कहूंगा कि जीवन में प्रथम बार ही बुढ़िया के अंग को उतने जल का स्पर्श हुआ होगा, इसलिए उसकी अचानक मृत्यु हो गई। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। रूस वाले तो सर्वथा मलेच्छ हैं, तिब्बत से ही मलेच्छता आरंभ हो जाती है, पर अमेरिका के प्रत्येक निवास गृह में अवश्य ही स्नानागार और नल रहता है।
0: सुनाते सुनाते उन्होंने भारतीयों को भी आड़े हाथों लिया।
2: किंतु देखिए हम में और इनमें कितना अंतर है। हम हिंदू किस लिए स्नान करते हैं? हमें अधर्म का डर है, और पाश्चात्य लोग शरीर साफ करने के लिए हाथ मुंह धोते हैं। हमारे शरीर में चाहे मैल और तेल लगा ही क्यों ना रहे, सिर्फ ऊपर पानी उड़ेल लेने से हमारा काम चल जाता है। हमारे दक्षिणात्य भाई लोग इतना लंबा चौड़ा तिलक लगाते हैं, उसे झावे से भी धोकर साफ करना जरा टेढ़ी खीर है। हमारे स्नान करने की प्रथा बड़ी सरल है, कहीं भी डुबकी मार लेने से काम चल जाता है, किंतु पाश्चात्य देशों में ऐसा नहीं है। उन्हें एक टोकरी कपड़ा ही खोलना पड़ता है, बटन हुक और काज का तो कहना ही क्या। हमें शरीर दिखलाने में कोई लज्जा नहीं है, उनके लिए अच्छा नहीं है। बाप बेटे के सामने विवस्त्र हो सकता है, पर स्त्रियों के सामने सिर से पैर तक कपड़ा पहनना ही होगा।
1: कहते कहते स्वामी जी भी हंस पड़े और बोले,
2: और फिर देश भेद के कारण जो कार्य अनिवार्य हैं, उन्हें समाज शांत रूप से अपना लेता है। हमारे जैसे गर्म देश में भोजन करने के समय हम आधा घड़ा पानी पी डालते हैं, फिर हम ना डकारें तो क्या करें? किंतु पाश्चात्य देशों में डकारना बहुत असभ्य काम है। पर खाते खाते जेब से रुमाल निकालकर यदि नाक झाड़कर साफ की जाए तो कोई हर्ज नहीं, किंतु हमारे देश में ये बड़ी घृणित बात है। ठंडे देशों में बीच बीच में नाक साफ किए बिना बैठा ही नहीं जा सकता। हम लोग मैले से अत्यंत घृणा करते हैं, फिर भी हम बहुत मैले रहते हैं। हमको मैले से इतनी घृणा है कि जिसने मैला छुआ उसे स्नान करना पड़ेगा, इसलिए दरवाजे पर मैले के ढेर को हम सड़ने देते हैं। सिर्फ ध्यान इसी बात का रहता है कि हम उसे छूते तो नहीं। पर इधर जो नरक कुंड का वास होता है उसका क्या? एक अनाचार के भय से दूसरा महाघोर अनाचार। एक पाप से बचने के लिए हम दूसरा गुरुतर पाप करती हैं। जो अपने घर में कूड़े का ढेर रखता है वो अवश्य ही पापी है, इसमें संदेह ही क्या है? उसका दंड भोगने के लिए उसे ना तो दूसरा जन्म ही लेने की आवश्यकता होगी और ना बहुत देर तक संसार में ठहरना ही पड़ेगा।
0: आपने स्वामी जी के बताए किस्से सुने। प्राच्य और पाश्चात्य में प्रचलित आचार व्यवहारों की विषमता को जाना। आगे की कड़ियों में हम आपको ऐसी ही कुछ और रोचक बातें सुनाएंगे।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

नमस्कार, मैं हूं मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

और आइए श्रोताओ, देशभक्ति गीतों के इस कार्यक्रम में अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसके बोल हैं, क्या समझते हो कि हम खेल का डर करते हैं, हम जो करते हैं उसे होके निडर करते हैं।

और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ये देशभक्ति कव्वाली। ना सुना जाएगा हमसे ये फसाना हरगिज, हंसते हंसते हमें जालिम ना रुलाना हरगिज।

और लीजिए अब सुनिए ये देशभक्ति रचना, आओ वीरो समर क्षेत्र में नवजीवन सरसाएगा, शीघ्र भारतीय हुंकारों से लंदन भी थर्राएगा।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। लीजिए सुनिए तेरी अमृत आराधना, भारत न खो जाए कहीं। सौ सौ युगों की साधना, भारत न खो जाए कहीं।

हम अहिंसा के पुजारी हैं मगर बुजदिल नहीं, कायरों से आज तक ये काम है शामिल नहीं, आज मिटने को न हो जो वो दिल नहीं। हम अहिंसा के पुजारी हैं मगर बुजदिल नहीं। आइए सुनते हैं इसी गीत को।

देश की माटी देश का जल, हवा देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने। आइए सुनते हैं गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर की इस रचना को।

कहते हैं अलविदा इस जहान को, जाकर खुदा के घर फिर आया ना जाएगा। कहते हैं अलविदा इस जहान को।

आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत प्रमिला के साथ। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आज़ाद हिंद को, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र प्रमिला, लेकर आई हूं आज का भारत भारती कार्यक्रम। श्रोताओ, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अक्षय द्विवेदी का गायन।

आज के भारत भारती कार्यक्रम में आपने अक्षय द्विवेदी का गायन सुना। अब ये कार्यक्रम खत्म करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद को। देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थीं, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञानवर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

महाशय गुरु प्रसाद जी रसिक जीव हैं, गाने बजाने का शौक है, खाने खिलाने का शौक है और सैर तमाशे का शौक है, पर उसी मात्रा में द्रव्योपार्जन का शौक नहीं है। यूं वो किसी के मोहताज नहीं है, भले आदमी की तरह है और हैं भी भले आदमी, मगर किसी काम में चिमट नहीं सकते, गुड़ होकर भी उनमें लस नहीं है। वो कोई ऐसा काम उठाना चाहते हैं जिसमें चटपट कारों का खजाना मिल जाए और हमेशा के लिए बेफिक्र हो जाएं, बैंक से छमाई सूट चला आए, खाएं और मजे से पड़े रहें। किसी ने सलाह दी नाटक कंपनी खोल लो, उनके दिल में भी बात जम सी गई। मित्रों को लिखा कि मैं ड्रामेटिक कंपनी खोलने जा रहा हूँ, आप लोग ड्रामे लिखना शुरू कर दीजिए। कंपनी का प्रोस्पेक्टस बना, कई महीने उनकी खूब चर्चा रही, कई बड़े बड़े आदमियों ने हिस्से खरीदने के वादे भी कर लिए, लेकिन ना हिस्से बिके ना कंपनी खड़ी हुई। हाँ, इसी धुन में गुरु प्रसाद ने एक नाटक की रचना कर डाली और ये फिक्र हुई कि इसे किस कंपनी को दिया जाए। लेकिन ये तो मालूम ही था कि कंपनी वाले एक ही घाघ होते हैं, फिर हर एक कंपनी में उसका एक नाटककार भी होता है, वो क्यों चाहेगा कि उसकी कंपनी में किसी बाहरी आदमी का प्रवेश हो। वो इस रचना में तरह तरह के ऐब निकालेगा और कंपनी के मालिक को भड़का भी देगा। इसीलिए प्रबंध किया गया कि मालिकों पर नाटक का कुछ ऐसा प्रभाव जमा दिया जाए कि नाटककार महोदय की कुछ दाल न गल सके। 5 सज्जनों की एक कमेटी बनाई गई, उसमें सारा प्रोग्राम विस्तार के साथ तय कर दिया गया और दूसरे दिन 5 सज्जन गुरु प्रसाद जी के साथ नाटक दिखाने चले। टांगे आ गए, हारमोनियम, तबला, ये सभी आ गए, सब उस पर रख दिया गया क्योंकि

कि मोटरों से वो बात पैदा नहीं होगी जो आप चाहते हैं। किसी रईस से दो मोटरें मांगनी चाहिए आपको, मॉरिस हो या नए चाल की ऑस्टिन। बात सच्ची थी, भेष से भीख मिलती है। विचार होने लगा कि किस रईस से याचना की जाए। अजी वो महाखूसट है, सवेरे उसका नाम ले लो तो दिन भर पानी ना मिले। अच्छा सेठ जी के पास चले तो कैसा रहेगा? मुंह धोए रखिए, उसकी मोटरें अफसरों के लिए रिजर्व हैं। अजी अपने लड़के तक को भी बैठने नहीं देता, आपको दिए देता है। एक काम करते हैं कि कपूर साहब के पास चलते हैं, अभी उन्होंने नई मोटर खरीदी है। अजी उसका नाम न लो, कोई ना कोई बहाना करेगा, ड्राइवर नहीं है, मरम्मत में है, या फिर जाने क्या क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। गुरु प्रसाद ने अधीर होकर कहा, तुम लोगों ने तो व्यर्थ का बखेड़ा कर दिया भाई, तांगे में चलने में क्या हर्ज था। विनोद बिहारी ने कहा, आप तो घास खा गए हैं, नाटक लिख लेना दूसरी बात है और मामले को पटाना दूसरी बात है। रुपए प्रश्न सुना देगा, अपना सा मुंह लेकर रह जाओगे फिर आप, देख लेना। अमरनाथ ने कहा, मैं तो समझता हूँ मोटर के लिए किसी राजा रईस की खुशामद करना बेकार है। तारीफ तो जब है कि पांव पांव चले और वहां ऐसा ऐसा रंग जमाए कि मोटर से भी ज्यादा शान रहे। विनोद बिहारी उछल पड़े, सब लोग पांव पांव चले। वहां पहुंचकर किसी तरह बातें शुरू होंगी, किस तरह तारीफों के पुल बांधे जाएंगे, किस तरह ड्रामेटिस्ट साहब को खुश किया जाएगा, इस पर बहस होती जाती थी। हम लोग कंपनी के कैंप में कुछ 2 बजे पहुंचे। वहां मालिक साहब, उनकी एक्टर, नाटककार सब पहले से ही हमारा इंतजार कर रहे थे। पान, इलायची वगैरह वगैरह मंगवा ली थी। ऊपर जाते ही रसिक लाल ने मालिक से कहा, क्षमा कीजिएगा, हमें आने में जरा देर हो गई, हम मोटर से नहीं पांव पांव आए हैं। आज यही सलाह हुई कि प्रकृति की छटा का आनंद उठाते हुए चले। गुरु प्रसाद जी प्रकृति के उपासक हैं, इनका बस होता तो आज चिमटा लिए या तो कहीं भीख मांगते होते या किसी पहाड़ी गांव में वट वृक्ष के नीचे बैठे पक्षियों का चहकाना सुन रहे होते। विनोद ने रद्दा जमाया, और आए भी तो सीधे रास्ते नहीं, जाने कहां कहां चक्कर लगाते, खाक छानते पैरों में जैसे सनीचर है। अमर ने और रंग जमा दिया और कहा, पूरे सतजुगी आदमी है वो, नौकर चाकर तो मोटरों पर सवार होते हैं और आप गली गली मारे मारे फिरते हैं। जब और रईस मीठी नींद के मजे लेते होते हैं तो आप नदी के किनारे उषा का श्रृंगार देखते हैं। मस्तराम ने फरमाया, कवि होना मानो दीन दुनिया से मुक्त हो जाना। गुलाब की एक पंखड़ी लेकर उसमें न जाने क्यों घंटों देखते रहना, प्रकृति की उपासना नहीं, यूरोप के बड़े बड़े कवियों को आसमान पर पहुंचा दिया। यूरोप में होते तो आज इनके द्वार पर हाथी झूमते होते। एक दिन एक बालक को रोता देखकर वो खुद ही रोने लगे। पूछता हूँ, भाई क्यों रोते हो? तो और रोते हुए बड़ी मुश्किल से आवाज निकली। विनोद ने कहा, जनाब कवि का हृदय कोमल भावों का स्रोत है, मधुर संगीत का भंडार है, अनंत का आईना है। रसिक ने कहा, क्या बात कही है आपने, अनंत का आईना, वाह वाह, कवि की सोहबत में आप भी कुछ कवि हुए जा रहे हैं। तब गुरु प्रसाद ने नम्रता से कहा, मैं कवि नहीं हूँ और न मुझे कवि होने का दावा है, आप लोग मुझे जबरदस्ती कवि बनाए देते हैं। कवि सृष्टि की वो अद्भुत रचना है जो पंचभूतों की जगह 9 रसों से बनती है। तभी मस्तराम ने कहा, आपका यही एक वाक्य है जिस पर सैकड़ों कविताएं न्योछावर हैं। सुनी आपने रसिकलाल जी की कवि की महिमा, याद कर लीजिए।
अरे हम तो कहते हैं कि रट डालिए। तभी रसिकलाल ने कहा, कहाँ तक याद करें भैया, या तो सूक्तियों में बात करते हैं और नम्रता का ये हाल है कि अपने को कुछ समझते ही नहीं। महानता का यही लक्षण है, जिसने अपने को कुछ समझा वो गया। आप तो अब खुद ही सुनेंगे, इस ड्रामे में अपना हृदय निकाल कर रख दिया है। कवियों में जो एक प्रकार का अलहड़पन होता है, उसकी आप में कहीं गंध भी नहीं। इस ड्रामे की सामग्री जमा करने के लिए आपने कुछ नहीं तो 1000 बड़े बड़े पोथों का अध्ययन किया होगा। वाजिद अली शाह को स्वार्थी इतिहास लेखकों ने कितना कलंकित किया है आप लोग जानते ही हैं। उस लेख राशि को छांट कर उसमें से सत्य के तत्व खोज निकालना आप ही का काम था। उस वक्त विनोद ने कहा, इसलिए हम और आप दोनों कलकत्ता गए और वहां 6 महीने मटिया बुर्ज की खाक छानते रहे। वाजिद अली शाह की हस्तलिखित एक पुस्तक की तलाश की, उसमें उन्होंने खुद अपनी जीवन चर्चा लिखी है। एक बुढ़िया की पूजा की गई, तब कहीं जाके 6 महीने में किताब मिली हमें। अमरनाथ जी कहते हैं कि पुस्तक नहीं रत्न है वो। उस पे मस्तराम ने कहा, उस वक्त तो उसकी दशा कोयले की थी, गुरु प्रसाद जी ने उस पर मोहर लगाकर अशर्फी बना दी। ड्रामा ऐसा चाहिए कि जो सुने दिल हाथों से थाम ले, एक एक वाक्य दिल में चुभ जाए, तब तो कहीं बात है। उस पे अमरनाथ जी कहते हैं कि संसार साहित्य के सभी नाटकों को आपने चाट डाला और नाट्य रचना पर सैकड़ों किताबें पढ़ डाली आपने। तभी विनोद ने कहा, जब ही तो चीज भी लासानी हुई है। अमरनाथ जी कहते हैं कि लाहौर ड्रामेटिक क्लब का मालिक हफ्ते भर यहाँ पड़ा रहा, पैर पड़े कि मुझे नाटक दे दीजिए, लेकिन आपने दिया नहीं। जब एक्टर ही अच्छे नहीं तो उनसे अपना ड्रामा खिलवाना उसकी मिट्टी खराब करना था। इस कंपनी के एक्टर माशाल्लाह अपना जवाब नहीं रखते और इस नाटककार की सारे जमाने में धूम है। आप लोगों के हाथों में पढ़कर ये ड्रामा धूम मचा देगा। विनोद ने कहा कि एक तो लेखक साहब खुद शैतान से ज्यादा मशहूर है, उस पर यहाँ के एक्टरों का नाट्य कौशल, शहर लूट जाएगा साहब, सच कहता हूँ। मस्तराम ने कहा कि रोज ही तो किसी न किसी कंपनी का आदमी सिर पर सवार रहता है, मगर बाबू साहब किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते। विनोद ने कहा, बस एक कंपनी है जिसके तमाशे के लिए दिल बेकरार रहता है, नहीं तो और जितने ड्रामे खेले जाते हैं ना, 2 कौड़ी के हैं, मैंने तमाशा देखना ही छोड़ दिया था। इस पर गुरु प्रसाद जी कहते हैं कि नाटक लिखना बच्चों का खेल नहीं, खूने जिगर पीना पड़ता है। मेरे ख्याल में एक नाटक लिखने के लिए 5 साल का समय भी काफी नहीं, बल्कि अच्छा ड्रामा जिंदगी में एक ही लिखा जा सकता है। यूं कलम घिसना दूसरी बात है। बड़े बड़े धुरंधर आलोचकों का यही निर्णय है कि आदमी जिंदगी में एक ही नाटक लिख सकता है। रूस, फ्रांस, जर्मनी सभी देशों के ड्रामे पढ़े, पर कोई ना कोई दोष सभी में मौजूद। किसी में भाव है तो भाषा नहीं, भाषा है तो भाव नहीं, हास्य है तो गाना नहीं, गाना है तो हास्य नहीं। जब तक भाव, भाषा, हास्य और गाना ये चारों अंग पूरे ना हो, उसे ड्रामा कहना ही नहीं चाहिए। मैं तो बहुत ही तुच्छ आदमी हूँ। कुछ आप लोगों की सोहबत से शुद्ध बुद्ध आई है, मेरी रचना की हस्ती ही क्या, लेकिन ईश्वर ने चाहा तो ऐसे दोष आपको नहीं मिलेंगे। इस पे विनोद ने कहा, जब आप उस विषय के मर्मज्ञ हैं तो दोष रह ही कैसे सकता है। इस पर रसिकलाल ने कहा, 10 साल तक तो आपने केवल संगीत कला का अभ्यास किया है, घर के 1000 रुपए उस्तादों को भेंट कर दिए, अब भाई फिर भी दोष रह जाए तो फिर तो दुर्भाग्य है। इतनी वार्तालाप के बाद रिहर्सल शुरू होती है। वाह वाह वाह वाह, हाय हाय हाय हाय का तारा बंद गया। कोरस सुनते ही एक्टर और प्रोपराइटर और नाटककार सभी मानो
जाग पड़े। भूमिका ने उन्हें विशेष प्रभावित किया, पर असली चीज सामने आते ही आंखें खुली, समा बंद गया। पहला सीन आया, आंखों के सामने वाजिद अली शाह के दरबार की तस्वीर खिंच गई। दरबारियों की हाजिर जवाबी और फड़कते हुए लतीफे, वाह वाह, क्या कहना, क्या वाक्य रचना थी, क्या शब्द योजना थी। रसों का कितना सुरुचि से भरा हुआ समावेश था। तीसरा दृश्य हास्यमय था। हंसते हंसते लोगों की असलियां दुखने लगी थी। सच में सुकूल का स्वामी की संयंत अविचलता भी आसानी से दिख गई। अब आया चौथा दृश्य। ये दृश्य करुणा जमक था। हास्य के बाद करुणा, आंधी के बाद आने वाली शांति। विनोद आंखों पर हाथ रखे, सिर झुकाए, जैसे रो रहे थे। इसी तरह सीन पर सीन और अंक पर अंक समाप्त होते गए। यहां तक कि जब रिहर्सल समाप्त हुई तो दीपक जल चुके थे। सेठ जी अब तक सॉट बनाए हुए बैठे थे। ड्रामा समाप्त हो गया, पर उनके मनोविचार का लेश मात्र भी आभास नहीं था। जड़ बैठे हुए थे, न मुस्कुराहट थी, न कौतूहल, न हर्ष, न और कुछ। विनोद बिहारी ने मामले की बात पूछी, तो इस ड्रामा के बारे में श्रीमान की क्या राय है? सेठ जी ने उसी विरक्त भाव से उत्तर दिया, मैं इसके विषय में कल निवेदन करूंगा। कल यही भोजन भी कीजिएगा। आप लोगों के लायक भोजन क्या होगा, उसे केवल विदुर का साग समझकर स्वीकार कीजिएगा। पंच पांडव बिहार निकले तो मारे खुशी के सबकी बांछे खिली खिली जाती थी। विनोद ने कहा, 5,000 की थैली है, नाक नाक बच सकता हूं। अमरनाथ ने कहा, 5,000 की है कि 10, ये तो नहीं कहा जा सकता, पर रंग खूब जम गया। रसिक ने कहा, मेरा अनुमान तो 4,000 करीब का है। मस्तराम ने कहा, और मेरा विश्वास है कि 10,000 से कम वो कहेगा ही नहीं। मैं तो सेठ के चेहरे की तरफ ध्यान से देख रहा था, आज ही कह देता, पर डरता था कहीं ये लोग अस्वीकार न कर दे। उसके होंठों पर तो हंसी न थी, पर मग्न हो रहा था। गुरुप्रसाद ने कहा, अरे भाई, मैंने पढ़ा भी तो जी तोड़ कर था। विनोद ने कहा, ऐसा जान पड़ता था कि तुम्हारी वाणी पर सरस्वती बैठ गई हो, सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। रसिक ने कहा, मुझे उसकी चुप्पी से जरा संदेह होता है। अमर ने कहा, आपकी संदेह का क्या कहना, आपको तो ईश्वर पर भी संदेह होता है। मस्तराम ने कहा, ड्रामेटिस्ट भी बहुत खुश हो रहे थे, 10-12 हजार का वारा न्यारा है भाई, आज इस खुशी में एक दावत तो होनी ही चाहिए। गुरुप्रसाद ने कहा, अरे तो कुछ बोहनी बट्टा हो जाए। मस्तराम ने कहा, जी नहीं, तब तो जलसा होगा, आज दावत होगी दावत। विनोद ने कहा, भाग्य के बली हो तुम गुरुप्रसाद। रसिकलाल ने कहा, मेरी राय है जरा उस ड्रामेटिस्ट को गांठ लिया जाए, उसका मौन मुझे भयभीत कर रहा है। मस्तराम ने कहा, आप तो वाही हुए हैं, वो नाक रगड़ कर रह जाए तब भी यह सौदा होकर रहेगा, सेठ जी आप बचकर निकल नहीं सकते हैं। विनोद ने कहा, हम लोगों की भूमिका भी तो जोरदार रही थी, क्या कहते हैं आप? अब बारी आई अभिनय की। रात को गुरुप्रसाद के घर मित्रों की दावत हुई। दूसरे दिन कोई 6 बजे पांचों आदमी सेठ जी के पास जा पहुंचे। संध्या का समय हवाखोरी का है, आज मोटर पर ना आने के लिए बना बनाया बहाना था।
सेठ जी आज बेहद खुश नजर आते थे। कल की वो मोहरमी सूरत अंतर्धान हो गई। बात बात पर चहकते थे, हंसते थे जैसे लखनऊ का कोई रईस हो। दावत का सामान तैयार था, मेजों पर भोजन चुना जा रहा था। अंगूर, संतरे, केला, सूखे मेवे, कई किस्म की मिठाइयाँ, कई तरह के मुरब्बे, शराब, ये सब कुछ सजा दिए गए और यारों ने खूब मजे से दावत खाई। सेठ जी मेहमान नवाजी के पुतले बने हुए थे। हर एक मेहमान के पास जा जाकर पूछते, कुछ लेंगे, कुछ मंगवाऊं? अरे लीजिए ना। नहीं नहीं नहीं, आपको कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। अरे लीजिए ना, अब ले भी लीजिए, मत शर्माइए। आप लोगों के लायक भोजन यहाँ कहाँ बन सकता है। भोजन के उपरांत लोग बैठे तो मामले की बातचीत होने लगी। गुरु प्रसाद का हृदय आशा और भय से कांपने लगा। सेठ जी ने कहा, हुजूर ने बहुत से सुंदर नाटक लिखे हैं, क्या बात है। ड्रामेटिस्ट ने कहा, ये जनता अच्छे ड्रामों की कद्र नहीं करती, नहीं तो ये ड्रामा लाजवाब होता। सेठ जी ने कहा, जनता कद्र नहीं करती तो ना करे, हमें जनता की बिल्कुल परवाह नहीं, रत्ती बराबर परवाह नहीं है हमें। मैं इसकी तैयारी में 40,000 केवल बाबू साहब की खातिर खर्च कर दूंगा। आपने इतनी मेहनत से एक चीज लिखी है तो मैं उसका प्रचार भी उतने ही हौसले से करूंगा। हमारे साहित्य के लिए क्या ये कुछ कम सौभाग्य की बात है कि आप जैसे महान पुरुष इस क्षेत्र में आ गए? ये कीर्ति हुजूर को अमर बना देगी। ड्रामेटिस्ट ने कहा, मैंने ऐसा ड्रामा आज तक नहीं देखा। लिखता मैं भी हूँ और लोग भी लिखते हैं, लेकिन आपकी उड़ान को कोई क्या पहुँचेगा? कहीं कहीं तो आपने शेक्सपियर को भी मात दे दी है। सेठ जी ने कहा, तो जनाब, जो चीज दिल की उमंग से लिखी जाती है वो ऐसी ही अद्वितीय होती है। शेक्सपियर ने जो कुछ लिखा रुपए के लोभ से लिखा। हमारे दूसरे नाटककार भी धन ही के लिए लिखते हैं, उनमें वो बात कहाँ पैदा हो सकती है। गोसाई जी की रामायण क्यों अमर है? इसीलिए कि वो भक्ति और प्रेम से प्रेरित होकर लिखी गई है। सादी की गुलिस्ता और बोस्ता, होमर की रचनाएं इसलिए स्थाई हैं कि उन कवियों ने दिल की उमंग से लिखा। जो उमंग से लिखता है वही आगे बढ़ता है। वो एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक उक्ति पर महीनों खर्च कर देता है। धनेच्छु को तो एक काम जल्दी से समाप्त करके दूसरा काम शुरू करने की फिक्र होती है। ड्रामेटिस्ट ने कहा, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। हमारे साहित्य की अवनति केवल इसलिए हो रही है कि हम सब धन के लिए या नाम के लिए लिखते हैं। सेठ जी ने कहा, सोचिए, आपने 10 साल केवल संगीत कला में खर्च कर दिए, लाखों रुपए कलावंतों और गायकों को दे डाले। कहां कहां से और कितने परिश्रम और खोज से इस नाटक की सामग्री एकत्रित की, ना जाने कितने राजव महाराजों को सुनाया होगा। इस परिश्रम और लगन का पुरस्कार कौन दे सकता है? ड्रामेटिस्ट ने कहा, मुमकिन ही नहीं। ऐसी रचनाओं के पुरस्कार की कल्पना करना ही उनका अनादर करना है। इनका पुरस्कार यदि कुछ है तो वो अपनी आत्मा का संतोष है। वो संतोष आपके एक एक शब्द से प्रकट होता है। सेठ जी ने कहा, आपने बिल्कुल सत्य कहा कि ऐसी रचनाओं का पुरस्कार अपनी आत्मा का संतोष है। यश तो बहुधा ऐसी रचनाओं को मिल जाता है जो साहित्य के कलंक है। आप ड्रामा ले लीजिए और आज से ही पाठ भी तकसीम कर दीजिए। 3 महीने के अंदर इसे खेल डालना होगा। मेज पर ड्रामे की हस्तलिपि पड़ी हुई थी। ड्रामेटिस्ट ने उसे उठा लिया। गुरु प्रसाद ने दीन नेत्रों से विनोद की ओर देखा, विनोद ने अमर की ओर, अमर ने सरिख की ओर, पर शब्द किसी के मुंह से न निकला। सेठ जी ने मानो सभी के मुंह सिह दिए हों। ड्रामेटिस्ट साहब किताब लेकर चल दिए। सेठ जी ने मुस्कुराकर कहा,
हुजूर को थोड़ी सी तकलीफ और करनी होगी। ड्रामे का रिहर्सल शुरू हो जाए तो आपको थोड़े दिनों तक कंपनी के साथ रहने का कष्ट उठाना पड़ेगा। हमारे एक्टर अधिकांश गुजराती हैं, वो हिंदी भाषा के शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते। कहीं कहीं शब्दों पर अनावश्यक जोर देते हैं। आपकी निगरानी से ये सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी। एक्टरों ने यदि पाठ अच्छा नहीं किया तो आपके सारे परिश्रम पर पानी पड़ जाएगा। ये कहते हुए उन्होंने लड़के को आवाज दी, बॉय बॉय, इन लोगों के लिए सिगार लाओ। सिगार आ गया। सेठ जी उठ खड़े हुए। वो मित्र मंडली के लिए विदाई की सूचना थी। पांचों सज्जन भी उठे। सेठ जी आगे आगे द्वार तक आए, फिर सबसे हाथ मिलाते हुए कहा, आज इस गरीब का तमाशा देख लीजिए, फिर ये सहयोग ना जाने कब प्राप्त हो। गुरु प्रसाद ने मानो किसी कब्र के नीचे से कहा हो सका तो आ जाऊंगा। सड़क पर आकर पांचों मित्र खड़े होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तब पांचों ही जोर से ठहाकर मारकर हंस पड़े। विनोद ने कहा, अरे भाई, हम सबका गुरु घंटाल निकल गया। अमर ने कहा, साफ आंखों में धूल झोंक दी इन्होंने तो। रसिक ने कहा, मैं उसकी चुप्पी देखकर पहले ही डरा हुआ था कि ये कोई पल्ले सिरे का घाघ है। मस्तराम ने कहा, मान गया इसकी खोपड़ी को, ये चपत हम लोग उम्र भर नहीं भूलेंगे। खैर कोई बात नहीं। अरे ये गुरु प्रसाद कहाँ जा रहा है? गुरु प्रसाद इस आलोचना में शरीक ना हुए। वो इस तरह सिर झुकाकर चले जा रहे थे मानो अभी तक वो स्थिति को समझ नहीं पाए हों।

तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम संस्कृति संवाद के अंतर्गत भारत के दर्शनीय स्थल। श्रोताओं, इस बार भारत के दर्शनीय स्थलों की यात्रा पर हम आपको उस शहर में ले चलते हैं जो 1912 तक भारत की राजधानी हुआ करता था।
1: हाँ श्रोता, जरा कल्पना कीजिए कौन सा होगा वो शहर।
0: चलिए एक और क्लू आपको देते हैं। इस शहर में विवेकानंद जी के गुरु रहा करते थे। अब तो आप समझ ही गए होंगे।
1: अरे क्यों नहीं समझेंगे भाई, इतना आसान क्लू जो आपने दे दिया है।
0: जी हाँ, अंग्रेजों का कलकत्ता और आज का कोलकाता है ये शहर।
1: हाँ श्रोताओं, एक कहावत कलकत्ता के नाम से मैं आपको सुनाता हूँ। किसी ने पूछा कि अगर किसी कलकत्तियन के पास ढेर सारा फालतू वक्त हो तो वो क्या करता है, तो उसे जवाब मिला, भाई कहीं उसे आने जाने के लिए बस या ट्राम पकड़ लेना चाहिए। अब सवाल करने वाले को ये बात कुछ हजम नहीं हुई। उसने फिर पूछा, चलो अगर मान लो उसके पास वक्त बहुत कम है, उसे बहुत जल्दी पहुंचना है, तो फिर उसे क्या करना चाहिए, तो फिर उसे जवाब मिला, फिर तो उसे पैदल ही निकल जाना चाहिए।
0: श्रोताओं, कलकत्ता वालों ने अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर ये जोक खुद ही गढ़ा है।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि उनके पब्लिक ट्रांसपोर्ट की रफ्तार इतनी धीमी है कि अगर किसी को कहीं जल्दी पहुंचना हो तो वे पैदल ही जाना पसंद करते हैं।
1: हाँ, कोलकाता की बात चली है तो सबसे पहला सवाल जहन में यह उठता है कि आखिर यह नाम पड़ा तो पड़ा कैसे। श्रोताओं, इतना तो आप जानते हैं कि यह शहर अंग्रेजों का बसाया हुआ था और इसे कलकत्ता कहा करते थे वे लोग। वजह यह थी कि उन्होंने जिन तीन गांवों को मिलाकर के यह शहर बनाया था उनमें से एक नाम था कालीकता, बाकी के दो गांव थे सुतानाटी और गोविंदपुर।
0: लेकिन ये कालीकता नाम भी असली नहीं है। असली नाम है काली क्षेत्र, जिसका मतलब है देवी काली का क्षेत्र। साल 1698 की बात है। उस समय ये तीनों गांव मुगल साम्राज्य में हुआ करते थे और इनकी जागीरदारी एक चौधरी परिवार के पास हुआ करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय भारत में अपना व्यापार बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई थी और उसे बंगाल में किसी स्थायी ठिकाने की तलाश थी। तो किसी तरह हाथ पांव मारकर उसने इन गांवों की जागीरदारी अपने नाम ट्रांसफर करवा ली।
1: बिल्कुल ठीक, और कंपनी को यह जगह बहुत पसंद आई। उन्होंने भी सोच समझ करके इसको बसाया और यह काम किया था एक समझदार अफसर जॉब चारनाक ने। उसने देखा कि इन तीनों गांवों के पश्चिम में हुगली नदी है, उत्तर में एक सकरी खाड़ी है और पूर्व में नमकीन झीलें हैं। हुगली नदी इस इलाके को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है, तो यह जगह उनके लिए बहुत ही महफूज थी।
0: इस तरह यहाँ अपनी बस्ती बसाने का फायदा ये था कि ये कुदरती तौर पर महफूज थी। इसके अलावा कोई आफत आने पर एक तो हुगली नदी बाढ़ का काम करती, दूसरे इस नदी के जरिए समुद्र की ओर भागा जा सकता था जहाँ अंग्रेजी नेवी की अजेय ताकत इनकी रक्षा करती। चारनाक हालांकि 1693 में ही गुजर चुका था, लेकिन उसकी सलाह को कंपनी ने गांठ बांध लिया था और कोशिश करके 1698 में इस जगह की जागीरदारी प्राप्त कर ही ली।
1: बिल्कुल ठीक, और जैसा कि अंग्रेज हर जगह करते थे उन्होंने यहाँ भी वही किया। उन्होंने फौरन इस जगह की किलेबंदी शुरू कर दी और 1712 में यहाँ फोर्ट विलियम नामक एक मजबूत किला तैयार कर लिया और 1772 में कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी की राजधानी बना और इसके बाद पूरे भारत के ब्रिटिश एम्पायर की राजधानी। लेकिन 1912 में यह जगह दिल्ली को मिल गई और तब से दिल्ली ही भारत की राजधानी हो गई।
0: अब कोलकाता के संबंध में कुछ दिलचस्प तथ्य और हम आपको बताते हैं।
1: बताइए।
0: अंग्रेजों के जमाने में कलकत्ता इतना महत्वपूर्ण हुआ करता था कि वे इसे लंदन के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का दूसरा शहर कहा करते थे। आसान शब्दों में कहें तो उनकी नजर में ब्रिटिश एम्पायर के लिए लंदन के बाद सबसे अहम शहर कलकत्ता ही था।
1: श्रोताओं, आप में से बहुत से लोग यह भी जानते होंगे कि कलकत्ता को सिटी ऑफ पैलेस भी कहा जाता है, मगर लाख टके का सवाल तो यह है कि क्यों। वह यूं कि जब अंग्रेज लोग कलकत्ता में बसना शुरू किए तो यहाँ इमारतों के निर्माण के लिए गॉथिक, ब्रॉक, रोमन, इस्लामिक और ओरिएंटल डिजाइनों के एक ही तरह के पैटर्न का इस्तेमाल हुआ।
0: अंग्रेज अफसर खास करके पश्चिमी डिजाइनों के बड़े बड़े महलनुमा बंगले बनवाया करते थे। यहाँ तक कि यहाँ के बंगाली बाबू भी इस मामले में पीछे न रहे। जब बंगाल में जमींदारी प्रणाली आई तो जमींदारों के पास अनाप शनाप पैसा आया। इस पैसे से उन्होंने कोलकाता में शानदार हवेलियां बनवाई जिनमें हर तरह के आराम और शान और शौकत की चीजें होती थी।
1: श्रोताओं, प्रसंग बस आपको यह भी बता दें कि आज इनमें से ज्यादातर हवेलियां खंडरों में तब्दील हो चुकी हैं, लेकिन उनमें से कुछ का संरक्षण किया जा रहा है और कुछ को हेरिटेज स्ट्रक्चर घोषित कर दिया गया है।
0: और इस तरह अंग्रेज जेंटलमैन और बंगाली भद्र पुरुषों के बल पर देखते ही देखते कोलकाता अनगिनत महलनुमा हवेलियों से भर गया और ये शहर सिटी ऑफ पैलेसेस कहलाने लगा।
1: फ्रांसीसी लेखक डोमिनिक लेपियर ने कलकत्ता को सिटी ऑफ जॉय कहा है। कोलकाते सही मायने में जानते थे कि जिंदगी का मजा कैसे उठाया जाए, चाहे दुर्गा पूजा हो, न्यू ईयर हो या अन्य कोई त्योहार हो। कोलकातियन इसे पूरे जोश और खरोश के साथ मनाते थे। पैसे की चाहे कितनी कमी हो, लेकिन जीवन का आनंद उठाने में कोलकाता वाले कभी भी पीछे नहीं रहते थे।
0: एशिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम इडन गार्डन कोलकाता में ही स्थित है। इसमें 1,00,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। ये भारत का ऐसा पहला स्टेडियम है जिसमें फ्लड लाइट्स लगाई गईं और डे एंड नाइट मैचेस देखने की फैसिलिटी उत्पन्न की गई।
1: श्रोताओं, ईडन गार्डन की तरह ही कलकत्ता का साल्ट लेक स्टेडियम भी पूरी दुनिया में मशहूर है। बंगाली में इसे युवा भारती क्रीड़ा आंगन कहते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। यह मल्टीपर्पज स्टेडियम आज फुटबॉल मैचों व एथलेटिक इवेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। श्रोताओं, हम आपको एक बात और बता दें कि इसमें एक साथ 1,20,000 से भी ज्यादा दर्शकों के बैठने की क्षमता है। सोचिए जरा,
0: भारत की पहली मेट्रो ट्रेन दिल्ली या मुंबई में नहीं बल्कि 1984 में कोलकाता में ही शुरू हुई और ये भारत की पहली अंडरग्राउंड ट्रेन सर्विस भी थी। कोलकाता शहर की 3 निशानियां और भी हैं, विक्टोरिया मेमोरियल, हावड़ा ब्रिज और ट्राम।
1: हाँ शोला, कोलकाता इस मायने में भी भारत के सभी शहरों से अलग है कि यह देश का पहला एकमात्र शहर है जहाँ सी पोर्ट यानी कि बंदरगाह समंदर पर नहीं है बल्कि किसी नदी पर स्थित है। जी हाँ, कलकत्ता सी पोर्ट हुगली नदी पर स्थित है। इस पोर्ट की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ही की गई थी।
0: और हैंड पुल्ड रिक्शा, जी हाँ, इसे भी शायद सबसे पहले कोलकाता में ही इस्तेमाल किया गया। रिक्शा शब्द जापानी भाषा के जिन रिक्शा शब्द से आया है जिसका मतलब होता है इंसान के द्वारा खींचा जाने वाला रिक्शा। दुनिया को रिक्शे का चलन इसी देश ने दिया है। जब 1868 में मेइजी काल के जापान में ये शुरू हुआ तो इसे उस जमाने की तेज सवारी माना गया क्योंकि इसने पालकियों की जगह ले ली थी।
1: खैर, रिक्शे तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, पुल रिक्शा। इनमें से पुल रिक्शा ही जापानी जिंग रिक्शा है। इसे आप रिक्शा न कहकर के एक टांगा कह सकते हैं जिसमें घोड़े की जगह इंसान जुटता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि टांगे में घोड़े को हाँकने के लिए एक कोचवान होता है, जबकि पुल रिक्शा में इंसान ही घोड़ा और इंसान ही कोचवान होता है।
0: आज से 200 साल पहले चीन के जरिए कलकत्ता आए इस पुल रिक्शे ने हर वक्त कलकत्ता को ऑन व्हील्स ही रखा, चाहे बरसात की वजह से गलियों में पानी भरा हो, चाहे भारत बंद हो या चाहे जाम लगा हो। दौड़ती हुई ये पालकियां अपने लिए रास्ता निकाल ही लेती हैं। इसीलिए कलकत्ता में कहते हैं कि मरीज को अगर अस्पताल ले जाना हो तो इससे भरोसेमंद कोई साधन नहीं।
1: फिल्म निर्माता भी अपनी फिल्म में अगर कलकत्ता दिखाना चाहते हैं तो वे इंसानी घोड़े वाला यह तांगा दिखाना नहीं भूलते, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिकल फिल्म हो, चाहे दो बीघा जमीन हो या नए जमाने की परिणीता हो। यह साबित करने के लिए कि यह सीन असली कलकत्ते में फिल्माई गई है, पुल रिक्शा को कैनवास पर उभारना ही पड़ता है।
0: चलिए श्रोताओं, अब हम बात करते हैं कोलकाता शहर की एक और निशानी यानी कि विक्टोरिया मेमोरियल की। विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता का एक बहुत ही खास टूरिस्ट स्पॉट है।
1: जी हाँ।
0: जो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की याद में बनाया गया है। ये साल 1902 की बात है जब क्वीन विक्टोरिया का निधन हुआ। उस समय लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय हुआ करते थे और कलकत्ता भारत की राजधानी। उन्होंने ही सुझाव रखा कि महारानी की याद में कोलकाता में एक म्यूजियम बनाया जाए, इसलिए इसे लॉर्ड कर्जन का ब्रेन चाइल्ड भी कहा जाता है।
1: श्रोताओं, विक्टोरिया मेमोरियल को बनाने में मुगलिया व ब्रिटिश आर्किटेक्चर का मिला जुला इस्तेमाल किया गया है। इसके भीतर के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में सफेद मकराना संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। दरअसल इसे बनाने के लिए इसके आर्किटेक्ट विलियम इमर्सन ने ताजमहल का मॉडल सामने रखा था। 1921 में इसका उद्घाटन हुआ और उस जमाने में इसके निर्माण की लागत आई थी 1,05,00,000 रुपए।
0: मित्रों, आपको बता दें कि इस इमारत को बनाने में अंग्रेज सरकार ने फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी। सारा का सारा पैसा या तो भारत के देशी राजाओं ने दिया या कुछ अमीर लोगों ने, जो इसी बहाने अंग्रेज सरकार का फेवर पाना चाहते थे।
1: विक्टोरिया मेमोरियल में आप ब्रिटिश राज घराने के ढेरों यादगार पेंटिंग्स व मुगल स्टाइल के पेंटिंग्स देख सकते हैं। बंगाल के नवाब का सिंहासन भी इसका एक खास आकर्षण है। इसके खूबसूरत बगीचे में हर शाम लेजर शो, ऑडियो विजुअल शो का आयोजन होता है, जो यहाँ आने वालों के लिए एक यादगार इवेंट होता है। अगर आप विक्टोरिया में जाएं, तो इसे देखना बिल्कुल ना भूलें। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।
0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है अतुल्य भारत, जिसमें आज हम आपको सैर करा रहे हैं कोलकाता शहर की। तो चलिए अब चलते हैं कोलकाता शहर के न्यू मार्केट में। भोपाल के न्यू मार्केट की ही तरह कोलकाता में भी एक न्यू मार्केट है। लेकिन बस इसका नाम ही केवल न्यू है, वैसे ये काफी पुराना है। 1874 में शुरू हुआ ये मार्केट उस समय हॉग मार्केट कहलाता था। ये नाम उस वक्त के कलकत्ता कमिश्नर स्टुअर्ट हॉग के नाम पर था। आजादी के बाद इसका नाम बदलकर न्यू मार्केट रख दिया गया।
1: इस मार्केट के बारे में कहा जाता है कि यह कोलकाता का शॉपिंग इंस्टीट्यूशन है और जिस किसी चीज के बारे में भी आप सोच सकते हैं वह आपको यहाँ मिल जाएगी। कीमतें कम होती हैं और क्वालिटी हाई, लेकिन शर्त यह है कि आपको बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए। श्रोताओं, अगर आप नए हैं तो आप नहीं जानते कि कौन सी चीज कहाँ मिलेगी, तो फिक्र न कीजिए, न्यू मार्केट घूमने के लिए गाइड भी उपलब्ध हैं।
0: श्रोताओं, कोलकाता शहर काली मंदिर के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। देवी काली शक्ति के 108 रूपों में से एक है, जो अपने भक्तों को हर तरह की आपदा से बचाती है। आपको तो याद होगा कि कोलकाता का नाम वस्तुतः कालीकता से आया है और कारण यह है कि ये क्षेत्र माँ काली का एक खास स्थान है और यहाँ आज भी आपको ढेरों काली मंदिर मिलेंगे, जैसे कि अयोध्या में ढेरों राम मंदिर मिलते हैं।
1: लेकिन इनमें से हम आपको दो खास मंदिरों की जानकारी देना चाहेंगे और वो है दक्षिणेश्वर का काली मंदिर और काली घाट का काली मंदिर। लोग भ्रमवश कभी कभी इन दोनों मंदिरों को एक ही समझ बैठते हैं। दोनों की ही भारी मान्यता है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि दक्षिणेश्वर का काली मंदिर जहाँ कलकत्ता के उत्तर में स्थित है, वहीं काली घाट का काली मंदिर दक्षिण में स्थित है।
0: श्रोताओं, माँ काली का एक रूप है भवतरिणी। इस रूप में वे कोलकाता के पास दक्षिणेश्वर काली मंदिर में विराजमान है। उल्लेख मिलता है कि 1847 के आसपास कोलकाता में एक रानी रोशमोई हुआ करती थी, जो माँ काली की बहुत बड़ी भक्त थी।
1: हाँ, उन्होंने निश्चय किया कि माँ काली के दर्शन करने के लिए वे वाराणसी जाएंगी। लेकिन उसी रात माँ काली उनके स्वप्न में आई और उन्होंने कहा कि मेरे दर्शन के लिए वाराणसी जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम गंगा के तट पर एक मंदिर बनवा करके उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित कर दो, मैं स्वयं उस मंदिर में विराजमान हो जाऊंगी।
0: इस पर रानी ने एक अंग्रेज जॉन हेस्ट से 20 एकड़ का शाहबान बगीचा खरीदा और उस पर यह मंदिर बनवाया। ये बगीचा एक कछुए के आकार का था। कहा जाता है कि इस आकार की भूमि शक्ति पूजा के लिए बहुत ठीक थी। उस जमाने में 9 लाख रुपए खर्च करके रानी रोशमोई ने मंदिर बनवाया। 1855 में इसका निर्माण पूरा होने के बाद इसमें माँ काली की प्रतिमा स्थापित की गई।
1: श्रोताओं, इसके आगे की कहानी तो और भी दिलचस्प है। मंदिर में मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम जिस पुरोहित ने संपन्न कराया था, उसका नाम था राम कुमार चट्टोपाध्याय। जल्द ही इस मंदिर में उनके छोटे भाई, जिनका नाम गदाई था, आकर के शिफ्ट हो गए। आपको बता दें कि गदाई और कोई नहीं रामकृष्ण परमहंस थे, जिन्हें विवेकानंद जैसे महान पुरुष ने उन्हें अपना गुरु बनाया था।
0: रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में कहा जाता था कि माँ काली उन्हें साक्षात दर्शन देती थी, और देती भी क्यों ना, वे माँ में इतने तन्मय रहते थे कि वे अपनी पत्नी शारदा को भी माँ कहते थे और माँ के रूप में ही उनकी पूजा करते थे।
1: आखिरी समय में रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया, जिससे उन्हें अपार कष्ट होता था। कई लोगों ने उनसे कहा कि आप तो माँ काली के भक्त हैं, अगर आप उनसे प्रार्थना करेंगे तो यह बीमारी ठीक हो जाएगी। जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, नहीं, यह कर्म फल है, इसे तो भोगना ही अच्छा है। अगर बिना भोगे दुनिया से चले गए तो इसे भोगने के लिए मुझे फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा।
0: और अब चर्चा काली घाट के काली मंदिर की। ये मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। श्रोताओं, आपको याद दिला दें कि शक्तिपीठ वे स्थल हैं जहां देवी सती का कोई ना कोई अंग गिरा था। तो जिस जगह पर ये मंदिर स्थित है, वहां पर देवी के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था।
1: श्रोता, सुनने में आता है कि सैकड़ों साल पहले इस जगह पर जंगल हुआ करते थे। एक बार किसी भक्त ने यहाँ पर रोशनी की एक किरण देखी। जब उसने इसका स्रोत ढूंढने की कोशिश की तो पाया कि यह रोशनी पत्थर के अंगूठे से आ रही है। इस अंगूठे के पास ही एक स्वयंभू शिवलिंग भी था। इस पर भक्त ने उस स्थान पर उपासना आरंभ कर दी।
0: श्रोताओं, जहां दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के निर्माण काल के बारे में हमें स्पष्ट जानकारी मिलती है, वहीं काली घाट के मंदिर की प्राचीनता का सही अनुमान हम नहीं लगा सकते। यहाँ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की मुद्राएं तक मिली हैं, इसलिए हम समझ सकते हैं कि ये कितना पुराना हो सकता है।
1: हाँ, कहते हैं कि ओरिजिनल काली मंदिर एक छोटी सी झोपड़ी मात्र थी, जिस पर आज से 500 साल पहले किसी राजा मानसिंह ने पक्का मंदिर बनवाया। लेकिन जिस रूप में यह मंदिर आज हमें मिलता है, उसका निर्माण तो सन 1809 में बरिशा के चौधरी परिवार ने करवाया था।
0: श्रोताओं, कोलकाता की दुर्गा पूजा तो आपने सुनी है कि कितनी भव्य और कितनी विशेष होती है। पूर्वी भारत में शक्ति की आराधना का चलन बहुत पुराना है और दुर्गा जी तो शक्ति के 108 रूपों में से सबसे प्रबल है। वे एकमात्र ऐसी देवी हैं जो सिंह की सवारी करती हैं, जिनकी आराधना करके राम जी ने रावण को मारा, जिनका स्मरण करके कृष्ण जी ने कंस का संहार किया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश जिसकी स्तुति करते हैं। उनकी शान में बंगाली लोग अपना सबसे बड़ा त्योहार दुर्गा पूजा मनाते हैं।
1: बंगाली जन दुर्गा पूजा को अकाल बोधन भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है शक्ति का असमय जागरण। कोलकाता में तो यह त्योहार इतने बड़े पैमाने पर इतने जोश और खरोश के साथ मनाया जाता है कि देश विदेश के सैलानी भी इसे देखने के लिए यहाँ डेरा डाल देते हैं।
0: 10, 20, 50, 100 नहीं, कई हजार पंडाल यहाँ बनते हैं और भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि वो बेकाबू हो जाती है। ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल ठप हो जाती है। कई बार तो पैदल चले बिना पंडाल तक पहुँचना संभव ही नहीं रहता।
1: श्रोताओं, वैसे तो दुर्गा पूजा की परंपरा राम ने शुरू की थी, परंतु आज जिस तड़क भड़क के साथ ये त्योहार मनाया जाता है ना, उसका आरंभ सन 1606 में तहरेपुर व नादिया के राजाओं ने शारदीय दुर्गोत्सव के नाम से शुरू किया था। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है संस्कृति संवाद, जिसके अंतर्गत आज हम भारत के दर्शनीय स्थलों में आपको सैर करा रहे हैं कलकत्ता शहर की। और चलिए अब बात करते हैं कलकत्ता के हावड़ा ब्रिज की। श्रोताओं, रुडयार्ड किपलिंग नाम तो आपने सुना ही होगा, वही जिन्होंने जंगल बुक लिखी थी, जिसमें मोगली नाम का एक मशहूर करैक्टर है, जिस पर किसी जमाने में एक हिंदी सीरियल बना और जिसका एक गाना बच्चे गुनगुनाया करते हैं कि जंगल जंगल बात चली है पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है फूल खिला है।
0: किपलिंग एक जगह लिखते हैं, अरे ये लंदन यहाँ कैसे, इसे देखने के लिए तो भारत आना बनता है।
1: किपलिंग ने ये लाइनें हावड़ा ब्रिज को देखकर ही लिखी थी। कोलकाता की यह पहचान है कि जिस तरह भोपाल का नाम आते ही भोपाल की झील आंखों में तैरने लगती है, उसी तरह कोलकाता का नाम आते ही हावड़ा ब्रिज भी आंखों के सामने तैरने लगता है। वैसे ये कोलकाता का मोनोग्राम भी है।
0: कोई कोलकाता जाए और ये ब्रिज न देखे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बल्कि हम तो यही कहेंगे कि वो कोलकाता गया ही नहीं। यमलोक में जिस तरह यमराज होते हैं और क्षीर सागर में विष्णु, उसी तरह कोलकाता में हावड़ा ब्रिज है। इस शहर के शरीर में धड़कते हुए दिल की तरह। किसी ने तो यहाँ तक लिखा है कि बाकी दुनिया को कोलकाता की पहचान बताने का काम ये ब्रिज ही करता है।
1: हाँ श्रोताओं, हावड़ा ब्रिज एक सस्पेंशन टाइप कैंटिलीवर ब्रिज है, जो हुगली नदी के दोनों किनारों पर जुड़वा नगरों कलकत्ता और हावड़ा को आपस में जोड़ता है। इसे बनाने का श्रेय अंग्रेजों को है। उन्होंने इंजीनियरिंग की बेहतरीन कारीगरी दिखाते हुए इसे 6 सालों की कठिन मेहनत के बाद 1942 में तैयार किया और 1943 में ट्रैफिक के लिए इसे खोल दिया गया।
0: उस वक्त ये न्यू हावड़ा ब्रिज कहलाता था, लेकिन आजादी के बाद 1965 में इसका नाम रविंद्र सेतु रख दिया गया। मगर हकीकत तो यह है कि जनता आज भी इस नामकरण को शायद नहीं मानती, वो तो आज भी इसे हावड़ा ब्रिज ही कहती है।
1: श्रोताओं, बाय द वे, सस्पेंशन ब्रिज उसे कहते हैं जिसमें ब्रिज का डेक सस्पेंशन केबल के नीचे लटका रहता है। ब्रिज के दोनों सिरों पर सस्पेंशन टावर होते हैं जिनमें स्टील केबल बंधी हुई होती है, और इस तरह के ब्रिज ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में दो ऊंची पहाड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, और सबसे पहले ये तिब्बत व भूटान में बनाए गए थे आज से लगभग पूरे 500 साल पहले।
0: दूसरी ओर कैंटिलीवर ब्रिज उसे कहते हैं जो कैंटिलीवर्स के सहारे हवा में लटकता रहता है बिना किसी नट बोल्ट के। मतलब ये हुआ कि हावड़ा ब्रिज लोहे की मजबूत रस्सियों के सहारे एक छोर से दूसरे छोर तक हवा में लटका हुआ है, न कोई नट बोल्ट और ना ही ब्रिज को टेक देने के लिए कोई पिलर वगैरह।
1: देखा जाए तो पैदल चलने वालों के लिए छोटे छोटे और हल्के फुल्के कैंटिलीवर ब्रिज बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर हावड़ा ब्रिज हुगली नदी के दोनों किनारों को जोड़ती हुई 8 लेन वाली 705 मीटर लंबी संरचना, चौड़ाई 71 फीट और ऊंचाई 269 फीट, जिसे बनाने में 26,500 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ, जिस पर से रोज 1.5 लाख गाड़ियां, 4 लाख पैदल लोग गुजरते हैं। वास्तव में कैंटिलीवर नाम का यह एक अजूबा ही है।
0: ये दुनिया का सबसे बिजी कैंटिलीवर ब्रिज है और पूरी दुनिया में 10 सबसे लंबे कैंटिलीवर ब्रिजों में 6वें नंबर पर है। ये केवल हावड़ा और कोलकाता को ही नहीं जोड़ता, बल्कि पुराने कलकत्ता और नए कोलकाता को भी जोड़ता है। तभी तो शायद एक व्यक्ति ने अपनी डायरी में लिखा, सालों बाद कलकत्ता आना हुआ, सब कुछ बदल चुका था सिवाय हावड़ा ब्रिज के।
1: श्रोताओं, कलकत्ता की हम बात करें और वहां की ट्राम सर्विस की बात ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। श्रोताओं, ट्राम सर्विस भी कलकत्ता की एक अनोखी पहचान है। हालांकि किसी जमाने में यह मुंबई, दिल्ली, कानपुर जैसे कई शहरों में हुआ करती थी, लेकिन आज आप इसे और कहीं नहीं देख पा सकते। इसके अंतर्गत पटरियों पर दौड़ती हुई ट्रामें, कारें लोगों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराती हैं।
0: कोलकाता की ट्राम सर्विस को अगर आप ट्रेन जैसी दिखने वाली बस सर्विस कहें तो ज्यादा ठीक होगा। सड़कों पर ही बिछी लोहे की पटरियों पर ट्रामें दौड़ती रहती हैं। न कोई रेलवे फाटक और न ही कोई बाड़ बंदी। आती हुई ट्राम के सामने से लोग आराम से ही निकलते रहते हैं।
1: श्रोताओं, ये बात है साल 1873 की, जब सियालदह और आर्मेनियन घाट स्ट्रीट के बीच लोहे की पटरियों पर घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली ट्राम सेवा की शुरुआत हुई थी। लेकिन पर्याप्त सवारियां ना मिलने की वजह से 8-10 महीने में ही यह सेवा बंद हो गई।
0: लेकिन सन 1900 में एक ब्रिटिश कंपनी ट्रामवेज कंपनी लिमिटेड ने इसकी फिर से शुरुआत की। इस बार ट्राम को घोड़ों से नहीं खींचा जाता था, बल्कि ये बिजली से चलती थी। देखते ही देखते ये नई ट्राम सेवा कोलकाता की पहचान बन गई और आज इसे इस शहर की एक जिंदा विरासत माना जाता है।
1: श्रोताओं, कोलकाता को इस आधे घंटे के प्रोग्राम में समेटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसलिए कोलकाता से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियां, जैसे वहां का वस्त्र उद्योग, वहां का पहनावा, वहां का रहन सहन, वहां का खान पान और वहां का रसगुल्ला, इन सब की चर्चा हम करेंगे अपने अगले कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम का आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने और स्वर थे प्रमोद शर्मा
0: और कंचन राजानी के।
1: श्रोताओं, अब हमें आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
1: अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती, भारत भारती

आज के भारत भारती कार्यक्रम को लेकर आई हूँ मैं आपके रेडियो मित्र प्रमिला। कीजिए स्वीकार हमारा नमस्कार। श्रोतो, आज हम इस कार्यक्रम में लेकर आए हैं उस्ताद उस्मान मीर का गुजराती लोक गायन।

0: हेलो
1: रिवर्ब थोड़ा अलग लग रहा है भाई थोड़ा।
0: हेलो

तेरे गम को तेरी चाहत की तरह रखा है, तेरे गम को तेरी चाहत की तरह रखा है, इस अमानत को अमानत की तरह रखा है, अपनी गजलों को बचा के रखा है तमाशों से बहुत, क्योंकि हमने इस फन को इबादत की तरह रखा है। जफर साहब का ये कलाम है कि कहते हैं कि आंधियां गम की चलेंगी तो समझ जाऊंगा, आंधियां गम की चलेंगी तो समझ जाऊंगा, मैं तेरी जुल्फ नहीं हूं कि बिखर जाऊंगा।

मुझे लगता है ये गाना तो सबको याद है ना, आपको याद है ना, सबको याद है भाई। बहुत विसलिंग हो रहा है यार, मूड नहीं बन रहा है कुछ। आप लोग गाइए साथ में तो कुछ अच्छा हो जाए। चलिए साथ में गाते हैं।

0: आज के भारत भारती कार्यक्रम में आपने उस्ताद उस्मान मीर से गुजराती लोक गायन सुना। अब ये कार्यक्रम खत्म करने की प्रमिला को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती, भारत भारती।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। सांध्यकालीन प्रसारण सेवा लेकर मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र डॉक्टर रानी रैकवार भारती। शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक रहेगा अब हमारा साथ ज्ञात अल्पज्ञात और गुमनाम नायकों की गाथाएं और उनकी किस्से कहानियां जरूर सुनिए रेडियो आजाद हिंद में। आप हमारा प्रसारण ऑनलाइन लाइव ब्रॉडकास्ट भी सुन सकते हैं मिक्सलर ऐप पर, रेडियो गार्डन पर, स्पॉटिफाई पर, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट, अमेजॉन पॉडकास्ट, यूट्यूब पॉडकास्ट, अमेजॉन पॉडकास्ट और यूट्यूब पॉडकास्ट पर भी आप हमें लाइव सुन सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।
2: सांध्यकालीन प्रसारण सेवा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी हम आपको दे दें। बस कुछ ही देर में सुनिए कार्यक्रम अक्षय निधि, जिसमें आप सुनेंगे मंडल एक के सूक्त 142 का वाचन। 5:10 पर सुनिए सुमधुर भक्ति संगीत आराधना के स्वर। वतन का राग कार्यक्रम पेश किया जाएगा 6:00 गणेश दामोदर सावरकर की जयंती पर आधारित है। कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से प्रसारित होगा 6:30 पर देवगढ़ का गौंड राज्य के बारे में जो आज केंद्रित है। योग संवाद कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा 7:00 श्री राम की वैराग्य दशा में शरीर की निंदा। भारत विभूति कार्यक्रम में सुनिए भिखारी ठाकुर के बारे में 7:30 पर संदीप शर्मा और स्वाति के साथ। 8:00 सुनिए रेडियो रिपोर्ट जो फराज फयाज पेश करेंगे। आजाद हिंद कार्यक्रम पेश किया जाएगा 8:30 पर जो केंद्रित है लाला लाजपत राय पर। सुरसागर का प्रसारण किया जाएगा 9:00 भक्ति गायन पूर्वी सप्रेगा। और 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, जिसमें आप भाग 71 का वाचन सुनेंगे। तो ये थी हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सेवा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: वेद पुराण आख्यान मीमांसा ये सब हमारी भारतीय संस्कृति के दर्शन हैं और इन दर्शनों से रूबरू कराता है हमारा विशेष कार्यक्रम अक्षय निधि। प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
4: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 142वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य, देवता हैं इद्म, समिद्ध अग्नि, तनूनपात, नराशंस, इड, बहिर, देवी द्वार, ऊषा सानकता, दिव्य होता प्रचेतस, देवियां हैं सरस्वती, इड़ा, भारती, त्वष्टा, वनस्पति, स्वाहाकृति और इंद्र। छंद है अनुष्टुप।
5: समिद्धो अग्न आवह देवाम अद्य यतस्रुचे तंतुम तनुष्व पूर्व्यम सुत सोमाय दाशुसे। हे अग्निदेव, आप प्रज्वलित होकर हविदाता यजमान के लिए देवताओं का आवाहन करें। सोम अभिशव करता दानी यजमान के लिए प्राचीन यज्ञ के संपादनार्थ अपनी ज्वालाओं को बढ़ाएं। घृतवंतमुप मासी मधुमंतम तनूनपात यज्ञम विप्रस्य मावतः शशमानस्य दाशुषः। शरीर के आरोग्य को बढ़ाने वाले हे अग्ने, आपके प्रशंसक तथा दानदाता हम ब्रह्मनिष्ठ विद्वानों द्वारा किए जाने वाले माधुर्य से युक्त तथा तेजस्वी यज्ञ में आकर आप प्रतिष्ठित हों। शुचिः पावको अद्भुतो मध्वा यज्ञम् मिमिक्षति नरा शंसस्त्रिरा दिवो देवो देवेषु यज्ञेयः। हे अग्निदेव, आप देवताओं द्वारा पूजनीय, मनुष्यों द्वारा प्रशंसनीय, पवित्र रहकर दूसरों को भी पवित्र करने वाले आश्चर्यप्रद और तेजस्वी हैं। आप दिव्य लोक के मधुर रस रूपी यज्ञ को दिन में 3 बार सिंचित करें। ईडितो अग्न आवहेन्द्रम चित्रमिह प्रियम इयम हित्वा मतिर्ममाच्छा सुजिह्व वच्यते। हे अग्निदेव, आप प्रशंसित होकर विलक्षण कर्मों के निर्वाहक प्रिय इंद्रदेव को हमारे इस यज्ञ में लेकर आए। हे सुंदर ज्वाला रूपी जिह्वा युक्त अग्निदेव, हमारी ये बुद्धियां सदैव आपकी ही प्रार्थनाएं करती हैं। स्त्रिणा नासो यतस्रुचो बहिर्यज्ञे स्वध्वरे वृंजे देवव्यचस्त ममिंद्राय शर्म सप्रथः। स्रुवा पात्र को धारण किए हुए ऋत्विगण श्रेष्ठ यज्ञ में कुश के आसनों को फैलाते हैं तथा देवों के आवाहक विशाल यज्ञ स्थल को इंद्रदेव के लिए शोभायमान करते हैं। विश्रयंता मृता वृध प्रयै देवेभ्यो महीहि पावकासः पुरुस्पृहो द्वार।

पारस्परिक सहयोग की प्रतीक रात्रि और उषा हमारे संबंध में श्रेष्ठ विचारधारा रखते हुए इस यज्ञ में आकर विराजमान हों। मंद्र जिह्वा जुगुर्वणी होतारा दैव्या कवि यज्ञम नो यक्षतामिमं सिद्ध्रमद्य दिविस्पृशम्। वाणी के प्रयोक्ता मेधावी उच्चारण विद्या में प्रवीण दैवी गुणों से संपन्न यज्ञ संचालक वर्तमान विशिष्ट आध्यात्मिक उपलब्धियों द्वारा देवत्व पद को प्राप्त कराने वाले हमारे देव यज्ञ में उपस्थित होकर यज्ञ संपन्न कराएं। शुचिर देवेश्वर पिता होत्रा मरुत्सु भारती इडा सरस्वती मही बरिहि सीदन्तु यज्ञियाः। देवताओं और मरुद्गणों में पूजनीय पवित्र यज्ञीय कर्मों के निर्वाहक होता रूप भारती सरस्वती और इडा इस यज्ञ में उपस्थित हों। तन्नस्तुरीप मद्भुतं पुर वारुं पुरुत्मना त्वष्टा पोषाय विश्यतु राये नाभा नो अस्मयुः। हमारे हितैषी निर्माता हे त्वष्टा देव, आप हम सबके द्वारा इच्छित शीघ्र प्रवाहित होने वाले अंतरिक्षस्थ अद्भुत मेघों से

0: येषु मेधिरः। हे वनों के अधिपति, आप यज्ञीय कर्मों की प्रेरणा से युक्त होकर देवताओं के निमित्त अग्नि प्रज्वलित करें। ज्ञानवान अग्निदेव को समर्पित आहुतियां सूक्ष्म रूप होकर देवताओं तक पहुंचती हैं। पूषणवते मरुत्वते विश्व देवाय वायवे स्वाहा गायत्र वेपसे हव्यमिंद्राय कर्तन। हम पूषा देव और मरुद्गणों से युक्त सर्वदेव समूह के लिए, वायुदेव के लिए तथा गायत्री साधकों के संरक्षक इंद्रदेव के लिए श्रेष्ठ हव्य समर्पित करें। स्वाहा कृतान्या गहियुप हव्यानि वीतये इंद्रा गहि श्रुधि हवम त्वाम हवन्ते अध्वरे। हे इंद्रदेव, आप श्रद्धा भावना से समर्पित की गई आहुतियों को ग्रहण करने के लिए यहाँ पधारें। यज्ञीय सत्कर्मों के लिए मनुष्य आपको आवाहित कर रहे हैं। उनके निवेदन को सुनकर उनके सहयोग हेतु अवश्य आएं।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 142वें सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के प्रसारण के साथ। मैं हूं आपकी रेडियो मित्र भारती। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम भक्ति संगीत सुनने का। भगवत आराधना के सुमधुर स्वर सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत में। एक समय में सभी को खुश रखने का प्रयास मत कीजिए। जो काम हाथ में है केवल उसके ऊपर लक्ष्य रखिए, बाकी सब समय के हाथ में छोड़ दीजिए।

फूलों की खुशबू हवा के विपरीत दिशा में नहीं फैलती, लेकिन सद्गुणों की कीर्ति दसों दिशाओं में फैलती रहती है।

हमारी वजह से कोई रोए तो हम व्यर्थ हैं, हमारे लिए कोई रोए तो समझ लो हमारे जीवन का बहुत अर्थ है।

0: दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहने। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के महायज्ञ में अनगिनत देशभक्तों ने अपना योगदान दिया, जिनकी गाथाएं इतिहास के पन्नों में आज भी धड़क रही हैं। इन गाथाओं में है अंग्रेजों की कुटिल चाल, उनके बर्बर अत्याचार, इन अत्याचारों के विरुद्ध प्रतिरोध, आंदोलन, सशस्त्र क्रांति और आत्म बलिदान के किस्से। ब्रिटिश राज के विरुद्ध तन मन धन से युद्ध करते हुए अपने राष्ट्रवादी लेखन से अनगिनत युवाओं को जागृत करने वाले, उन्हें क्रांति पथ पर चलने हेतु प्रेरित करने वाले महान राष्ट्रभक्त थे गणेश दामोदर सावरकर। गणेश दामोदर सावरकर का जन्म 13 जून 1879 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के पास स्थित भगूर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिताजी का नाम दामोदर सावरकर और माताजी का नाम राधाबाई था। चार भाई बहनों में गणेश सबसे बड़े थे। विनायक दामोदर सावरकर, जो वीर सावरकर के नाम से प्रसिद्ध थे, उनके छोटे भाई थे। इसके अलावा नारायण दामोदर सावरकर उनके भाई और मैनाबाई उनकी बहन थीं। ये एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार था, इसीलिए घर में एक आध्यात्मिक वातावरण भी था। गणेश दामोदर सावरकर एक तीक्ष्ण मेधा के बालक थे। औपचारिक शिक्षा के साथ ही स्वाध्याय में भी उनकी रुचि थी। वो अनेक खेलों में पारंगत थे तथा अपने पिता से उन्होंने तलवारबाजी और बंदूक चलाने का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया था। गणेश दामोदर सावरकर यानी बाबा राव पढ़ाई के साथ साथ धर्म योग और जप तप में भी गहरी रुचि रखते थे। धीरे धीरे उनका मन इन्हीं विषयों में रमने लगा तथा वो इन विषयों के विशेषज्ञों से भी मिलने लगे। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें ये सारा संसार व्यर्थ लगने लगा और वो घर बार छोड़कर संन्यास लेने का मन बनाने लगे।

गणेश दामोदर सावरकर का अंतर्मन उन्हें आध्यात्मिक संसार की ओर खींच रहा था और उनका प्रारब्ध स्वाधीनता संघर्ष की ओर। प्लेग महामारी फैली और उनके पिता इसकी चपेट में आए, जिसके चलते उनका स्वर्गवास हो गया। मां राधाबाई का निधन पहले ही हो चुका था। घर में बड़ा होने के कारण दो छोटे भाइयों और एक बहन को पालने की जिम्मेदारी बाबा राव यानी गणेश दामोदर सावरकर पर आ पड़ी। इस तरह उनके जीवन की एक नई यात्रा आरंभ हुई। उनकी स्कूली शिक्षा मैट्रिक तक ही हो सकी, लेकिन योग, चिकित्सा, वेदांत और ज्योतिष जैसे विषयों का उन्होंने गहन अध्ययन किया। पराधीन भारत की दशा उन्हें विचलित कर देती थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारों से वो बहुत अधिक प्रभावित थे। ये वो समय था जब बंग भंग के बाद स्वदेशी का नारा चारों ओर गूंजने लगा था। गणेश दामोदर सावरकर इस आंदोलन में शामिल हो गए। स्वराज की मांग और उसके प्रयास में वो प्राणपण से जुट गए। उनके छोटे भाई विनायक दामोदर सावरकर भी क्रांति पथ पर चल पड़े थे। तात्या राव ने राष्ट्रभक्त समूह नामक एक गुप्त संस्था की स्थापना की थी। गणेश दामोदर सावरकर इसमें सक्रिय हो गए। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र चेतना से जोड़कर संगठित करने के उद्देश्य से मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना की। गणेश सावरकर मित्र मेला के कार्यवाहक थे। इसके माध्यम से उन्होंने गणेश उत्सव, शिवाजी जयंती और अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर सार्वजनिक भाषणों का आयोजन किया, कविता पाठ का आयोजन किया, ताकि युवा प्रेरित होकर स्वाधीनता के महासंग्राम में शामिल हों। गणेश सावरकर ने युवाओं के मार्गदर्शन के लिए समय समय पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक सहित कई अन्य नेताओं को नासिक में आमंत्रित भी किया। इसका व्यापक प्रभाव हुआ। उन्होंने केसरी, मराठा, लोकमान्य, सकाल और वंदे मातरम जैसे पत्रों में अनेक क्रांतिकारी लेख लिखकर लोगों को जागृत किया। गणेश सावरकर की पहल पर ही आत्मनिष्ठ युवती संघ महिला संगठन भी स्थापित हुआ। अपने सभी प्रयासों के माध्यम से इन संस्थाओं ने युवाओं को राष्ट्र चेतना से भरने का काम किया, देश हेतु अपना सर्वस्व बलिदान करने हेतु प्रेरित किया तथा उन्हें हथियार बांटकर सशस्त्र क्रांति की ज्वाला को और तेज कर दिया। गणेश दामोदर सावरकर और उनके भाई वीर सावरकर ने अपने प्रयासों से नासिक को राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बना दिया। सावरकर बंधु स्वाधीनता की इस लड़ाई में पूरी तरह संलग्न हो गए। उधर वीर सावरकर की पढ़ाई भी जारी थी। वकालत की पढ़ाई करने के लिए वो इंग्लैंड गए, लेकिन गणेश सावरकर ने उनके काम को भी अपने हाथों में ले लिया। दोनों भाइयों ने मिलकर जिस मित्र मेला नामक सोसाइटी की स्थापना की थी, वो अब अभिनव भारत सोसाइटी के नाम से क्रांति कार्य में सक्रिय थी। इस सोसाइटी में सैकड़ों क्रांतिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए, जिसकी शाखाएं भारत के विभिन्न हिस्सों में थीं। वीर सावरकर जब लंदन गए तो ये सोसाइटी लंदन में भी सक्रिय हो गई, और इधर भारत में गणेश दामोदर सावरकर इसे ऊर्जा देते रहे। विनायक सावरकर इंग्लैंड से देशभक्ति कविताएं और अन्य सामग्री भारत भेजते। गणेश दामोदर सावरकर इसे मुद्रित करवाकर वितरण करवाने का काम करते। इसके साथ ही वो अभिनव भारत के लिए धन एकत्रित करने का कार्य भी लगातार कर रहे थे, ताकि क्रांति कार्य में कोई बाधा न आए। इस तरह उनकी क्रांति गतिविधियां लगातार जारी रहीं।

गणेश दामोदर सावरकर एक बहुत अच्छे लेखक भी थे। उनके लेखों और किताबों का प्रभाव लोगों पर बहुत गहरा हुआ करता था। अनगिनत युवा उनके विचारों से प्रेरित होकर राष्ट्र सेवा हेतु समर्पित हुए और अनेक लोगों ने भारत की स्वाधीनता के लिए सशस्त्र क्रांति की राह पकड़ी। यही कारण है कि सावरकर बंधुओं की गतिविधियों पर अंग्रेजों की कड़ी नजर रहा करती थी। गणेश सावरकर ने अंग्रेजी में एक किताब लिखी, इंडिया एज अ नेशन। ये किताब जब्त न हो इसलिए उन्होंने इसे दुर्गानंद के छद्म नाम से लिखा, लेकिन अंग्रेजों को इस किताब और इसके मूल लेखक की भनक लग गई। इस किताब को प्रतिबंधित कर दिया गया और सन 1909 में नासिक से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सन 1909 में ही नासिक के कलेक्टर जैक्सन को अनंत गोपाल कन्हेरे, अन्ना कर्वे और विनायक देशपांडे ने मौत के घाट उतार दिया। अंग्रेजों ने ये माना कि नासिक हत्याकांड में सावरकर बंधुओं का ही हाथ है, क्योंकि इसमें अभिनव भारत सोसाइटी के 27 सदस्यों को दोषी ठहराया गया था। ये पाया गया कि वीर सावरकर द्वारा लंदन से भेजी गई पिस्तौल से ही जैक्सन की हत्या की गई है। मुकदमा चला और गणेश सावरकर को आजीवन कारावास, काला पानी और सभी संपत्ति जब्त करने के साथ ही सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। अंडमान की सेलुलर जेल में उन्होंने असीम यातनाएं सही। उन्हें प्रतीक्षा थी तो केवल इस बात की कि छोटा भाई वीर सावरकर जब वकालत की पढ़ाई पूरी करके आएगा तो उन्हें रिहा करवा लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वीर सावरकर को मदनलाल ढींगरा के साथ एक हत्या के जुर्म में अपराधी ठहराया गया और लंबी सजा देकर भारत भेज दिया गया और यहां से वो भी अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिए गए। दोनों भाई एक ही जेल की अलग अलग बैरकों में सालों रहे। उनके सबसे छोटे भाई नारायण राव ने अपने भाइयों की रिहाई के लिए सघन प्रयास किए। जेल यातना से गणेश सावरकर का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था। अंततः नारायण राव के प्रयासों से दोनों भाई सन 1921 में अंडमान जेल से रिहा हुए, लेकिन उनकी सजा पूरी नहीं हुई थी इसलिए भारत में वो विभिन्न जेलों में रखे गए। अंततः सन 1922 में गणेश सावरकर साबरमती जेल से रिहा हुए। जेल से छूटने के बाद वो डॉक्टर हेडगेवार के संपर्क में आए तथा बहुसंख्य भारतीयों को एकजुट करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना में सहयोग किया। राष्ट्र मीमांसा, वीर वैरागी, वीरा रत्न, ख्रिस्ताचे हिंदुत्व, हिंदुस्तान चे राष्ट्र स्वरूप जैसी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने भारतवासियों को जागृत किया। आजीवन राष्ट्र सेवा करते हुए 16 मार्च सन 1945 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है, देश का चैनल देश के लिए।

0: कि मैं हूँ मुकेश खन्ना, आपका शक्तिमान, या आप कह लो भीष्म पितामह, और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है

नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।

0: नमस्कार, मैं हूं सोनाली राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए जय हिंद।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। और मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा, जो लेकर आया हूं कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से।

0: श्रोता, हमने पिछले एपिसोड्स में गढ़ा के गोंड राज्य के गौरवशाली इतिहास के बारे में सुना। मध्य भारत में राजा संग्राम शाह द्वारा स्थापित बावनगढ़, उनकी स्थापत्य शैली, सिक्कों आदि के माध्यम से हमने उस काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थितियों को जाना। इसी कड़ी में गढ़ा की वीरांगना रानी दुर्गावती के द्वारा निर्मित पचमठा मंदिर शैली, जल प्रबंधन और उनके द्वारा वल्लभ संप्रदाय को दिए गए संरक्षण के बारे में जाना। परिणाम स्वरूप रानी दुर्गावती तथा मुगल सेनापति आसफ खां के मध्य सन 1564 ईस्वी में नरई का युद्ध हुआ और इस युद्ध में गोंड रानी वीरांगना दुर्गावती के अदम्य साहस, शौर्य एवं बलिदान का इतिहास भी जाना। गोंड रानी दुर्गावती के प्रति हम सभी नतमस्तक हैं। भारत के इतिहास में वो स्वर्णाक्षरों की तरह सदा दैदीप्यमान रहेंगी। पिछले एपिसोड में हमने रानी दुर्गावती के वंशज हृदय शाह के बारे में सुना। वीरांगना रानी दुर्गावती के लगभग 70 वर्षों बाद राजा हृदय शाह ने 1635 ईस्वी में गढ़ा राज्य की राजगद्दी संभाली। उन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित करके वर्तमान मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थापित की। उन्होंने अपनी राजधानी का नाम रखा रामनगर। हमने रामनगर के नगर नियोजन और स्थापत्य कला के बारे में सुना। इसके अलावा कवि हृदय राजा हृदय शाह के द्वारा संगीत के क्षेत्र में दिए गए योगदान, हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश नामक पुस्तकों के बारे में भी चर्चा की। हमारे साथ इन सभी चर्चाओं में शामिल रही हैं अब तक प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर पूजा सक्सेना, जिन्होंने ये सब जानकारियां आप तक पहुंचाई हैं। आज भी पूजा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी आपका।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो पूजा जी, इस एपिसोड को शुरू करने के पहले मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि राजा संग्राम शाह, वीरांगना रानी दुर्गावती और राजा हृदय शाह के योगदान के साथ गढ़ा मंडला राज्य का गौरवशाली इतिहास आपने हम सबको सुनाया, लेकिन क्या इनके समकालीन और भी गोंड राज्य हमें मध्य भारत में देखने को मिलते हैं?
1: बिल्कुल, वीरांगना रानी दुर्गावती के समकालीन मध्य भारत में कुछ अन्य छोटे राज्य भी थे जिनकी जानकारी हमको मिलती है। जैसे एक है गरोला का राजा, दनकी का राजा, खटोला का राजा, मुग्धा, मंडला, देवहार और लांजी का राजा।
0: अच्छा।
1: इनकी कुछ कुछ जानकारियां हमें यहाँ वहां मिलती हैं। इनमें ही एक और नाम मिलता है हरिया का राज्य।
0: अच्छा।
1: हरियागढ़ भी कहलाता था ये, जो आज मध्य प्रदेश है उसके छिंदवाड़ा जिले के आसपास था ये हरियागढ़।
0: अरे वाह।
1: और इसी के साथ में एक और राज्य का जिक्र मिलता है जो गोंड राज्य था, जिसका नाम था देवगढ़।
0: जी।
1: आज भी अगर छिंदवाड़ा जाते हैं तो इस देवगढ़ राज्य की जो ऐतिहासिक विरासतें हैं उनको हम देख सकते हैं। तो देवगढ़ राज्य के उद्भव की बहुत सी कथाएं हैं। पहली कथा का उल्लेख हमको एक 1864 ईस्वी का दस्तावेज है जिसमें मिलता है। तो इस दस्तावेज के अनुसार देवगढ़ का जो गोंड राजवंश था वो अपनी वंशावली महाभारत में वर्णित एक राजा है विचित्रवीर, उससे जोड़ते हैं।
0: अच्छा।
1: और कहते हैं कि इस वंशावली की 25वीं पीढ़ी में राजा रूपशाह हुए और इसी वंशावली में 51वीं पीढ़ी में महिपत शाह हुए, 52वीं पीढ़ी में सुरबाशाह और 53वीं पीढ़ी में बीरवान शाह का नाम आता है। और इसी वंशावली की 54वीं पीढ़ी में हमको एक राजा का नाम दिखाई पड़ता है, वो है जाटवा शाह अजानबाहु। तो देवगढ़ के यही प्रतापी राजा हुए हैं जिन्हें हम जाटवा के नाम से जानते हैं।
0: तो ये भी देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात पूजा जी ने हमें बताई कि गोंड राज्य महाभारत से भी संबंधित यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, जो कि निश्चित रूप से पूजा जी और हमें कुछ आगे बताएंगी। और इसके पहले कि हम अजानबाहु जाटवा की बात करें, कैसे वो राजा बने ये बात करें, एक चीज जरूर मेरे ध्यान में आ रही है, मुझे लग रहा है कि मैं आपसे ये जिक्र करूँ श्रोताओं की, देखिये छिंदवाड़ा आज भी कितना हरा भरा है। और पूजा जी ने बताया कि तब जब वो गोंड राज्य वहां पर था तब हरियागढ़ उसका नाम था, तो निश्चित रूप से वो हरियाली के कारण ही वहां पर हरियागढ़ रहा होगा। और फिर छिंदवाड़ा भी जो वहां छींद के पेड़ कहते हैं कि वो जो उसके कारण छिंदवाड़ा नाम पड़ा है। तो पूजा जी अब आगे ये बताइए हमें कि देवगढ़ के गोंड राज्य की 54वीं पीढ़ी में जो जाटवा शाह अजानबाहु हुए वो राजा कैसे बने,
1: जाटवा कैसे राजा बने, इसकी एक लोक कथा हमको मिलती है।
0: जी।
1: कहते हैं कि छिंदवाड़ा और उसके आसपास गवलियों का शासन था।
0: जी।
1: यहां दो गवली भाई थे, एक का नाम था रणशूर और एक का नाम था घनशूर।
0: अच्छा।
1: तो रणशूर घनशूर का यहाँ पर शासन हुआ करता था और जाटवा गोंड जो था उनके यहाँ नौकरी करता था।
0: अच्छा।
1: ऐसा भी मानते हैं कि जाटवा बड़ा शक्तिशाली था, एक दिन क्या हुआ कि किले का जो दरवाजा होता है वो किले में जमीन पर रखा हुआ था, तो जाटवा ने उस भारी भरकम दरवाजे को, लकड़ी के दरवाजे को अपने हाथों से उठा लिया।
0: अच्छा।
1: और ये बात जब रणशूर घनशूर को पता चली तो वो बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि इतना शक्तिशाली किसी व्यक्ति का अपने किले में होना एक चिंता का विषय किसी भी राजा के लिए होता है। अब रणशूर और घनशूर ने एक योजना बनाई। दिवाली के दिन जैसी की परंपरा है, खेल वगैरह होते हैं, शक्ति प्रदर्शन होता है, तो रणशूर घनशूर ने जाटवा को एक लकड़ी की तलवार दे दी और कहा कि ये जो भैंसा है इसको इस तलवार से मार दे।
0: अच्छा।
1: अब जैसी की योजना थी कि तलवार तो लकड़ी की थी, तो जब जाटवा वार करेगा तो भैंसा उल्टा उसको मार देगा। लेकिन जैसे ही वो तलवार जाटवा के हाथ में आई, उसमें तो देवी शक्ति आ गई और जाटवा ने जैसे ही भैंसा पर वार किया उसका वध हो गया। और अगले ही पल
0: जी
1: कहते हैं कि जाटवा हाथी पर विराजमान हुआ और उसने उसी तलवार से रणशूर और घनशूर का वध कर दिया। तो इस तरीके से जाटवा जो है वो देवगढ़ का राजा बना।
0: तो मतलब बाजी यहाँ पर पूरी तरह से उल्टी पड़ गई।
1: हाँ, आज भी जो देवगढ़ का किला है छिंदवाड़ा में, वहाँ पर एक बुर्ज है
0: जी,
1: और इस बुर्ज को देवी का स्थान माना जाता है
0: जी।
1: और जैसा कि आप जानते भी होंगे शायद कि देवगढ़ का जो गोंड राजवंश था उनके वंशज आज भी हैं, नागपुर में निवासरत हैं। तो आज भी उनके यहाँ कोई धार्मिक उत्सव होता है या पूजा पाठ होता है, या जैसे मुंडन हुआ, विवाह के उपरांत की जो संस्कार है, तो वो आज भी वे देवगढ़ आते हैं और इसी बुर्ज पर देवी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं।
0: ये किस तन की बात है पूजा जी, ये कब वो देवगढ़ के राजा बने?
1: अगर हम ऐतिहासिक तथ्यों पर जाएं तो स्पष्ट होता है कि 1584 ईस्वी के आसपास जाटवा जो है देवगढ़ के राजा बन चुके थे। और फिर उनके वंशजों के बारे में भी हमें पता चलता है, और ये भी पता चलता है कि उनका शासन जाटवा का 1620 ईस्वी तक रहा होगा, यानी कि 1584 ईस्वी से लेके 1620 ईस्वी तक। तो देवगढ़ में जो उनके बाद के जो उनके वंशज हुए वो हुए दलशाह, जो 1620 में राजा बने
0: जी।
1: फिर दलशाह के बाद कोकशाह हुए, उनका राजत्व काल आरंभ होता है 1634 से, और इसके बाद केसरी शाह हुए हैं। और इनके बाद के जो राजा हैं उन्होंने भी अपना नाम जाटवा रखा, तो वो जाटवा द्वितीय के नाम से जाने जाते हैं
0: जी।
1: और उनका शासन काल है 1640 से 1657 तक। फिर कोक्षादित्य हुए हैं 1657 से लेके 1687 के बीच में
0: जी।
1: और इसके बाद हमको एक और राजा का नाम मिलता है बख्त बुलंद
0: जी,
1: जो कि 1687 से 1700 ईस्वी तक आते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे राजा हैं जो बहुत शक्तिशाली नहीं रहे, और फिर बाद में देवगढ़ राज्य का विलय नागपुर के मराठा राज्य में हो जाता है।
0: श्रोताओं, हमारे पिछले कुछ एपिसोड्स में भी हमें पूजा जी ने बताया था कि गोंड राज्य के बारे में, रानी दुर्गावती के बारे में आईना इकबरी में स्पष्ट उल्लेख है। और यहाँ भी ये पता चलता है आईना इकबरी से कि राजा जाटवा के पास 2000 घुड़सवार, 50,000 पैदल सैनिक और 1001 से ज्यादा हाथी थे। पूजा जी, ये हाथियों से संबंधित एक कथा जो कि देवगढ़ से जुड़ी हुई है, वो हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को सुनाइए।
1: हाथियों से संबंधित एक बड़ी रोचक कथा देवगढ़ के साथ भी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि देवगढ़ में बहुत से हाथी थे। जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि हाथियों का उपयोग उस समय बहुत जरूरी था, सेना में, यातायात, माल ढोने में, भारी वाहन और या फिर जो सामान को ढकेलने में, निर्माण कार्य में, मनोरंजन, खेल, शान और शौकत सभी में तो हाथियों का उपयोग होता था। तो इसलिए मुगलों की नजर विंध्याचल और सतपुड़ा के वन क्षेत्रों में लगी रहती थी, क्योंकि यहाँ अच्छे किस्म के हाथी होते थे और वो भी ऐसे हाथी जिन्हें गोंड बहुत ही अच्छा प्रशिक्षित किया करते थे। तो हमेशा मुगल चाहते थे कि उनको यहाँ के हाथी मिल जाएं। ये समय है दिल्ली के मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल का। उनका समय था 1634 ईस्वी से 1644 ईस्वी के बीच में
0: जी।
1: और यहाँ पर उस समय जो हमने देवगढ़ के जाटवा राजा की बात की, उनके वंशज थे जाटवा द्वितीय।
0: अच्छा।
1: उनका शासन चल रहा था। तो जाटवा द्वितीय के समय की ये घटना है। कहते हैं कि जाटवा द्वितीय के पास एक बड़ा ही विचित्र हाथी था, जटाशंकर।
0: अच्छा।
1: और उसकी चर्चा बड़ी दूर दूर तक फैल चुकी थी। जब मुगल शासक शाहजहां को उस विचित्र और बलशाली हाथी जटाशंकर के बारे में पता चला, तो शाहजहां किसी भी कीमत पर उस हाथी को हासिल करना चाहते थे।
0: जी।
1: तो उन्होंने अपने संदेश वाहकों को देवगढ़ के राजा जाटवा द्वितीय के पास भेजा और उनसे कहा कि जो भी आपके पास ये विचित्र हाथी है जटाशंकर, वो हमें दे दें। लेकिन जाटवा द्वितीय ने उन्हें कहलवाया कि उनके पास ऐसा कोई हाथी नहीं है।
0: अच्छा।
1: लेकिन शाहजहां उनकी इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ और वे बार बार संदेश भिजवाते रहे और हर बार जाटवा द्वितीय इस बात से इनकार करते रहे कि उनके पास किसी भी प्रकार का कोई भी जटाशंकर नाम का कोई विचित्र हाथी है।
0: जी।
1: अब बात आगे बढ़ गई। हाथी के लिए मुगल शासक कितना व्याकुल था, इसका हमें पता चलता है जब शाहजहां और उनका जो बेटा था औरंगजेब,
0: जी,
1: दोनों के बीच में 5 पत्र इस संबंध में लिखे गए हैं।
0: अच्छा।
1: जो अब ऐतिहासिक दस्तावेज हैं।
0: जी।
1: तो उस समय जब शाहजहां दिल्ली के शासक थे तो उनका जो शहजादा था औरंगजेब, वो दक्कन का वायसराय था।
0: जी।
1: इसलिए औरंगजेब दक्कन और उसके आसपास के मामले देखा करता था।
0: जी।
1: तो देवगढ़ भी उसी क्षेत्र के आसपास था, देवगढ़ पर भी औरंगजेब ही नजर रखा करता।
0: अच्छा।
1: था। तो शाहजहां ने औरंगजेब को पत्र लिखकर सूचित किया कि देवगढ़ के राजा जाटवा के पास जटाशंकर नाम का एक विचित्र हाथी है और वह इसे कैसे भी प्राप्त करके दिल्ली ले आए। ये 5 पत्र जो हैं, ये आदाबे आलमगिरी में संग्रहित हैं।
0: अच्छा।
1: और इन पत्रों को अंग्रेज विद्वान विल्स ने अनुवाद किया है।
0: तो क्या उन पत्रों का, उन खतों का जो भी मजमून था, वो कुछ पता चल सका है कि उनमें क्या लिखा था?
1: बिल्कुल। तो जैसे पहला पत्र है, तो पत्र औरंगजेब ने लिखा है शाहजहां को और उसने कहा कि आपने जैसा कि संदेश भिजवाया था, हमने देवगढ़ से 170 हाथी हासिल कर लिए हैं।
0: अच्छा।
1: इनमें से कोई सा भी हाथी जटाशंकर नहीं है। अभी भी उसके पास, यानी देवगढ़ के राजा के पास, 200 हाथी और हैं। इनमें से कौन सा हाथी जटाशंकर हो सकता है, हमें नहीं पता। आगे वह लिखता है कि मैंने एक अधिकारी को देवगढ़ यह पता लगाने के लिए गुप्त रूप से भेजा था कि देवगढ़ में अब कितने हाथी हैं और जटाशंकर उनमें से कौन सा हाथी है, लेकिन वह अधिकारी 3 माह वहां छुप कर रहा और आखिर तक उसे जटाशंकर नाम का कोई हाथी प्राप्त ही नहीं हुआ।
0: अच्छा।
1: फिर वह आगे लिखता है कि यह उचित होगा कि महामहिम शाहजहां, जिसने भी आपको जटाशंकर हाथी के बारे में जानकारी दी थी, उस व्यक्ति से ये पता करें कि उसे ये जानकारी कहां से कैसे मिली, तो फिर मैं जटाशंकर को ढूंढ पाऊंगा।
0: ये तो भाई हाथी ना हो गया, रहस्य हो गया। ऐसा लग रहा है हाथी नहीं, ये सुई ढूंढ रहे हैं और वो सुई इन्हें मिल नहीं रही। तो फिर क्या हुआ, क्या कोई और पत्र ऐसा मिलता है बाकी के, जो आपने 5 पत्रों का जिक्र किया, क्या अगले पत्रों में कुछ जिक्र हुआ कि जटाशंकर वास्तव में था या नहीं, मिला या नहीं?
1: दूसरा पत्र शाहजहां का है।
0: जी।
1: और जिसमें वह फिर से जटाशंकर और अन्य हाथियों की जानकारी मांगता है। तीसरे पत्र में शहजादा औरंगजेब लिखता है कि वह चांदा के शासक से जटाशंकर के बारे में पता लगाने के लिए मदद ले रहा है, यानी दूर दूर तक के ये पता किया जा रहा है कि देवगढ़ में जटाशंकर नाम का हाथी है क्या, और है तो कैसे मिलेगा। उसने देवगढ़ में भी चप्पे चप्पे पर अपने गुप्तचर लगा दिए हैं और जल्दी ही इस मामले में सफलता मिलेगी, उसने इस पत्र में ऐसी आशा व्यक्त की है। लेकिन तब भी जटाशंकर हाथी के बारे में औरंगजेब कुछ भी पता नहीं लगा पाया। तब औरंगजेब ने चौथे पत्र में लिखा कि मुझे अपने पत्र का जवाब आपसे प्राप्त हुआ है, आपने पत्र में निर्देश दिया है। ये पत्र वो शाहजहां को लिख रहे हैं, अपने पिता को लिख रहे हैं।
0: जी, जी।
1: और उसमें वो लिखते हैं कि शाहजहां को, कि आपने पत्र में निर्देश दिया है कि देवगढ़ के जमींदार से पूरा कर वसूल कर लिया जाए।
0: जी।
1: और जटाशंकर नाम के हाथी के अलावा भी जितने हाथी हैं, सभी हाथियों को अपने कब्जे में ले लिया जाए। आपके आदेशानुसार मैंने मिर्जा खान और हदीदा खान को रवाना कर दिया है। ऐसी आशा है कि हमारी कोशिशों से जल्दी ही सफलता मिलेगी और देवगढ़ के सभी हाथी हमारे कब्जे में होंगे।
0: भाई वाह, ये तो मतलब बहुत ही विचित्र वाकई घटना, हाथी से भी विचित्र घटना तो ये लग रही है। ये इतिहास के जो हमें दस्तावेज हैं, जो ये पत्र हैं, जो पिता पुत्र के बीच में मुगल शासक शाहजहां और औरंगजेब के बीच जो बातचीत हुई है, तो श्रोताओं को भी बहुत ज़्यादा अब यहाँ पर क्यूरियोसिटी हो रही होगी और मैं भी बहुत उत्साहित हूँ कि आखिर वो हाथी मिला या नहीं हुआ। अब पांचवें पत्र का राज भी आप खोल ही दीजिए।
1: जी हाँ, जैसे इस चौथे पत्र से पता चल रहा है कि एक हाथी को पाने के लिए किस तरीके से देवगढ़ पर कर भी लगाया गया और उससे वसूला गया, वो भी देखने लायक है। लेकिन जब आखिरी इस पांचवें पत्र से हमें पता चलता है कि मुगल सेना देवगढ़ के सारे हाथियों को हकाल कर ले गई, लेकिन उन्हें जटाशंकर फिर भी नहीं मिला।
0: अच्छा, तो मतलब अभी भी आज ये रहस्य है कि वो वाकई कोई जटाशंकर नाम का विचित्र हाथी था भी या नहीं,
1: या देवगढ़ उसे बचा के ले गया।
0: तो देखिए, इस राज से तो अभी भी पर्दा नहीं हटा है, लेकिन ये किस्सा बहुत दिलचस्प था और साफ इस बात से ये भी पता चलता है कि उस समय कोई भी शासक रहा हो, जबकि शाहजहां दिल्ली पर राज कर रहे थे, मुगल शासक थे, इतिहास में इतना बड़ा नाम आता है, पर वो एक विचित्र हाथी के चलते न सिर्फ उन्होंने पूरे गढ़ा राज्य पर वहां पर बहुत सारा कर लगा दिया, बल्कि एक हाथी को पाने के लिए जितने भी हाथी जाटवा द्वितीय के पास थे वो सब उन्होंने हड़प लिए। तो इससे ये जरूर समझ में आता है कि पशुधन उस समय कितना महत्वपूर्ण होता था, और वो भी हाथी जैसा पशु जो न सिर्फ शक्तिशाली था बल्कि वो युद्ध नीति में, युद्ध कला में काम आता था, क्योंकि वो ज्यादातर प्रशिक्षित होते थे और वो किसी भी राजा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संपत्ति हो सकते थे। पूजा जी, इस बारे में आपसे थोड़ा सा कुछ और जानना चाहेंगे।
1: जी हाँ, ये जो मध्यकाल है इसमें हाथियों का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि यदि आपको व्यापार करना है तब भी माल ढोने के लिए बड़े बड़े हाथियों की आवश्यकता होगी, और हाथी शक्तिशाली होते हैं, लंबे समय तक सफर भी कर पाते हैं, यद्यपि धीमे चलते हैं, लेकिन प्रशिक्षित होने के कारण उनके साथ का व्यवहार आसान होता है। तो हम देख ही रहे हैं कि गोंड राज्यों के आपस में दूसरे राज्यों के साथ व्यापारिक संबंध है, हमने गढ़ा के संबंध में भी देखा
0: जी।
1: इसके अलावा युद्ध में तो प्रयोग हो ही रहे हैं, हाथी उस समय सेना का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग था
0: जी।
1: और साथ ही हाथियों का उपयोग निर्माण कार्य में भी बहुत हो रहा था।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: जो मंदिर, महल, किले वगैरह बनते थे उनके जो माल को ढोने के लिए,
0: सामग्री पहुंचाने के लिए, या ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए,
1: ऊंचाई तक पहुंचाना है, या बड़े बड़े जो पाषाण खंड हैं
0: जी,
1: उनको रोलर की सहायता से जो धक्का देकर ले जाया जाता था उसके लिए भी हाथियों का बहुत ही उपयोग होता था। हम मुगल काल की यदि मिनिएचर पेंटिंग्स को भी देखें जिसमें कि किलों का निर्माण हो रहा है या कोई युद्ध का सीन है, तो उसमें भी बहुसंख्या में हमको हाथी नजर आते हैं
0: जी।
1: तो हाथियों का बहुत सारा उपयोग था। और हाँ, इसके अलावा मनोरंजन में भी हाथियों का बहुत ही उपयोग होता रहा, उनसे विविध प्रकार के खेल दिखाना या उनके ऊपर बैठकर तलवारबाजी करना या दूसरे तरीके के खेल। इसके साथ ही जो शाही सवारियां होती थी उसमें भी हाथियों का बड़ा ही उपयोग था। हम लोग देखते हैं ना कि बड़े ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर किले होते हैं
0: जी,
1: और उन किलों पर चढ़ना इतना आसान तो नहीं था, आज भी नहीं है। तो शाही सवारियां जब किलों पर चढ़ती थी तो वो हाथी पर पालकी रखकर ही जाया करते थे, तो उसके लिए भी बड़े उपयोगी थे हाथी।
0: अच्छा, एक एक एक और सवाल जहन में आ रहा है पूजा जी, कि बहुत सारे हम किलों की तरफ, महलों की तरफ जाते हैं तो द्वार पर हाथी जरूर वहां पर बने होते हैं, अंकित होते हैं, या फिर दोनों तरफ होते हैं। क्या सिर्फ हाथी, क्योंकि शुभता का प्रतीक भी कहे जाते हैं, सिर्फ इसलिए, या फिर कोई और इसके पीछे राज है?
1: जी हाँ, हाथी शुभ तो है ही, इसके साथ ही हाथी राजसी शक्ति का भी प्रतीक है
0: जी।
1: इसलिए ज्यादातर जगहों पर हमको द्वारों पर हाथियों की प्रतिमाएं मिलती हैं। देवगढ़ का किला जो है उसमें तो एक हाथी द्वार भी है।
0: अच्छा,
1: जिसके बारे में हम आगे जानेंगे।
0: बिल्कुल, हाथी द्वार, हाथी खाना, कितनी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो इतिहास के पन्नों में हमें समझ में आती हैं, हमें दिखाई देती हैं, हम उन्हें पढ़ पाते हैं इतिहास के पन्नों से। कार्यक्रम चल रहा है और पूजा जी, प्रसिद्ध पुरातत्वविद, हमें देवगढ़ के बारे में बता रही हैं, जाटवा के बारे में उन्होंने बताया, गोंड शासक जाटवा और जाटवा द्वितीय की कहानी चल रही थी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प बात आज उन्होंने बताई। उस राज से तो पर्दा इतिहास के जो दस्तावेज है उसके जरिए भी नहीं हट पाया है, लेकिन पूजा जी से जानेंगे हम अपने अगले एपिसोड में कि देवगढ़ की जो स्थापत्य शैली थी वो किस तरह की थी, जो नगरीय नियोजन था वो किस तरह का था, क्योंकि आज समय हो गया है कार्यक्रम में आपसे विदा लेने का। तो पूजा जी को हम धन्यवाद देते हैं। पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी दिलचस्प जानकारियां देने के लिए।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपसे मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाजत। कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से आज का अंक यहीं समाप्त होता है। परिकल्पना और निर्देशन इस कार्यक्रम का सुश्री अदिति गौड़ का है, ध्वनि अंकन और ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, और मुझे यानी अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। इतिहास के पन्नों से, इतिहास के
2: पन्नों। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। अगले कार्यक्रम की कीजिए प्रतीक्षा, बस एक अंतराल के बाद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: स्वस्थ जीवन का आधार है स्वस्थ मन, मस्तिष्क और शरीर। योग हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखता है और मन मस्तिष्क को भी संवारता है, सहेजता है और उसे सुदृढ़ बनाता है। इसी विषय पर आधारित प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम योग संवाद।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन योगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, भारतीय चिंतन परंपरा कहती रही है कि माटी का ये तन माटी में ही मिल जाएगा। वसंत की तरह यौवन के साथ ही पतझड़ की तरह उजाड़ भी इस शरीर का सच है। जो शरीर आज यौवन के गर्व से भरा है, वही कल समय के स्पर्श से बदल जाएगा। जो मुख आज सौंदर्य का दर्पण प्रतीत होता है, वो भी एक दिन काल के प्रवाह में अपनी चमक खो देगा। परिवर्तन ही इस देह का स्वभाव है और नश्वरता ही इसका अंतिम सत्य है। योग वासिष्ठ के वैराग्य प्रकरण में आज आप सुनेंगे श्री राम के उन गंभीर और हृदय स्पर्शी विचारों को, जिनमें वो शरीर के मोह पर प्रश्न उठाते हैं। संसार जिस देह को अपना सर्वस्व मानकर उसके लिए संघर्ष करता है, भगवान श्री राम उसी देह की असारता का विवेचन करते हैं। वो देखते हैं कि ये शरीर मिट्टी, जल, वायु और अन्य तत्वों का एक क्षणिक संगठन मात्र है। रोग, जरा और मृत्यु इसके अनिवार्य साथी हैं। फिर भी मनुष्य इसी नश्वर देह में अमरता खोजता है, इसी क्षणभंगुर रूप में स्थायित्व का स्वप्न देखता है। भगवान श्री राम की दृष्टि में देह एक साधन है, साध्य नहीं है। देह एक आवरण है, आत्मा नहीं है। इसलिए वो बाहरी रूप के मोह से ऊपर उठकर उस शाश्वत सत्य की ओर देखने का आह्वान करते हैं, जो जन्म और मृत्यु दोनों से परे है। तो आइए सुनते हैं योग वासिष्ठ का ये गहन वैराग्यमय प्रसंग, जहां भगवान श्री राम की वाणी हमें देहाभिमान के बंधनों से मुक्त होकर आत्मस्वरूप की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देती है, जहां नश्वरता के चिंतन से निराशा नहीं बल्कि सत्य की खोज का प्रकाश जन्म लेता है। आज इस बातचीत के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
3: नमस्कार।
2: आज हम बात करेंगे भगवान श्री राम की वैराग्य दशा में शरीर की निंदा पर। पिछले अंक में हमने तृष्णा की निंदा पर बातचीत की थी, अब शरीर पर हम बात करने जा रहे हैं। सच तो ये है कि शरीर के सुख की आकांक्षा सभी को होती है, सुख के भोग का माध्यम शरीर माना जाता है
3: जी।
2: लेकिन क्या वास्तव में शरीर भोगता है सुखों को? किससे भोग होता है?
3: आपने बहुत आनुभविक प्रश्न किया। हम ये कहेंगे कि हमारे श्रोता जितने भी हैं, जरा एक बार अपने अनुभव पर अपना दृष्टिपात करें, तो आपको ये लगेगा कि सुख की आकांक्षा

0: राम जी कहते हैं, राम जी की दृष्टि इसमें कहते हैं ना, राम जी की दृष्टि, कबीर साहब ने तो कहा कि राम जी घट घट में बसते हैं, घट घट व्यापे राम
1: जी,
0: है ना
1: जी, जी।
0: कहते हैं एक राम हर घट में लेटा। तो उस राम की दृष्टि देखिए कैसी है। वो राम कहते हैं कि महामुने जो मैंने शरीरधारियों को देखा, गीली आंत जिसमें मल मूत्र की थैलियां हैं। आप देखिए हमारे एक, हम एक बहुत बड़े संत का जब सत्संग कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि संसार का पवित्र से पवित्र वस्तु भी शरीर के स्पर्श से अपवित्र हो जाता है। जैसे भोजन तब तक जूठा नहीं है जब तक आपने उसे चखा नहीं,
1: बिल्कुल।
0: आपने जिह्वा को जैसे स्पर्श दिया वो मतलब अशुद्ध हो गया। तो ऐसे में चाहे कितना भी पवित्र वस्तु शरीर में डालो, पानी आपने गंगा जल ही आप पी लीजिए लेकिन वो मूत्र बन के ही तो निकलेगा,
1: बिल्कुल
0: है ना। कितना भी स्वादिष्ट कुछ खाइए वो मल बन के निकलेगा। तो वो कहते थे कि ये मल मूत्र बनाने की मशीन है और इससे प्रेम लोग करते हैं, है ना। तो एक प्रकार की देखें, ये कहेंगे कि एक प्रकार का शरीर को नकारना हुआ, नकारना नहीं है, ये शरीर के प्रति सावधान होने की आवश्यकता है। जैसे ये शरीर ही हमें बहुत सारे दुखों में भी ले जाता है।
1: जी, जी,
0: हम दुखी भी क्यों हैं? शारीरिक चिंतन की वजह से, मस्तिष्क के क्रियाकलापों की वजह से, अपने पूर्व की स्मृतियों या भविष्य की योजनाओं की वजह से हैं।
1: जी, जी।
0: तो ऐसे में ये सब शारीरिक ही तो है, देखे तो चिंतन भी शरीर से ही होता है, है ना। तो राम जी कहते हैं नाड़ियों से भरा हुआ है, नाना प्रकार के विकारों से युक्त और अंत में पतनशील है, जिसको आपने अभी कहा भी कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम, ये विवेकवान देखते हैं लेकिन जिनके अविवेक नहीं है वो इस जन्म लेने वाले शरीर को अमर देखते हैं, अमर बनाने की कोशिश में है। मैंने तो कई बार सुना कि मतलब अमरता के लिए मतलब लोग सोचते हैं कि शरीर अमर हो जाएगा, जबकि ब्रह्मा जी ने अपनी कथाओं में, पौराणिक कथाओं में आपने सुना भी होगा हिरण्यकश्यप की कथा, जब हिरण्यकश्यप तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लेता है तो कहता है कि मुझे कोई मार ना सके, यही बार मांगा उसने। अब आप देखिए ये हिरण्यकश्यप नहीं, हर वो व्यक्ति जो मरना नहीं चाहता सब हिरण्यकश्यप की तरह,
1: रावण भी
0: जी। और उसने इतना तप किया कि ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका नाम ही मृत्यु लोक है, यहाँ जो भी आया है मरेगा, तो इसको छोड़ करके तुम्हें जो मांगना है मांग लो। वो भी चालाकी किया, कम होशियार नहीं था, बौद्धिक चिकित्सा। देखिए यहाँ पर दिखाया ही जा रहा है कि बुद्धि कैसे खेलती है।
1: जी, जी,
0: तो
1: जी।
0: उसने क्या किया कि मृत्यु के जो जो कारण हो सकते हैं उन सारे कारणों को उसने मिटा देने की कोशिश की कि न मुझे मनुष्य मारे, न पशु मारे, न हम दिन में मरे, न रात में मरे,
1: न घर में मरे,
0: न जमीन पर, न आसमान।
1: जी।
0: तो भगवान, उन्होंने कहा तथास्तु तथास्तु, तो कहते हैं वो नरसिंहा होता,
1: बिल्कुल
0: कैसी मृत्यु हुई।
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: मृत्यु नहीं टाली जा सकी, लेकिन कथा सुनने के बाद भी लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं होता और वो जीवन भर इसी शरीर की चिंता में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। जबकि जब तक आपके पास शरीर मिला था, अगर आप सत्कर्मों की बात करते, उसके सदुपयोग की बात करते तो शायद श्रेष्ठ होता। इसी शरीर से आपने कितने निकृष्ट कर्म किए हैं, किए जा रहे हैं, कैसा चिंतन हम कर रहे हैं, सच्चिंतन करें, सत्संग करें।
1: जी जी जी।
0: वो स्वामी जी ने कितना सुंदर लिखा रामचरित मानस के कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। लेकिन शरीर से आप असत का संग करने में लगे हैं, तृष्णा को पूरा करने में लगे हैं, जड़ पदार्थों को ही आप चेष्टा बनाए हुए हैं अपने शरीर का। राम जी कहते हैं कि इस शरीर से एक ही चीज भोगा जाता है, सिर्फ दुख, सुख नहीं भोगा जाता। अब संसार क्या करता है, संसार शरीर से सुख भोगता है। कितनी उल्टी दृष्टि,
1: तो शरीर को लेकर ये दृष्टि है श्री राम की।
0: नहीं, ये दृष्टि श्री राम की नहीं है। ये तो उन्होंने कहा कि शरीर से, तो उनका जीस्ट है, कह सकते हैं ये सारांश है कि इससे सिर्फ दुख भोगा जा सकता है। पहले तो आगाह करते हैं लोगों को वो कि भैया तुम जो ये समझ रहे हो कि शरीर से सुख भोगोगे, सुख नहीं देता शरीर। शरीर से सुख तभी तक है जब तक शरीर के संपर्क में नहीं आया, शरीर के संपर्क में आते ही वो दुख का भोग बन जाता है। और राम जी कहते हैं कि यह शरीर सिर्फ दुख भोगने के लिए ही है। आपने जब प्रश्न किया कि इसको कैसे देखते हैं, तो वो कहते हैं कि इसकी दशा जरा देख लो कि शरीर कैसा है तुम्हारा। थोड़े से खान पान आदि से आनंदित हो उठता है।
1: जी।
0: यही है कहानी। हर दिन हम टेस्ट बदलने के लिए कहां कहां जाते हैं। तो ये है कहानी। कहते हैं थोड़े से शीत और उष्ण से ये खिन्न हो जाता है। अतः इस शरीर के समान गुणहीन, शोचनीय और अधम कोई दूसरा है ही नहीं।
1: अच्छा जी।
0: और शास्त्रों में कहा था कि शीत उष्ण को सहिए, और मनुष्य क्या करता है, थोड़े से ताप बढ़ने में, थोड़ी सी बेचैनी में वो परेशान होता है। तो परेशान किस लिए होता है? शरीर से तो होता है। अभी आजकल गर्मी खूब पड़ रही है
1: जी, जी, जी।
0: तो आदमी गर्मी के तारे बहुत गर्मी हो गई, थोड़ी सी ठंड बढ़ती है तो ठंड बहुत बढ़ गई, थोड़ी बरसात होने लगे बढ़ गई, तो उससे भी खिन्नता। तो शरीर अंततः आपको करता क्या है? खिन्न ही तो करता है।
1: बिल्कुल।
0: तो शांत कहाँ हो रहे हैं आप शरीर से? तो राम जी शरीर को ऐसे देखते हैं, कहते हैं कि ये गुणहीन है, सोचने योग्य है और अधम है, और हम लोग इसको सर्वस्व मान के बैठे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शशिकांत जी, इसी ग्रंथ में मैंने देखा कि एक जगह शरीर को जीव और ईश्वर रूपी पक्षियों का घोंसला कहा गया
0: जी।
1: इसे थोड़ा सा समझाएं हमारे सुनने वालों के लिए।
0: बहुत सुंदर कहा आपने। इसको समझाने के लिए मैं फिर वेदांत का सहारा लूंगा, क्योंकि ये ग्रंथ जो है अद्वैत दर्शन का ग्रंथ है। वेदांत में कहते हैं कि ब्रह्म जब माया से युक्त होता है

0: भी दिखता है, जैसे जैसे मतलब कहते हैं ना जो इंद्रधनुष भी आकाश में आपको दिखाई देता, सतरंगी भी दिखता है
1: जी, जी।
0: तो जो दिखता है वो है नहीं। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि जो माया से ये सृष्टि जो हुई है ये ईश्वर इसका नियंता है। इसीलिए ऋषियों ने वेद में देवताओं की पूजा की है, अग्नि की पूजा की है, वायु की पूजा की है, प्रकृति की पूजा की है, क्योंकि प्रकृति में वो शक्ति है। अगर आप देखें सूर्य न हो, आज जैसे हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं, तो इस जगत में जो ऊर्जा दिखाई दे रही है विभिन्न जीवों में वो किसकी है? सूरज की है।
1: सूरज की।
0: सिर्फ सूरज न हो तो आप वनस्पतियों की कल्पना नहीं कर सकते, वनस्पतियां ना हो तो ऑक्सीजन की कल्पना नहीं कर सकते, कोई जीव होगा ही नहीं, जीवन की ही कल्पना नहीं हो सकती। तो ऐसे में आदित्य की पूजा, सविता की पूजा
1: जी
0: होती है। तो वो कहते हैं कि ये जो देवता है जिसमें शक्ति है, तो जब ब्रह्म माया की शक्ति से युक्त होता है तो वो ईश्वर बन जाता,
1: ईश्वर हो जाता है।
0: और जब ब्रह्म अविद्या के आवरण से ढक जाता है, अविद्या के विच्छेद से, मतलब वो नहीं देख पाता सत्य को, तो जीव बन जाता है, जिसको आचार्य शंकर कहते हैं कि जीवो ब्रह्म ही बना पर, जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, है ना। तो यहां पर जो कहा कि ये शरीर रूपी यानी मानव का जो शरीर है, इसी शरीर पर जीव और ईश्वर रूपी पक्षी घोंसला बना के रहते हैं। इस जगत में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो जीव और ईश्वर को जानता है, अन्यथा किसी भी जीव को ईश्वर और जीव की और ब्रह्म की कल्पना भी नहीं है,
1: नहीं।
0: वो अपना जीवन सिर्फ जीते हैं।
1: जी जी जी,
0: मनुष्य ही है।
1: हाँ।
0: क्योंकि मनुष्य के लिए ये शास्त्र है, इसलिए भगवान मनुष्य के अवतार में आए हैं, है ना, और आए हैं तो उनको योग वासिष्ठ की शिक्षा दी जा रही है, जबकि उनके अवतारों में मत्स्यावतार भी है, वाराह अवतार भी है, वहां योग वासिष्ठ नहीं पढ़ाया गया है, है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये मनुष्य के लिए है।
1: जी जी जी,
0: इसलिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आप भी शास्त्र का अध्ययन करती हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस बात का कि जीव और ईश्वर रूपी जो पक्षी है इस मनुष्य के शरीर पर ही ये घोंसला बना के रहते हैं, और इन्हें हमें समझना होगा। और जैसे ही इन्हें जीव और ईश्वर को आप समझेंगे, आप अपने ब्रह्म स्वरूप को भी जान लेंगे और ब्रह्मानंद से भर जाएंगे और जीवन मुक्त की तरह व्यवहार भी करने लगेंगे, जिसके लिए ये वासिष्ठ राम जी को सुनाया जा रहा है।
1: अच्छा, शुभ और अशुभ की चर्चा बहुत होती है, किसके फल हैं ये?
0: शुभ और अशुभ जो फल हैं वो शरीर के फल हैं। ये शरीर से जो कर्म होता है उसी कर्म का परिणाम बनता, उसी कर्म का तो फल बनता है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, कर्मण्ये वा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भुर् मा संगोस्तु कर्मणि। जो भगवान कह रहे हैं ये उसका उत्तर आपने इस प्रश्न को पूछ करके मतलब देने के लिए प्रेरित किया। वो कहते हैं कि जो भी फल है शुभ और अशुभ कर्म का फल है, तो कर्म शरीर से होगा, शरीर कर्म के बिना होगा नहीं। तो जो आपने कहा कि फल भी जो होगा वो, आप जब फल प्राप्त हो तो फल पर विचार मत करो, कर्म पर विचार करो, ये भगवान कहते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे अधिकार में था। और हम लोग क्या करते हैं, फल पर विचार करते हैं, कर्म पर विचार नहीं करते। इसी को कई लोग संत कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से खाए। कर्म आपने अगर अशुभ किए हैं
1: जी, जी,
0: तो
1: जी,
0: फल कैसे आपको आनंददायक मिलेगा, और कर्म आपने अगर श्रेष्ठ किए हैं तो उसका फल दुखद नहीं हो सकता। इसलिए जो ज्ञानी पुरुष है वो हमेशा आनंद में होता है, क्योंकि वो सजग वही है, वो बीज के वक्त सजग है, जानता है मैंने आम बोया है तो इसमें कांटे नहीं आने वाले, इसमें फल ही आएगा। और जो अन्य लोग हैं वो कर्म पर सावधान नहीं होते, इसलिए परिणाम से हमेशा दुखी रहते हैं।
1: जी, अच्छा, अहंकार जो है
0: जी
1: हर मनुष्य के भीतर होता है, ये बात होती है, तो इसके रहने का स्थान कहाँ है?
0: भगवान राम कह रहे हैं कि सुख दुख रूपी फल जो है इस शरीर के द्वारा मिलते हैं, और उस सुख दुख रूपी फल का जो भोगता है वो अहंकार है। आप कहते भी ना कि मुझे दुख हुआ, मुझे सुख हुआ, तो जब आप उस फल के साथ अपनी आइडेंटिटी जोड़ते हैं
1: जी, जी, जी।
0: तो वो अहंकार जोड़ता है। तो भगवान राम कहते हैं महर्षि से, कहते हैं कि हे मुने, इस शरीर ये जो है ये अहंकार रूपी गृहस्थ का विशाल गृह है। अब देखिए, जो हम लोग कहते हैं गृहस्थ कौन है, जो गृह में रहता है, है ना, तो जो ये गृह जो शरीर है इसका गृहस्थ कौन है? अहंकार। इसमें अहंकार रहता है, और भोगता क्या है, वो सुख दुख भोगता है। तो कहते हैं कि शरीर का फल सुख दुख है, और इसका जो गृहस्थ है वो अहंकार है। तो अहंकार अगर ना हो तो सुख दुख भी ना हो। आप कभी भी कोई सुख या कोई दुख बिना अहंकार के आप उसके भोगता नहीं हो सकते,
1: नहीं हो सकते, बिल्कुल।
0: आप कभी विचार करके देखिएगा, जिससे आपने सम्मान की अपेक्षा नहीं की वो आपको अपमानित भी नहीं कर सकता।
1: बिल्कुल,
0: जिससे आपने सुख की कामना नहीं की वो आपके दुख का कारण कभी नहीं हो
1: सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल, बिल्कुल।
0: दुख का कारण तभी कोई बनेगा जब आपके सुख की कामना हो, है ना। तो ये देखें, ये शरीर पर दो ही फल लगते हैं, सुख और दुख के, और उसका भोक्ता जो है इस गृह में रहने वाला गृहस्थ अहंकार है।
1: अहंकार है, बहुत ही सुंदर। जी जी जी। अच्छा, शरीर को सुदृढ़ कौन करता है फिर?
0: देखिए, शरीर को सुदृढ़ जो करता है वो चित्त करता है, जिस चित्त में असंख्य वृत्तियां हैं। महर्षि पतंजलि ने तो योग सूत्र में कहा कि इस चित्त में असंख्य संस्कार हैं, वृत्तियां हैं, और उन्हीं वृत्तियों का जो निरोध है वो योग है। वो ये नहीं कहते कि योग किसी वृत्ति का निर्माण है। आप मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि हमारे आर्ष ग्रंथों को, शास्त्रों को लोग इतने सतही स्तर पर समझने समझाने लगे हैं।
1: जी, जी,
0: ये पीड़ा देता है। अब वो जब उन्होंने कहा कि योगस चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है, तो लोगों ने इस परिभाषा की एक वृत्ति बना ली और वो सोचते हैं कि ये योग है और इसको बताते फिरते हैं, रट लिया उन्होंने योगस चित्त वृत्ति निरोध। जो आपने ये सवाल किया कि इसको सुदृढ़ कौन करता है, ये चित्त करता है और चित्त की वृत्तियां करती हैं। क्योंकि चित्त में चेतना का प्रकाश प्रकट न हो उसका कारण कौन है? वृत्तियां। ठीक है, तो ये वृत्तियां, अब राम जी को ये दिख रहा है, राम जी योगी हैं, वो कह रहे हैं कि चित्त रूपी भृत्य ने नाना प्रकार की अनंत चेष्टाओं द्वारा इसको सुदृढ़ कर रखा है शरीर को, और चित्त को उन्होंने नाम क्या दिया? भृत्य नाम
1: दिया।
0: और हम लोग चित्त को स्वामी बना के बैठे हैं, चित्त हमारा स्वामी है, जैसी वृत्ति लाता है वैसा हम कर बैठते हैं, वैसा ही विचार करते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा भी, जो तुम विचार करते हो तुम हो जाते हो। तो हमारे चित्त में जैसी वृत्ति उत्पन्न हो गई वैसा विचार करने लगे, उसी विचार के हिसाब से हमारी भावनाएं भी डेवलप हो गई और हम उसी को पूरा करने में सुखी दुखी हो रहे हैं। तो ऐसे में वृत्ति को जब स्वामी बना लेंगे आप, तो क्या होगा?
1: यही होगा।
0: तो ऐसे में कहते हैं कि जो विवेकवान है, जिसको विवेक से वैराग्य उत्पन्न हो रहा
1: जी,
0: है
1: जी।
0: वो चित्त को देख रहा है कि ये चित्त स्वामी नहीं है, इसका स्वामी कोई और है,
1: कोई और,
0: और इस गृह में रहने वाला जो गृहस्थ है वो भी अहंकार बन के बैठा है। जबकि सच ये देखें तो इन सबको जो ऊर्जा मिल रही है उस चेतना से मिल रही है, उस परम तत्व से, जिसको आपने कहा ईश्वर और जीव रूपी जो घोसला है, तो ईश्वर में भी ब्रह्म है, जीव में भी ब्रह्म है, और माया और अविद्या के बिना ब्रह्म तो ब्रह्म ही है। तो ऐसे में इस शरीर से एक ही चीज को उद्घाटित करने की जरूरत है, जिसको गोस्वामी जी कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अपाहि नजेहि परलोक संवारा। वो कितना दुर्भाग्यशाली है कि जिसने इसको पाने के बाद, जो मोक्ष का द्वार है, उसको पाने के बाद भी वो बंधन में ही अपने जीवन को व्यतीत कर दे। अबलो नसानी अबना नसही हो, क्या लिखते हैं, नाश में ही नाश कर रहे हैं हम इस शरीर का, है ना। देखें तो ये परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है, जो कहते हैं कि सुर दुर्लभ सद ग्रंथ है यहाँ गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो ये तन पाने के क्या ये अवसर एक पशु को मिल सकता है? अभी जो हम लोग आज ये बात कर रहे हैं, जो हमारे श्रोता सुन रहे होंगे, क्या ये किसी और जीव पर अपना प्रभाव छोड़ सकता है? मनुष्य के लिए है। तो उसके बाद भी मनुष्य अगर अशांत है और इतने तत्व चिंतन से भरे हमारे शास्त्र हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्य है, ये भाग्य नहीं है मनुष्यतन का।
1: तो भगवान श्री राम शरीर को उस स्थिति में देख रहे हैं जिस स्थिति में देखा जाना चाहिए।
0: जी,
1: तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि फिर शरीर मनोरम क्यों प्रतीत होता है?
0: आपने बहुत सुंदर सवाल किया, मुझे लगता है कि आप ठीक से पढ़ती होंगी इसे। राम जी ने शरीर को, देखिए शरीर के द्वारा जो हम विषयों का भोग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? मोह के कारण कर रहे हैं, तृष्णा के कारण कर रहे हैं। राम जी कहते हैं कि इस शरीर में मनोरम की प्रतीति, यानी मन को हर लेने की प्रतीति। अच्छा, एक बात कभी आप विचार करके देखिए, मन का हरण कहाँ होता है? विषयों से कभी मन का हरण नहीं होता। विषय तो मन में यज्ञ की अग्नि की भांति आग प्रज्वलित करते हैं। विषय का भोग हमेशा विषय के भोग के प्रति आपको प्रेरित करता है। मनोरम इस शरीर में एक ही स्थान है, वो है निद्रा।
1: अच्छा,
0: हाँ, राम जी की दृष्टि देखिए।
1: जी जी,
0: जबकि निद्रा में आपको शरीर का भी ज्ञान नहीं होता।
1: नहीं होता। हाँ, हाँ।
0: किसी भी मनुष्य को मनुष्य होने का ज्ञान निद्रा में नहीं हो सकता,
1: नहीं हो सकता।
0: या मनुष्य होने के ज्ञान के साथ नींद नहीं आ सकती कभी किसी दिन।
1: और अभी हम लोगों ने पिछले अंकों में बात भी की है कि निद्रा यानी एक अस्थायी मृत्यु।
0: हाँ, तो राम जी की दृष्टि देखिए, कहते हैं एक ही मनोरम स्थान है शरीर में, वो है निद्रा।
1: अच्छा,
0: और मांडुक्य उपनिषद में निद्रा को प्राज्ञावस्था कहा गया।
1: प्राज्ञावस्था
0: कि आप देखें तो उस समय आप ये जड़ पदार्थों के ज्ञान से मुक्त होते हैं। निद्रा आप रोज शयन करते हैं, स्वप्न भी आता है सोने में।
1: जी जी,
0: लेकिन स्वप्न

0: नींद में जाने के लिए आप कभी नहीं डरते, जबकि उस समय भी सारी छूट रही होती है,
1: जी जी जी,
0: है ना। आप कहते हैं कि अरे भाई अब बहुत हो गया, आप सोने दो। मतलब एक तरह से मैं कहूं, अगर थोड़ा सा इक्वेशन बदल दूं, तो अब शरीर छोड़ने का समय आ गया, था शरीर छोड़ने दो। अगर ये बात निद्रा की जगह ये बात भी कही जाए तो निद्रा के लिए उपयुक्त होगी,
1: जी जी जी,
0: कि शरीर छोड़ना है अब। और यहाँ संसार में कह दिया जाए कि शरीर छोड़ना है, तो जितने आपके प्रियजन है रोने रहेंगे कि क्या कह रहे हैं आप, क्यों कह रहे हैं आप। तो निद्रा परम वैराग्य है, परम शांति है, शरीर ही छूट जाता है। सही में देखें अपन, लेकिन तार्किक लोग ये भी कहते हैं कि इसके बाद हम जागते तो भी हैं। अरे भाई जागते आप हैं, मैं मानता हूं, लेकिन जागने को जागते वक्त छोड़ने की बात कोई करे तो आप लड़ मर जाएंगे। भाई जागते वक्त जो कुछ भी आपने अर्जित किया है, कोई मांगने अगर आ जाए तो आप दे दोगे क्या? और नींद में तो आप अपने घर को छोड़ देते हो, बिस्तर छोड़ देते हो, है ना, कुछ पता ही नहीं होता नींद में कहां सो रहे हैं क्या है। तो नींद एक तरह से शरीर छूटने का नाम है। राम जी ने कितनी गहरी दृष्टि दी है कि अगर मनोरम कोई स्थान है शरीर में
1: तो वो निद्रा,
0: तो सिर्फ निद्रा है।
1: जी जी।
0: शायद हमारे श्रोताओं को भी ये बात समझ में आ रही होगी कि निद्रा मनोरम है। मन, मन कहते हैं ना, अमन हो जाता है।
1: हाँ।
0: मन होता ही नहीं वहाँ।
1: जी। अच्छा, शरीर में जो मन है वो किस रूप में स्थित है?
0: आपने जो सुंदर कहा, इसको राम जी कहते हैं कि जिस तरीके से चूहा चारों तरफ से बिल बना के बैठा रहता है, कहीं से भी घुस सकता है, राम जी कहते हैं ये मन ऐसे ही शरीर में रमा हुआ है।
1: अच्छा।
0: हर तरफ से ये अपना मार्ग खोद के बैठा है, यहां से रोकोगे तो वहां से घुसेगा, वहां से घुसोगे तो वहां से घुसेगा। कहते हैं कि हे मुनि, यह शरीर केवल रक्त और मांस का ही बना हुआ है, इसमें एक ही धर्म है, इसका एक ही धर्म है कि ये जो चूहा जैसे घुसेगा तो क्या कहते हैं, जैसे अपने यहाँ संत लोग कहते हैं ना कि दर्जी भी कपड़ा काटता है और चूहा भी कपड़ा काटता है। चूहा कपड़ा काटता है तो पहनने योग्य नहीं होगा, और दर्जी जो है कपड़ा काट के पहनने योग्य बनाता है।
1: जी जी जी।
0: तो ये जो मन रूपी चूहा हर तरफ से बिल बना के बैठा है, ये आपको ये दुर्लभ तन मिलने के बाद भी जीने नहीं देगा। तो ये पूरी तरीके से शरीर में नाड़ी रूप में यंत्रों के माध्यम से संचार करता है और चंचल बना रहता है, और मन रूपी सुंदर चूहे ने इसमें सब ओर से बिल खोद रखे हैं, इसलिए मुझे यह प्रिय नहीं है। राम जी कहते हैं कि
1: जी,
0: मन का इस पर इतना प्रभाव है, चूहे की भांति हर तरफ से बिल खोद रखा है,
1: जी,
0: और
1: जी,
0: जब भी इस शरीर का उपयोग करेंगे वो मन के द्वारा ही उपयोग किया जाएगा इसका।
1: जी, जी, जी।
0: तो ऐसे में ये शरीर मुझे प्रिय नहीं है, क्योंकि शरीर से मन ही जिया जाता है। आप देखें तो सुख दुख जो है वो मन की ही चाह और नहीं चाहने की बात है, कि आपके मन के अनुरूप हो गया तो आप सुखी हो गए, मन के प्रतिकूल हो गया तो दुखी हो गए, जबकि सुख दुख विषय और विषयों के योग में नहीं है, मन की चाह और मन की अचाह में है। जी, तो कहते हैं इसलिए मुझे प्रिय नहीं है, क्योंकि सब ओर से उस मन का ही तो व्यवहार होता है, इससे मन से ही तो तृष्णा आती है।
1: अच्छा, तो फिर शरीर का धर्म क्या है?
0: शरीर का धर्म क्या है, ये आपने सुंदर सवाल किया। राम जी कहते हैं शरीर का एक ही धर्म है, विनाश।
1: अच्छा।
0: हाँ, अब आप देखिए कितना क्रांतिकारी उद्घोष है, और शरीर से ही हम धर्म करना चाहते हैं, है ना। सारा धर्म, जिस शरीर का धर्म विनाश हो, उस शरीर से अगर धर्म करने की बात की जाए तो तृष्णा ही तो होगी।
1: हाँ।
0: जो हमने पिछली बार मतलब तृष्णा की निंदा में राम जी ने कहा भी है कि आप जो स्वर्ग नर्क की बात करते हैं या उसके लिए शुभ और अशुभ कर्म करते हैं, वो देखें तो वो सब विनष्ट हो जाते हैं। और इसी ग्रंथ में बात आता है अरिस्टनेमी का, जब वो कहते हैं कि स्वर्ग में क्या है, तो कहते हैं जिनका उत्तम भोग है उनको उत्तम भोग मिला हुआ है, और जब उनका वो फल कर्म जो समाप्त होगा तो फिर वो ढकेल दिए जाएंगे वहां से। तो कहा ऐसे स्वर्ग की मुझे कामना नहीं है। और इस स्वर्ग से आदमी क्या करता है शरीर से, भाई मरने के बाद व्यक्ति स्वर्गीय हो जाता है। हम लोग बोलते भी उपमा देते हैं ना कि स्वर्गीय श्री, इस शरीर से अधिक यात्रा स्वर्ग की हो सकती है, है ना। तो वो भी मृत्यु के बाद होती है। तो कहते हैं कि वो भी विनाश नाशवान है, स्वर्ग भी नाशवान है। तो शरीर का जो धर्म है वो विनाश है, इसलिए इस शरीर के धर्म में न पड़ करके इस शरीर रूपी यंत्र का उपयोग अपने आत्मस्वरूप के चिंतन में किया जाए, और जीवन मुक्त की भांति व्यवहार किया जाए। व्यवहार आबद्ध होकर के, पक्षियों की तरह जो कहा ना ईश्वर और जीव रूपी पक्षी बन करके न जिया जाए, क्योंकि यहाँ ईश्वर भी आता है तो दुख भोगता है। आप देखिएगा जितने भी हमारे अवतार हैं, क्या वो दुख नहीं भोगे हैं?
1: बिल्कुल।
0: जब हम कहते हैं, विचार करके देखिए कि जब राम और कृष्ण ने शरीर धारण किया तो उन्हें भी शरीर त्यागना पड़ा, शरीर के दुख भोगने पड़े। तो आम आदमी उन्हीं से अपने शारीरिक दुख को मिटाने का अगर मांग कर रहा है तो कितनी बड़ी मूढ़ता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चूंकि समय बहुत कम रह गया है तो मैं चाहती हूँ संक्षेप में आप कुछ प्रश्नों के उत्तर दे दें कि जो बुद्धिमान पुरुष है,
0: हाँ,
1: वो शरीर पर आस्था क्यों नहीं करते हैं?
0: बुद्धिमान पुरुष, अब ये तो बड़ा आपने मार्मिक प्रसंग छेड़ दिया, वो आस्था इसलिए नहीं करते क्योंकि ये शरीर किसकी वजह से जीवित है? जीव से। मैंने कहा ना दो पक्षी, आपने कहा ईश्वर और जीव, ईश्वर प्रकृति हो गई और जीव कौन हो गया? अज्ञानता वस ब्रह्म, अज्ञान जो मान बैठा है कि मैं शरीर हूं, है ना। तो कहते हैं कि वो इसलिए इस पर भरोसा नहीं करते, कहते हैं कि जिस दिन ये जीव साथ छोड़ता है तो उस समय मरने पर जीव का साथ छोड़ देता है ये शरीर।
1: हाँ।
0: ये शरीर जो है इतना कृतज्ञ है, कृतघ्न है, कृतज्ञ नहीं,
1: कृतघ्न है,
0: कृतघ्न है
1: जी,
0: कि उस जीव का साथ छोड़ देता है जिस जीव ने इसके समस्त भोगों के भोगने में सहयोग किया है, क्योंकि उसी की चेतना से हम कहते हैं कुछ भी आप अच्छा बुरा जो भी आपके जीवन में हुआ है वो चेतना जो जीव है जो अविद्यावश अपने को शरीर मान बैठा है तो उसकी वजह से है। लेकिन जब जिस दिन वो मरता है शरीर, उस दिन शरीर यहीं रह जाता है, पांच तत्वों में मिल जाता है और जीव अकेला जाता है यहां से। तो कहते हैं कि ये आस्था करने योग्य नहीं है, विवेकवान है वो जानते हैं कि अंत में जीव अकेला ही जाएगा।
1: जी, जी। बहुत ही संक्षेप

0: दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहने। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब समय है कार्यक्रम भारत विभूति का। नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा।
2: और मैं हूं आपके साथ स्वाति।
1: और आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे भारत विभूति भिखारी ठाकुर की। श्रोताओं, इस धरती पर कुछ लोग जन्म नहीं लेते बल्कि मिट्टी उन्हें अपने हाथों से गूंथ कर रचती है। वे लोग हवा में उड़ते नहीं, पेड़ की जड़ की तरह धरती में धंस जाते हैं, गहराई तक, एकदम भीतर तक, जहां से फूटता है कला का जल, स्वच्छ, निर्मल, जीवन देने वाला।
2: और यही वो जल है जिसे पीकर सभ्यताएं आगे बढ़ती हैं, जिससे गीत जन्म लेते हैं, नाटक खेलते हैं और मानवता की धड़कन लिखी जाती है। कला के ऐसे स्रोत आसानी से नहीं जन्मते। सदियों के मौन, पीढ़ियों के दुख और जीवन की अनगिनत ठोकरों से एक कलाकार बनता है।
1: और ऐसा ही एक कलाकार बिहार की उस हरी भरी, गीतों से भरी, माटी भरे आंचल वाली धरती से जन्मा था, जहां हवा में चहकते चिड़ियों का सुर लोक गीत बन जाता है, जहां नदियों का बहाव कहानी का छंद बन जाता है, जहां खेतों की मिट्टी अपनी खुशबू में भी कविता रचती है। उसी माटी ने रचा, उसी माटी ने संवारा, उसी माटी ने दुनिया को सौंपा एक अनमोल रत्न, जिसे आज पूरी दुनिया भोजपुरी का शेक्सपियर कहती है। वो थे भिखारी ठाकुर।
2: भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर 1887 को छपरा के कुतुबपुर दियारा में एक साधारण परिवार में हुआ। ये वही गांव था जो पहले शाहबाद जिले, जो कि अब भोजपुर है, उसका हिस्सा माना जाता है। पर 1926 में गंगा की धारा बदलने से ये क्षेत्र सारण जिले में शामिल हो गया। उनके ननिहाल का बसेरा आरा में था, जहां से उन्हें बचपन में स्नेह और संस्कार दोनों ही मिले। वो दलसिंगार ठाकुर के पुत्र थे। माता शिवकली देवी सरल, कर्मठ और गृहस्थी संभालने वाली स्त्री थी। भिखारी दो भाइयों में बड़े थे। छोटे भाई का नाम बहोर ठाकुर था। घर में गरीबी थी, पर प्यार और लोक संस्कृति की गर्माहट कभी कम ना हुई।
1: पर प्रकृति ने उनका मन किसी और ही ताल पर रखा था। वे औपचारिक शिक्षा से वंचित होकर भी उनके लोक जीवन में खेत खलिहान की पगडंडियां नापना, नदी की हवा में गांव के गीत सुनना, सब कुछ गहरा

0: ढोलक की आवाज का, मंच के रंगों का, जहां कोई आदमी किसी और का रूप धरकर जीवन से भी बड़ा बन जाता था। बचपन बीत गया जैसे कोई नदी चुपचाप बहकर नए मोड़ पर पहुंच जाए।
1: भिखारी ठाकुर के पिता दलसिंगा ठाकुर सीधे साधे मेहनत से जीने वाले व्यक्तित्व थे। उनकी हथेलियों पर खेतों की मिट्टी और जीवन की थकान दोनों ही जमी रहती। उनकी एक ही चाहत थी, भिखारी वही काम करे जो पीढ़ियों से उनका घर संभालता आया है। लोगों के बाल बनाना, शादी ब्याह में सेवाएं देना, उसी से रोजी रोटी कमाना। भिखारी ठाकुर अपने पुश्तैनी काम का सम्मान खूब किया करते, लेकिन उनके भी सपने कुछ और थे। पिता भिखारी जी को समझाते हुए कहते,
2: बेटा कविता कहानी गाना बजाना मन बहलावे खातिर ठीक बा, बाकी जीवन ऐसे ना चलेला। अगर हवा के रंग धरे में लागब त जिंदगी के धूप में जुड़ी जाइब। भिखारी ही दुनिया सपना से ना चल, हुनर धर हाथ में तबे घर गृहस्थी चल पाई।
0: भिखारी सर झुका के सब सुनते रहे। यौवन में पहुंचते पहुंचते वो अपने पारिवारिक पेशे में उतर आए। किशोर उम्र में ही उनकी शादी मतुना से हुई। इस विवाह ने भिखारी ठाकुर के जीवन को नया आयाम दिया, जहां घर की जिम्मेदारी और प्यार का सहारा मिला। मातुना के साथ जीवन की शुरुआत भिखारी ठाकुर के लिए एक नई राह बन गई, जहां प्रेम और परिवार की मजबूती उनके भीतर की कविता और लोक संगीत को धीरे धीरे पंख देने लगी।
1: 1911 में उनके पुत्र शिलानाथ ठाकुर का जन्म हुआ। घर में नई उम्मीद का उजाला फैल गया, लेकिन खुशियां कहां ही लंबी चलती हैं और समय का पहिया घूमता रहा। एक दिन गांव की मिट्टी उस साल अजीब सी लग रही थी, सूखी फटी हुई, जैसे उसके भीतर रोती हुई नदियों की लकीरें छिपी हों। हवा में धूल थी, खेतों में सन्नाटा और आसमान में बादलों के नाम पर बस उम्मीद की राख उड़ रही थी। भिखारी ठाकुर दल सिंगार और शिवकली का बेटा अपने घर की हालत को धीरे धीरे बिखरते हुए देख रहे थे। रसोई में अनाज का आखिरी दाना भी माँ की मुट्ठी से फिसल चुका था। चूल्हा कई दिनों से ठंडा पड़ा था।
0: बचपन से सरल, विनम्र, दूसरों के दुख को अपना समझ लेने वाला वो युवक जब अपनी ही माँ की थकी आंखों में मजबूरी का कांपता हुआ साया देखता तो उसके भीतर का सारा साहस डगमगा उठता। फिर आया 1914 का काल, जिसने जैसे पूरे गांव की खुशियों को निगल लिया। कहीं घास नहीं, कहीं दाने नहीं, लोग अपने ही आंगनों में अजनबी बनते जा रहे थे। इन्हीं दिनों भिखारी ने पहली बार महसूस किया कि गरीबी सिर्फ पेट नहीं काटती, वो आत्मा को भी छोटा कर देती है।
1: और उसी रात जब घर में भूख की चुप्पी सबसे ऊंची आवाज बन चुकी थी, उन्होंने निर्णय लिया कि अब वो नहीं रुक सकता। माँ के पैरों को छूकर बोला,
2: तुहार आशीर्वाद चाही माई, एक दिन हमें सबके ठीक कर देव।
0: और इस तरह भिखारी ठाकुर अपने फटे झोले में दो जोड़ी कपड़े, कुछ सपने और बहुत सारी मजबूरियां लेकर परदेश की राह पर निकल पड़े।
1: वो चल पड़े कुतुबपुर तियारा गांव से छपरा, छपरा से हाजीपुर और फिर ट्रेन पकड़कर कलकत्ता। ट्रेन में पहली बार इतने लोग देखे, इतना बड़ा शहर देखा, इतना शोर, पर उनके दिल में केवल एक ही सपना था, कमाई करूंगा, घर भेजूंगा और परिवार का जीवन बदल दूंगा।
0: श्रोताओं, उस समय कलकत्ता भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त शहर था। गांव के शांत माहौल से आया एक साधारण युवक भिखारी ठाकुर जब इस शहर पहुंचा तो शहर ने उसका खुले हाथों से स्वागत नहीं किया। गांव से निकले भिखारी जी पहली बार इतने बड़े शहर में आए थे, जहां लोग भागे जा रहे थे, कहीं ठहराव नहीं, किसी को किसी से मतलब नहीं। स्टेशन की भीड़, अजनबी चेहरे, ऊंची ऊंची इमारतें, अलग तरह की बोलचाल, गंगा से अलग हुगली का विशाल घाट, ये सब देखकर वो हैरान हो गए और मन ही मन में कहा, हम इस शहर में रह पाइब का।
1: कलकत्ता पहुंचते ही सबसे बड़ी समस्या थी रहने की जगह। पैसा कम था, रिश्तेदार कोई था नहीं, कई दिनों तक घाट किनारे रात गुजारना, मजदूरों के साथ किसी कोने में सो जाना, फुटपाथ पर जगह ढूंढना, ये सब उनके हिस्से आया। कलकत्ता में रोजगार तो था, लेकिन गांव से आए, पढ़े लिखे नहीं थे, पहचान भी नहीं थी, ऐसे इंसान को तुरंत कौन काम देता है भला। भिखारी ठाकुर जैसे साधारण युवक के लिए जगह बनाना एक बड़ी चुनौती थी।
0: उनकी दुनिया बीच बीच में उकड़ती दीवारें थी, टूटी चौखटें थी और लोगों के दुख भरे चेहरे थे। लेकिन इसी दुनिया से वे सीख रहे थे कि मनुष्य का असली विश्वविद्यालय मिट्टी होती है और मनुष्य का असली शिक्षक दर्द होता है।
1: ऐसे में उन्होंने सबसे पहले वही काम पकड़ा जिसे वो सबसे अच्छी तरीके से जानते थे, अपना पुश्तैनी काम, बाल काटने का काम, वही कोलकाता में शुरू किया। कहते हैं कि हावड़ा स्टेशन के आसपास और मजदूर बस्तियों में वो छोटे से बक्से में उस्तरा, कैंची और कंघी रखकर बैठ जाया करते। सुबह से शाम तक लोगों के बाल बनाते, हजामत करते और कुछ पैसों में दिन काटते। उनके लिए ये सिर्फ कमाई का जरिया नहीं था बल्कि जिंदगी बचाने का संघर्ष था।
0: श्रोताओं, कलकत्ता में वो अक्सर रामलीला देखने जाते, वो मंच जहाँ देवत्व और मानवता एक साथ चलती है, जहाँ दुख भी है, धर्म भी और धूल में छिपे आदर्श भी। इन्हीं रंगमंचों से उन्होंने अभिनय का मंत्र सीखा और शब्दों को जीवित रूप में ढलते देखा। यहीं से उनके भीतर नाटक लिखने और मंच पर जीवन को उतारने की अंतर यात्रा शुरू हुई। इसी शहर में उन्होंने पहली बार सिनेमा का जादू भी देखा। चलती तस्वीरों में कहानियों का उगना उन्हें किसी चमत्कार से कम नहीं लगा।
1: फिर उनकी मुलाकात हुई बाबूलाल से, जो बिहार का रहने वाला था और एक नाच हॉल चलाता था। बाबूलाल से मिले अनुभवों ने उनकी कला को नए आयाम दिए। मानो लोक धुनों में बसी सादगी और शहर के रंगों में छिपी चपलता एक साथ उनके भीतर संगीत रच रही हो। आखिरकार इन सब अनुभवों को अपनी झोली में समेटे वो वापस अपने गांव लौट आए। गांव लौटना उनके लिए घर की देहरी पर लौटना भर नहीं था, ये तो एक कलाकार का अपने स्रोत, अपनी मिट्टी और अपने लोगों के पास फिर से लौट आना था।
0: और जब वो गांव पहुंचे तो लोगों में हलचल फैल गई। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, कुछ ने शक किया। चौराहे पर बैठे एक बूढ़े ने तंज कसा, हे भिखारी, बिटबा नाटक करी, यही काम से पेट भरी।
1: दूसरा व्यक्ति बोला,
3: गांव में नाटक तमाशा के का जरूरत बा, लोग हंसी उड़ाई।
1: भिखारी चुपचाप मुस्कुराए। उन्हें मालूम था कि रास्ता आसान नहीं होगा। सबसे बड़ी दिक्कत थी लोगों को तैयार करना। कोई कहता,
3: हमरा घरवाली मानत नहीं के।
1: कोई कहता,
3: नाटक नौटंकी में बदनामी होई।
1: धीरे धीरे कुछ युवा तैयार हुए, लेकिन अभ्यास के लिए जगह ही नहीं थी। भिखारी ठाकुर ने अपने घर के टूटे आंगन में लालटेन जलाकर रिहर्सल करना शुरू किया। लोग दूर से झांकते, हंसते और फप्तियां कसते। एक शाम किसी ने तेज आवाज में कहा,
3: भिखारी दा, ई नाटक से का होई, खेत खलिहान छोड़ी के नटुआ बनब।
1: भिखारी शांत स्वर में बोले,
3: कला खेला ना जनाब, मनुज के जियल जिंदगी के सांच हा।
0: और फिर कई हफ्तों की मेहनत के बाद उन्होंने पहला नाटक तैयार किया, उनका छोटा सामाजिक नाटक जो गांव के झगड़ों और व्यसनों पर आधारित था। गांव के मेले में मंच लगाया गया, लोग बड़ी संख्या में देखने आए, लेकिन जैसे ही नाटक शुरू हुआ समस्याएं आनी शुरू हो गईं। कलाकार मंच पर चढ़ते ही संवाद भूल गए, ढोलक की चमड़ी फट गई, लालटेन हवा से बुझ गई, दो कलाकार आपस में झगड़ पड़े और भीड़ हंसने लगी।
1: गांव के कुछ शरारती लड़कों ने चिल्लाया,
3: एगो नटुआ मंडली, यहाँ इसे नाटक हो खेला।
1: भिखारी मंच पर खड़े थे, भीतर तक टूट चुके, नाटक अधूरा ही बंद करना पड़ा। उस रात मंडली के कई लोग डरकर भाग गए। एक ने जाते जाते कहा,
3: भिखारी दा, अब हमसे ये सब न हुई,
0: कौन करेगा नाटक? लोग कहते नाटक करना नीच काम है। इसलिए शुरुआत में भिखारी ठाकुर के नाटकों में भिखारी खुद सबको समझाते, मनाते, हिम्मत देते, ये कला की सेवा है, समाज की सेवा। अगले दिन भिखारी ठाकुर ने टूटे लालटेन की बत्ती ठीक की, ढोलक के फटे हिस्से पर नया चमड़ा चढ़ाया और बचे हुए कलाकारों से कहा, हार मान लेब तो हमनी से बड़का कायर केहू न होई, फिर से शुरू करब। भिखारी ठाकुर हर दिन हर रात बस यही सोचते, हमरा गांव के लोगन के दुख पीड़ा बेचैनी, ये सबके आवाज देहल जरूरी बा।
1: एक दिन भिखारी ठाकुर गांव में घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा बाप अपनी नाबालिग बेटी का ब्याह पैसे के लिए कहीं दूर तय कर रहा था। लड़की डरी हुई थी, माँ रो रही थी और गांव चुप, बिल्कुल चुप। ये दृश्य भिखारी के दिल में तीर की तरह उतर गया। रात को वो नींद नहीं ले पाए। यही कच्ची पीड़ा धीरे धीरे बेटी बेचवा के रूप में आकार लेने लगी। जब मंडी ने बेटी बेचवा खेला तो वही लोग जो कल तक हंस रहे थे आज भीड़ में चुपचाप खड़े रो रहे थे। गांव की औरतें अपने आंचल से अपनी आंखें पोंछ रही थी, पुरुष सिर झुकाए खामोश खड़े थे। किसी ने भिखारी ठाकुर से आके कहा,
2: भिखारी तोरा नाटक में हमनी की जिंदगी भूलत बा।
1: और उस रात भिखारी ठाकुर समझ गए कि हंसी उड़ाने वालों से बड़ी ताकत दर्द को आवाज देने वाली कला के पास होती है। जो लोग कुछ दिन पहले उनकी मंडली को नटुआ मंडली कहकर हंस रहे थे अब सम्मान से बोलते हैं,
2: हे भिखारी जी आप ता समाज के आंखी खोल देलन।
1: गांव में जब भी मंडली रिहर्सल करती लोग दूर से आकर चुपचाप देखते। रात के अभ्यास में अब कोई ताना नहीं मारता बल्कि कोई पानी दे जाता, कोई लालटेन के लिए तेल। भिखारी ठाकुर की मंडली अब गांव की इज्जत बन गई।
0: भिखारी जी का मन और भी मजबूत हो गया। अब उन्हें लगा कि उनका रास्ता सही है। बेटी बेचवा की सफलता ने भिखारी को नई ऊर्जा दी। अब वो सोचने लगे कि गांव में सबसे बड़ा दर्द क्या है, और उन्हें जवाब मिला परदेसिया का दुख। वो रोज देखते थे युवक रोजी रोटी के लिए कलकत्ता जाते, पीछे रह जाती उनकी पत्नियां, मायके में रोती हुई बहुएं, खाली चौखटें और सूने आंगन। एक दिन भिखारी ने एक औरत को रोते सुना,
4: हमर घरेला परदेश चली गई, हम अकेली पड़ गई नी।
0: यह आवाज उनके दिल में उतर गई। बिचोहों का दर्द, परदेश की मजबूरी, गृहस्थी की टूटन और प्रेम की पुकार, इसी से विदेशिया का जन्म हुआ,
1: जो 1917 में उन्होंने अपनी 30 वर्ष की उम्र में लिखा। यह नाटक सिर्फ कहानी नहीं गांव-गांव में बजने वाली वेदना की प्रतिध्वनि था। जब पहली बार यह नाटक खेला गया लोगों की आंखें नम हो गईं। पुरुषों ने अपनी अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया, औरतें रो पड़ी और बुजुर्ग बोले,
2: ये नाटक था हमनी के रोज की जिंदगी हा।
1: विदेशिया ने भिखारी ठाकुर की पहचान को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। अब उनकी मंडली की चर्चा पास पड़ोस के गांव तक फैलने लगी।
0: विदेशिया के बाद उन्होंने अपनी मंडली को नए रंग, नई कथाएं और नई जिम्मेदारियां दी। रोज रात लालटेन की रोशनी में बैठकर वे कलाकारों को समझाते। नए कलाकार जुड़े, नए ढोलकी आए और मंडली धीरे धीरे पूर्वी भारत की सबसे बड़ी लोक नाट्य मंडलियों में गिनी जाने लगी। 1938 से 1962 के बीच उनकी रचनाओं का जैसे स्वर्णकाल रहा। इन 24 वर्षों में भिखारी ठाकुर ने 3 दर्जन से अधिक पुस्तकों, नाटकों और गीतों की रचना की। उनके मन में बस एक ही धुन थी, समाज का दर्द, प्रेम, बिछोह, संघर्ष और व्यंग्य, सबको मंच की रोशनी में उतार देना। यही भीतर की ज्वाला नागपंचमी, कवन संकट, राधे श्याम बहार, आमोर सजनवा, कलयुग प्रेम, विरह लीला, घरवारी बाहर वाली, भाई विरोध और बुढ़वा बाबू जैसे अनेक नाटकों के रूप में फूटती गई।
1: बचपन में नियमित शिक्षा नहीं मिली थी, इसीलिए भिखारी ठाकुर ठीक ढंग से लिखना पढ़ना नहीं सीख पाए, लेकिन उनकी कला में एक ऐसी आग थी जो शिक्षा की कमी को कभी बाधा नहीं बनने दिया। भिखारी ठाकुर मौखिक परंपरा के उस्ताद थे। वो कहानी और गीत संवाद पहले अपने मन में बनाते, फिर उन्हें बोल बोल कर याद करते। उनकी स्मरण शक्ति बहुत अद्भुत थी। कहा जाता है कि वो एक एक गीत, पूरा का पूरा नाटक कई कई घंटे बिना कागज के सुना देते थे। जब वो अपने शब्दों को अंतिम रूप दे देते तब गांव के पढ़े लिखे लोगों से कहते,
2: बाबू ये सब कागज पर उतार दा।
1: और इस तरह अपने नाटक, गीत और बोलचाल की पंक्तियां दूसरों से लिखवाते रहे। इसके जहां फायदे थे वहां नुकसान भी बहुत थे। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि कई प्रकाशक और व्यापारी उनके नाम पर नकली पुस्तकें छापकर बेचने लगे, ऐसी रचनाएं भी जिनका उन्होंने नाम तक नहीं सुना था। इससे उन्हें 2 बड़ी हानियां हो रही थी, उनकी सच्ची रचनाएं गुम होती जा रही थी और उनके नाम से घटिया और गलत सामग्री फैलने लगी थी। वो लिखने पर दूसरों पर आश्रित भी होने लगे थे। यदि लिखने वाला गलती करता तो गलती पुस्तक में भी रह जाती। भिखारी ठाकुर अपने शब्दों पर पूर्ण अधिकार नहीं रख पाते और इन सब बातों ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया।
0: और इन्हीं कारणों से उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीखना शुरू किया। उन्होंने कभी स्कूल की पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उम्र के उस पड़ाव में जब लोग हार मान लेते हैं, उन्होंने तय किया हमके अब अपना लेखन पर पकड़ बनावे के बाद। धीरे धीरे अक्षर पहचानना, शब्द पढ़ना और थोड़ा लिखना उन्होंने सीख लिया। वे इतना जरूर करने लगे कि कोई भी पांडुलिपि या किताब बिना देखे बिना जांचे प्रकाशित ना हो।
1: इसीलिए उन्होंने 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ तैयार करवाए, भिकारी पुस्तिका सूची और भिकारी शंख शमदान, ये उनकी सभी असली रचनाओं की प्रामाणिक सूची है। सबसे पहले भिखारी ठाकुर पुस्तिका सूची, ये सूची उन्होंने इसीलिए बनवाई ताकि नकली पुस्तकें, झूठे दावे और गलत प्रकाशनों से उनकी कला को बचाया जा सके। ये उनकी रचनाओं का एक सत्यापित अभिलेख बन गया।
0: और दूसरा, भिखारी शंख शमदान, ये उनके जीवन, उनकी कला और उन पर लगे झूठे आरोपों का जवाब है। इस पुस्तक में उन्होंने अपने जीवन की सच्चाई बताई, अफवाहें खारिज की, अपने कला की दिशा समझाई और बताया कि वो क्यों और क्या लिखते हैं। कह सकते हैं कि ये उनका आत्मघोष, उनका आत्मपक्ष और उनकी सच्चाई का दस्तावेज है। भिखारी ठाकुर ने लिखना पढ़ना इसलिए सीखा ताकि भिखारी पुस्तिका सूची और भिखारी शंख शमदान जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ तैयार किए जा सकें, जो आज भी उनके साहित्यिक जीवन का सबसे विश्वसनीय प्रमाण है।
1: धीरे धीरे उनकी कला का प्रभाव आरा से बलिया तक, मुजफ्फरपुर से गोरखपुर तक और जौनपुर से झरिया तक और फिर बहुत दूर असम से डिब्रूगढ़ तक पहुंच गया। जहां भी उनकी मंडली मंच सजाती, वहां एक नया सामाजिक प्रभात उगता। लोग हंसते, रोते और स्वयं को पहचानते।
0: श्रोता, हम आपको बताना चाहेंगे, पुराने समय में गाँव में औरतों का मंच पर आना समाज स्वीकार नहीं करता था, इसलिए नाटक, नौटंकी, बिरहा सब में पुरुष ही स्त्रियों की भूमिका निभाते थे। कहानी, लोकगीत और नृत्य बचाने का बस यही तरीका था।
1: भिखारी ठाकुर की मंडली में भी स्त्रियां मंच पर नहीं आती थी, इसीलिए भिखारी ठाकुर खुद कई बार स्त्री का अभिनय करते, उनके साथी भी किया करते। यही शैली आगे चलकर उनकी पहचान बन गई। इसमें पुरुष कलाकार औरत का रूप धरकर स्त्री भूमिकाएं निभाते हैं। नाच, गाना, अभिनय सब पुरुष ही किया करते।
0: श्रोताओं, उत्तर भारत, खासकर बिहार, पूर्वी यूपी और भोजपुरी अंचल में सदियों से ऐसे प्रदर्शन होते आए थे जहां पुरुष स्त्री रूप में नाचते थे। भिखारी ठाकुर ने इस परंपरा को व्यवस्थित रूप दिया, इसे सामाजिक मुद्दों से जोड़ा और कथा में भावनात्मक गहराई जोड़कर इसे लोकप्रिय बना दिया। उन्होंने अपने नाटकों विदेशिया, बेटी बेचवा, गबर घिचोर में स्त्री किरदार बहुत गहरे और संवेदनशील बनाए। इन्हें निभाने के लिए लौंडा नाच कलाकार बेहद महत्वपूर्ण साबित हुए।
1: उनका जीवन उस नदी की भांति था जो पहाड़ों से निकलकर शहरों और गांवों के बीच बहती है और बहते बहते मिट्टी को भी उपजाऊ बना देती है। भिखारी ठाकुर ने सिर्फ नाटक नहीं रचे, उन्होंने समाज की आंखें भी खोल दी। उनकी आवाज आज भी हवा में तैरती है और उनकी कला समय की धूल पर अमिट अक्षरों की तरह अंकित है। भिखारी ठाकुर अब सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि एक परंपरा, एक लोक ध्वनि, एक कला संसार बन चुके थे। लोग कहते,
3: जैसे धूप बिना छांव ना, भिखारी बिना मंच ना।
1: उनकी कला ने इतना प्रभाव डाला कि उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाने लगा।
0: भिखारी ठाकुर की मंडली सिर्फ कलाकारों का समूह नहीं थी, वो एक परिवार थी, एक परंपरा थी और एक जीवित नदी थी जिसमें हर सुर अपनी कहानी लेकर बहता था। इस नदी के सबसे चमकदार मोती थे रामचंद्रमा जी, जिनके कदमों की थिरकन में स्त्री पात्रों की पीड़ा और कोमलता दोनों समाई थी। मंच पर महिलाओं का आना तब संभव नहीं था और यही वजह थी कि मांझी जैसे कलाकारों ने नारी रूप धारण कर उस रिक्ति को भरा, जैसे कोई दीपक अंधेरे की जगह ले लेता है। उनके साथ थे महेंद्र, जिनकी गायकी मंच को जीवित कर देती थी, राम, लच्छन और जूठन, जिनकी हंसी से भारी कथा हल्की हो जाती थी।
1: और संगीत की नींव संभाले थे घिनगांव की ढोलक, तफजुल की ताल, अलीजान की सारंगी और जगदेव का हारमोनियम, जो भिखारी ठाकुर के प्रत्येक संवाद को सांस देने का काम करते। ये मंडली उस दौर का जीवंत तो प्रमाण थी कि कला जाति, धर्म या रूप नहीं देखती, बस मन की सच्चाई और प्रस्तुति की निष्ठा को पहचानती है। सन 2021 में भारत सरकार ने रामचंद्र मांझी को पद्मश्री देकर इस परंपरा को सम्मान दिया, ये बताते हुए कि जो कला कभी उपहास झेलती थी अब देश की शान बन चुकी है।
0: और यादगार तो 1963 का भूषण भी है, जब भोजपुरी फिल्म विदेशी आई, जिसमें भिखारी ठाकुर ने अपनी ही कविता डगरिया जोहतना अपनी आवाज में गई। भिखारी ठाकुर जी का नाम भले ही भिखारी था, पर लोक भावना को उन्होंने इतनी समृद्धि दी कि कोई युग उसकी गिनती नहीं कर सकता। वे एक कलाकार नहीं, पूरी भोजपुरी सभ्यता की धड़कन थे। उनके नाटक, उनके गीत और उनकी बोली आज भी उसी तरह जिंदा है जैसे बारिश के बाद मिट्टी की सुवास। उनकी देह भले मिट्टी में समा गई पर उनकी कला वो आज भी गांव की हर चौपाल में, हर मेले की हलचल में और हर गायक की सांस में बसी हुई है।
1: दिन ढलने से पहले आसमान का रंग सबसे उज्जवल होता है और शायद कलाकार का जीवन भी ऐसा ही होता है जिसमें सूरज ढलने लगता है और उसकी रोशनी उतनी ही दूर तक फैलती है। भिखारी ठाकुर के जीवन का अंतिम पड़ाव भी उसी सुनहरे उजाले जैसा था। उनकी आवाज में अब पहले वाली ताकत नहीं थी पर उनकी कला अब भी नदी की तरह बह रही थी, एक ऐसी नदी जो सूखने से पहले सबसे ज्यादा गाती है।
0: 10 जुलाई 1971 की सुबह जब भिखारी ठाकुर ने दुनिया को अलविदा कहा तो पूरा इलाका थमसा गया। सचमुच ऐसे लगा जैसे गीत की तान टूट गई हो और सांझ बिना रंग की हो गई हो। उनकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित की गईं, मानो उनकी कला अब नदी से निकलकर समुद्र की अनंत लहरों में घुल रही हो। गांव देहात की गलियों में आज भी लोग कहते हैं, जे माटी से उपजल वही माटी में समाइल।
1: जीवन में उन्हें संघर्ष ज्यादा मिला पर सम्मान भी कम नहीं। 1930 से 40 के दशक में ब्रिटिश सरकार ने राय साहब जैसे बड़े आदर के संबोधन दिए और आज उनकी हर पुण्यतिथि पर सरकारी समारोह होते हैं, मंच सजते हैं, गीत गूंजते हैं, अनगिनत कलाकार, नेता और साहित्यकार ये मांग भी करते हैं कि इस मिट्टी के बेटे को भारत रत्न मिलना चाहिए।
0: श्रोताओं, भिखारी ठाकुर केवल एक व्यक्ति नहीं पूरे पूर्वांचल की धड़कन बन गए थे। उनके नाटक बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल तक पहुंचे। लोगों की भीड़ उनका नाटक देखने ऐसे उमड़ पड़ती जैसे मेला लग गया हो। आज उनके गीत किताबों में पढ़े जाते हैं, शोध संस्थानों में समझे जाते हैं और नए नए गायकों की आवाज में फिर से जन्म लेते हैं। छपरा, पटना, सारण, हर जगह उनके नाम पर मंच, पुरस्कार और केंद्र खुल चुके हैं।
1: श्रोताओं, कला के लिए भिखारी ठाकुर ने हमें सिखाया कि कलाकार वो है जो समाज की पीड़ा को खुद महसूस करे और फिर शब्दों, सुरों और अभिनय में ढाल दे। आज भी हर गायक, हर नाटककार भिखारी जी से यही सीख पाता है। इस कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में हम आपको भिखारी ठाकुर जी के लिए 4 पंक्तियां सुनाना चाहेंगे जो उनके जीवन, उनकी कला और उनकी आत्मा को एक साथ समेट लेती है।
0: माटी से उठल, माटी में मिलल, सुरवा बनके ऊ बही गईल, रोवेला समय गावे लोक, भिखारी नाम अमर हो गईल। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद और आज हमने अपने इस कार्यक्रम भारत विभूति में खूब सारी बातें की महान नाटककार, गीतकार, संगीतकार श्री भिखारी ठाकुर जी पर। अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन दीपक नेमा का और आपके सामने प्रस्तुत किया मैंने यानी संदीप शर्मा,
1: मैंने यानी स्वाति ने।
0: फिलहाल दीजिए इजाजत, सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए रेडियो आजाद हिंद।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है। सुनकर

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है रेडियो रिपोर्ट।

0: रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं रविंद्र भवन में, जहां स्मरण हबीब 22वें रंग आलाप नाट्य महोत्सव के तहत नाटक चेकमेट का मंचन हुआ 11 जून को।
1: मैंने देखा था एक गद्दा तकिया चादर मिसेस नंदिनी नचिकेत, नाउ यू आर अंडर अरेस्ट, और तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए महिला पुलिस भेजने के लिए मैं पुलिस कमिश्नर बात करूं।
0: इसका निर्देशन किया प्रशांत खिरवलकर ने। आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए रविंद्र भवन में और सुनते हैं इस नाटक के संपादित अंश।
2: तुमने उसका आई कार्ड चेक किया था कि नहीं?
3: हाँ, उसने मुझे कुछ दिखाया जरूर था, पर मैं इतना नर्वस हो गई थी कि मैंने।
2: नर्वस होने को क्या हुआ यार? मैं तुम्हें डराने के लिए, तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए कुछ भी?
3: नहीं नची, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे जितनी इंफॉर्मेशन उस हिसाब से मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता।
2: सुबह सुबह आकर उसने हमें तुम्हें डरा तो दिया ही है। वैसे तुम्हारा घबराना एकदम नेचुरल है।
3: नची, ये तुम बार बार तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या इस सब कुछ में मैं अकेली हूँ? तुम्हारा कोई संबंध नहीं?
2: कैसे होगा?
3: हाँ?
2: मैं तो मर चुका हूँ ना। जब मैं जिंदा ही नहीं हूँ तो वेयर डू आई कम इन पिक्चर? और यही बात सच है, और तुम्हें भी इसी बात पे अड़े रहना है। सारे सबूत यही साबित करते हैं कि मेरी मौत एक्सीडेंट में हुई है। अरे करने दो उसे इंक्वायरी, करेगा करेगा करेगा और फिर बोर हो जाएगा और फिर खुलेगा। यस,
3: और अगर ऐसा नहीं हुआ तो?
2: मतलब
3: सिक्के के दूसरे पहलू पर भी सोचो। जैसा हम सोच रहे हैं, अगर वैसा ना हुआ तो? अच्छी, मुझे तो लग रहा है कि तुम इस सब में मुझसे ज्यादा नर्वस हो। बताइए, इतनी मेटिकुलसली प्लान बनाने वाले तो इस दूसरे पहलू को कैसे ओवरलुक कर जाते हैं?
4: क्यों बुलाया उसे? मैं मना कर रहा था।
3: तुमने सुना ना, जब उसने कह दिया कि वो आग निकल चुका, तो क्या करती? मना कर देती?
4: क्यों आ रहा हूँ?
3: क्या पता, अब पता नहीं कौन सा सवाल करेगा। नची,
2: करने दो, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। कोई ज्यादा लंबे चौड़े जवाब देने की जरूरत नहीं, समझी? हाँ, लो, लगता है वो नीचे से फोन कर रहा था। संभाल लेना सब कुछ, जाओ। बी ब्रेव।
1: आप कहीं बाहर गई थी?
3: जी जी जी डॉक्टर, तबीयत ठीक नहीं थी, सोचा डॉक्टर को दिखा लूं, दवाई ले लूं। आप वहां पे
1: ले लेना
3: चाहिए। हां ले ली। क्या
1: दवा?
3: जी ले ली।
1: आपके घर में आपके अलावा भी कोई रहता है?
3: क्यों नहीं, मैं नहीं हूं, मैं अकेली।
1: कोई ना कोई रहता है?
3: नहीं, क्यों? क्या क्या
1: फोन किसी ने काटा था?
3: कट हो गया होगा, होता है कभी कभी।
1: अगर ऐसा होता तो तीनों बार कट होता।
3: क्या मतलब?
1: मतलब ये कि जब मैंने आपको पहली बार फोन किया तो फोन की घंटी 13 बार बजी और फोन कट नहीं, और जब मैंने आपको दूसरी बार फोन किया तो फोन की घंटी 9 बार बजी और उसे किसी ने काटा, और जब मैंने आपको तीसरी बार फोन किया तो फोन की घंटी पूरे 16 बार बजी और तब कहीं जाकर आपने उसे उठाया। इसका मतलब है कि फोन अपने आप कट नहीं होता है, दूसरी बार उसे किसी ने काटा, राइट?
3: मैं तो बाहर गई थी।
1: आप घर में रहकर भी कहां कुछ बता रही है मैडम? मैं पिछले 4 दिनों से आपसे पूछ रहा हूँ कि मौत के पहले मिस्टर नचिकेत का वजन एकदम से कम कैसे हो गया, यानी 70 से पता।
3: बस पहले 70 था, ये आपने कैसे मान लिया?
1: बहुत आसान, किसी की भी हाइट और वेट के हिसाब से उसके वजन का अंदाजा लगाना तो बहुत आसान है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेड बॉडी का वजन तो आपको मालूम ही है। अब सवाल ये उठता है कि वो 25 किलो वजन, चलिए मान लेते हैं 25 नहीं 20 किलो वजन, ये 20 किलो वजन गया?
3: इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है।
1: मेरे पास है, दो तुम कहूँ। मुझे शक है कि आपने अपनी पति के इंश्योरेंस पॉलिसी के 1 करोड़ रुपयों के लिए उनकी हत्या की।
3: बहुत रमेश।
1: जी हाँ, और प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में मेरा ये भी मानना है कि आपने उन्हें स्लो पॉइजन देकर मारा, इसलिए उनके वजन में कमी आई।
3: तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये निकल सकता था, पर निकला नहीं ना, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं है।
1: हाँ, उसमें तो वो नहीं आया। अच्छा, आपके अपने पति के साथ संबंध कैसे?
3: बेहद अच्छे, नॉर्मल हस्बैंड वाइफ के जैसे होते हैं ना, उससे कहीं बेहतर।
1: लेकिन
3: इंस्पेक्टर, हमारी शादी को थोड़ा ही समय हुआ, इससे बेहतर रिलेशन बनाने का हमें वक्त भी नहीं है।
1: मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मिस्टर नचिकेत को आत्महत्या करनी पड़े, ऐसा कहीं आपके और उनके बीच में कुछ, या उनका किसी और के साथ बाहर?
3: देखिए, हमारे बीच तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बाहर का मुझे नहीं मालूम, पर नहीं ही होगा।
1: मुझे मिस्टर नचिकेत के रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलना पड़ेगा, उनके टेलीफोन नंबर और नाम पते मुझे दीजिए।
3: देखिए, आपका इस तरह से बार बार यहाँ आना अब उसे बर्दाश्त नहीं होता, आपका ये बिहेवियर मेरे साथ ज्यादती है। अरे, इंक्वायरी का मतलब इस तरह से धमकाना नहीं होता।
1: बदतमीजी साबित करने के लिए सबूत चाहिए मैडम, जो आपके पास नहीं है, लेकिन मैं साबित कर सकता हूँ।
3: नाम क्या है उसका?
1: उसमें लाइन पर कोई रहता, जब तुम घर में नहीं थी तो मैं वहां गया था, मैंने देखा था, एक गद्दा तकिया चादर, मिसेस नंदिनी नचिकेत, नाउ यू आर अंडर अरेस्ट, और तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए महिला पुलिस भेजने के लिए मैं पुलिस कमिश्नर साहब को फोन करता हूँ।
3: फोन रखो, फोन रखो।
1: तुम्हारे खिलाफ मेरे पास पक्का सबूत और एक रिटेल सबूत भी मिला। मिसेस नंदिनी नचिकेत, नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना।
3: इंस्पेक्टर, आप मुझे माफ कर दीजिए, आई एम वेरी सॉरी, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था।
1: ये तो मैं कह रहा हूं,
3: माफ कर दीजिए, आप तो सॉरी
1: नहीं कर रहे। आप अगर पहले ही दिन अपना गुनाह कबूल कर लेती तो मैं आपको अप्रूवर बना।
3: पर क्या कुछ नहीं हो सकता
1: अब? लेकिन उसके लिए तो मैं मुझसे शादी कर।
3: क्या
1: शादी? अच्छी तरह से सोच लीजिए मैडम, आपके पास सोचने के लिए बहुत वक्त नहीं है। मैं कल फिर आऊंगा, तब हम निर्णय करेंगे कि आपको क्या करना है, मेरे साथ शादी या आप जानती हैं ना।
3: नचिकेत,
1: नचिकेत,
3: हाँ।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं कार्यक्रम रेडियो रिपोर्ट। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

नमस्ते, मैं हूँ रानी मुखर्जी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स।
1: हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
0: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार। पर

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर। मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आजाद हिंद।

स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन, लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

0: नमस्कार श्रोताओं, आजाद हिंद में हम रोज करते हैं कुछ ऐसे वीर महापुरुषों की बातें जो अपने आप में अद्वितीय रहे हैं। वो लोग जो एक मिसाल बनकर आज भी सारे जग को रोशनी दे रहे हैं। उन वीरों की बातें यहां करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि सभी को उन जैसा ही बनने की प्रेरणा मिले और सभी का उद्धार हो।
1: इसी कड़ी में एक और मोती आज जोड़ा जाएगा और ये मोती है लाला लाजपत राय जी। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1856 को पंजाब में अपने नाना के घर दुड्डिक के ग्राम में हुआ। लाला जी का पैतृक घर लुधियाना जिले में जगराव नाम के छोटे से कस्बे में था, जहां लाला जी के पिता राधा कृष्ण जी स्कूल में शिक्षक थे। वे उर्दू के अच्छे ज्ञाता और स्वामी दयानंद के परम भक्त थे।
0: लाला जी को सेवा और साहित्य से गहरा प्रेम था। माना जाता है कि उन्हें साहित्य से लगाव और देश प्रेम का जज्बा अपने पिता से विरासत के रूप में ही मिला था। राधा कृष्ण जी की यही इच्छा थी कि पुत्र लाजपत उन्हीं की तरह दीन दुखियों की सेवा करे। इसीलिए उन्होंने पुत्र के लिए अच्छी शिक्षा का भी प्रबंध किया, ताकि वो समाज की कठिनाइयों को भली भांति समझ सके।
1: एक बार लाला जी के पिता बहुत बीमार पड़े। बालक लाजपत ने उनकी बहुत सेवा की और छोटे भाई बहनों को भी संभाला। पिता जब अच्छे हुए और उन्होंने जाना कि कितनी परेशानी के बीच स्वयं को रखकर लाजपत ने घर और उनकी देखभाल की है और नौकर के न होने पर भी सारा काम खुद किया है, तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। बेटे को तकलीफ देने के लिए जब उन्हें ग्लानी हुई और उन्होंने लाजपत से ये कहा, तो लाजपत ने उन्हें रोक दिया। पिता की सेवा को अपना परम कर्तव्य मानते हुए उन्होंने इसे अपना सुख बताया।
0: बालक लाजपत की ये बात सुन पिता को पूरा भरोसा हो गया कि बेटा जरूर बड़ा होकर देश सेवा में ही अपना जीवन समर्पित कर देगा। शायद उनके आशीर्वादों के ही फलस्वरूप लाला लाजपत राय भारत के सबसे निष्ठावान सेवकों में से एक माने जाते हैं।
1: सही है, माता पिता के आशीर्वाद के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं। लाला जी ने पिता की इस बात को गांठ बांध लिया और विद्यार्थी जीवन से ही सेवा कार्य में लग गए। वे अपने पिता की ही तरह उर्दू में लेख भी लिखते और भाषण भी करते। इससे उनकी योग्यता में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी हुई। जब उन्होंने वकालत पास की तो सभी नतीजे बहुत ही बढ़िया आए।
0: फिर उन्होंने हिसार में वकालत शुरू की, क्योंकि बुद्धि उनकी विलक्षण थी और बोलने में तो वो तेज थे ही। बस बहुत जल्द सफलता उनके कदम चूमने लगी। बस एक बात यहाँ बताना बहुत जरूरी है कि वो जो भी कमाते उसका अधिकांश हिस्सा वो सेवा कार्यों में लगा देते। हिसार में उन्होंने ही आर्य समाज की शाखा स्थापित की। इस कार्य हेतु अपने पास से 1500 रुपए की राशि उन्होंने दान की। हिसार में ही संस्कृत विद्यालय की भी स्थापना उन्होंने की और भी बहुत कुछ केवल सेवा के उद्देश्य से किया।
1: लाला जी की कई सारी विशेष बातें हैं जो हम जानेंगे इस गीत के बाद।

0: हिसार में अपने कार्यों से लाला जी बहुत प्रिय नेता हो गए थे। आर्य समाज का मुख्य कार्य अछूतोद्धार था। लाला जी की भी इसमें विशेष रुचि थी। उन्हें किसी एक समुदाय को इस तरह समाज से काट देना ठीक नहीं लगता था। उन्होंने कांगड़ा और संयुक्त प्रांत के पहाड़ी इलाकों में जाके अछूतों के लिए बहुत काम किया।
1: किसी भी व्यक्ति के उद्धार में सबसे बड़ा हाथ होता है शिक्षा का, पर इस शिक्षा के प्रचार के लिए पैसा चाहिए होता है। लाला जी ने इसी काम के लिए 40,000 रुपये दान किए। इस पैसे से अछूतों के लिए पाठशालाएं खोली गईं। इसके अलावा आर्य समाज के स्कूलों में भी अछूतों को स्थान दिलाने की दिशा में बहुत काम किया। उनके ही प्रयासों से ये छात्र गुरुकुलों में भर्ती हो सकते थे।
0: नौजवानों की शिक्षा दीक्षा को लेकर लाला लाजपत राय बड़े चिंतित रहते थे। हूँ भी क्यों ना, आखिर देश का भविष्य नौजवान पीढ़ी ही तो होती है। अगर इसी पीढ़ी में शिक्षा और ज्ञान का प्रसार अच्छी तरह न हुआ तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। अंग्रेजी स्कूलों में भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाता था। इसके अलावा वो बहुत ही महंगे और खर्चीले भी थे। कॉलेज से लड़के पढ़कर निकलते थे तो वे बस साहब बन जाते थे। व्यवहारिक पक्ष से वो कमजोर भी होते थे। उनके मन में स्वदेश प्रेम नहीं के बराबर होता था।
1: इस बात पर लाला जी अक्सर सोचा करते थे कि ऐसा कॉलेज खोला जाए जिसमें अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी और संस्कृत भी पढ़ाई जाए। इससे ही नौजवानों में अपने इतिहास के प्रति गौरव का भाव उत्पन्न होगा। ये विचार बहुत ही अच्छा था। इसका खर्चा भी वे कम ही रखना चाहते थे ताकि सभी को समान रूप से शिक्षा मिल सके, खासकर गरीब तबके के जहीन विद्यार्थियों को।
0: लाला हंसराज की मदद से लाहौर में कॉलेज भी खुल गया। इस कॉलेज का नाम दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज रखा गया। इस कॉलेज के लिए सरकारी सहायता लेना लाला जी को बिल्कुल गवारा न था। सभी सरकारी कॉलेजों के मुकाबले भी यहाँ की फीस सबसे कम थी। लाला लाजपत राय ने कॉलेज चलाने के लिए बहुत सा धन एकत्रित किया। फिर ऐसे ही कॉलेज भारत के कई और शहरों में भी खोले गए। इन कॉलेजों से ऐसे ऐसे क्रांतिकारी और देशभक्त पैदा हुए जिन्होंने भारत की उन्नति के लिए बहुत कार्य किया।
1: लाला जी ने शिक्षा को आगे बढ़ाने में जो कार्य किया वो अतुल्य है, पर तुम अपना कार्य भूल रहे हो इतिहास। श्रोताओं को एक अच्छा सा देशभक्ति गीत तो सुनवाओ।
0: हाँ।

0: इस गीत के बाद अब आगे भी तो बताओ और क्या क्या किया लाला जी ने।
1: अब तुम तो जानते ही हो कि कितने देशभक्त और सेवा भाव वाले व्यक्ति थे लाला जी। एक बार की बात है, उन दिनों देश में अकाल पड़ा, लाला जी से रहा न गया। उन्होंने पीड़ितों की सेवा करने का निश्चय कर लिया। प्रभावित इलाकों में जाकर वे अन्न और दूसरी सहायता पहुंचाने में लग गए।
0: वे क्रांतिकारी विचारधारा वाले व्यक्ति थे। उन्होंने उर्दू दैनिक वंदे मातरम में लिखा, मेरा मजहब हक परस्ती है, मेरी मिल्लत कौम परस्ती है, मेरी हबादत खलक परस्ती है, मेरी अदालत मेरा अंतःकरण है, मेरी जायदाद मेरी कलम है, मेरा मंदिर मेरा दिल है और मेरी उमंगें सदा जवान हैं।
1: धर्म के बारे में उनका विचार था, धर्म सिखाया नहीं जा सकता, वो उसी वातावरण में उन्नति पाता है जिससे विचारों की मलिनता हटा दी गई हो। धर्म ठीक विचार है, सही अनुभव है और उचित कार्य है। कितने लोग ऐसी सुलझी हुई बात कह पाते हैं।
0: उनके ये शब्द तो अनमोल हैं। जो धर्म वर्तमान सामाजिक ढांचे को कर्मों के आधार पर सही बताए और जायदाद विरासत और विवाह के कानून की बाबत प्रचलित विचारों का पक्ष ले, वो धर्म झूठा है। इस कड़कती हुई बात से उनके व्यक्तित्व का रौब और साहस झलकता है।
1: कई बार जेल यात्राएं की, कई बार उन्हें छल से फंसाया भी गया, पर अपने साहस को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। जेलों में भी रहे तो पुस्तकें लिखते रहे। महान अशोक, श्री कृष्ण और छत्रपति शिवाजी पर उन्होंने पुस्तकें लिखी। इटली के महान क्रांतिकारियों मेज़िनी और गैरिबाल्डी पर भी उन्होंने पुस्तकें लिखी। वे अच्छे लेखक थे, अंग्रेजी के विद्वान थे, परंतु पुस्तकें उर्दू में ही लिखते थे। साधारण जनता के समझ में आने वाली भाषा उन दिनों उर्दू ही थी।
0: मांडले की जेल यात्रा से लौटते ही उन्होंने वकालत छोड़ दी, देश को ही समर्पित हो जाने का फैसला ले लिया। 1914 में कांग्रेस ने उन्हें एक डेप्यूटेशन पे इंग्लैंड भेजा। लाला जी काम खत्म हो जाने के बाद भी वहीं बने रहे, फिर वहां से जापान चले गए। जापान से लौटने को ही थे कि विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। भारत सरकार ने उन्हें लौटने की आज्ञा नहीं दी, इसलिए वे दोबारा इंग्लैंड होते हुए अमरीका निकल गए। वहां उन्होंने देश हित में काफी काम किया। उनकी पुस्तक यंग इंडिया वहां बहुत प्रसिद्ध हुई।
1: अरे इतिहास, अपनी धुन में इतने मगन हो कि गीत का समय हो गया ये भी भूल गए।
0: मैं इतिहास हूँ, कुछ नहीं भूलता। ये लो तुम्हारा पसंदीदा देशभक्ति गीत भी लगा दिया। श्रोताओं के साथ तुम भी इसका आनंद लो।

0: हाँ, गीत तो बहुत ही सुंदर था, पर इससे भी सुंदर बात ये है कि तुम लाला लाजपत राय की बातें सुना रहे हो। आगे तो सुनाओ।
1: हाँ, तो आगे की बात ये है कि जब वे स्वदेश लौटे तो उन दिनों कांग्रेस का आंदोलन जोरों पर था। कलकत्ता के अधिवेशन में लालाजी इसके प्रधान चुने गए, पर थोड़े ही दिनों बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया गया। उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, पर बिना इसकी परवाह किए वो देश सेवा में रत रहे।
0: 1928 में साइमन कमीशन हिंदुस्तान आया। कांग्रेस ने इसे बॉयकॉट किया और जहां भी ये कमीशन गया इसे विरोध ही झेलना पड़ा। देश भर में काले झंडों से इसका स्वागत किया जा रहा था। ऐसे ही जब ये जत्था लाहौर पहुंचा तो स्टेशन पर हजारों की भीड़ ने साइमन वापस जाओ के नारे लगाना शुरू कर दिया।
1: लोगों की अपार भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लालाजी सबसे आगे विरोध में खड़े थे, इसलिए कई लाठियां उनके सीने में एक साथ लगी। भय से पीछे हट जाने के बजाय उन्होंने गर्जना की कि मेरी छाती पर लगा एक एक वार भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की काठी में एक एक कील साबित होगा।
0: पंजाब केसरी थे वो, पर आखिर थे तो इंसान ही, कितना सहते। छाती लाठियों के वार से सूज गई और बुखार रहने लगा। अंत में इन्हीं वारों की वजह से उनके प्राण निकले और 17 नवंबर 1928 को वे धरती धाम से कूच कर गए।
1: भारत माँ के इस लाडले ने अपने जैसे कई वीर सपूतों को बनाने में अप्रतिम योगदान दिया और अपना ही नहीं कईयों का जीवन सफल किया। ऐसे महान देशभक्तों को शत शत नमन।

0: मुकाबला फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। तो अब दीजिए हमें इजाजत, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे,
3: तब तक के लिए नमस्कार।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: अभी आप सुन रहे थे आजाद हिंद कार्यक्रम का प्रसारण। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: मैं हूं हरि प्रसाद चौरसिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
3: कुछ याद उन्हें भी कर लो।
4: मैं हूं मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: जो लौट के घर न आए।
5: मैं हूं पवन सिन्हा और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारत को प्रणाम कीजिए, यह है तो हम हैं, हम जिन्हें पूजते हैं वो भी इसी भारत माता की संतान है। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण अपने रेडियो मित्र भारती के साथ। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर सागर।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त कार्यक्रम सुर सागर का है। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं गायन वादन, लोकगीत, गजलें और बहुत कुछ। आज आप सुनेंगे भक्ति पदों का गायन।

0: कलाकार हैं पूर्वी सप्रे। ये प्रस्तुति हुई भारत भवन में आयोजित संतवाणी समारोह में।
1: आज की सभा की शुरुआत हम सृष्टि पूर्वी सप्रे के गायन से कर रहे हैं। पूर्वी सप्रे और उनके सभी संगत कलाकारों को कर्तध्वनि से आइए हम इस उदीमान संभावनाशील प्रतिभा का अभिनंदन करें, स्वागत करें। आज की सभा में आपके साथ जो संगत कलाकार मंचासीन हो रहे हैं, तबले पर उस्ताद इकरार हुसैन, हारमोनियम पर शियातुल अर्जवाल, तानपुरी पर शंभवी और शिविका सक्सेना, सारंगी पर श्री सिराज हुसैन और मंजीरी पर श्री सुहास बाजखेड़े। प्रिय श्रोताओं, संगीत अनंत की यात्रा है। इस सृष्टि की पहली श्रुति ओंकार से निकला है नाद। हमारी ऋषि परंपरा ने नाद को पराशक्ति कहा, ईश्वर कहा, प्रार्थना और पूजा कहा। जाने कितने रूपों में ढलती रही है यह अमृतवाणी। इसी से प्रेरित होकर साधक मनीषियों ने परंपराओं, प्रवृत्तियों और घरानों का बहुरंगी संसार बसाया। पीढ़ियों को इस महान विरासत का उत्तराधिकार सौंपा। इस महादेश का सौभाग्य है कि संस्कारवान पीढ़ियां सुरों का परचम थामे भारतीय संस्कृति का दिग दिगंत उद्घोष करती रही हैं। संतवाणी स्वर, शब्द और गान की त्रिवेणी में आवाहन करती इसी महिमा का जीवंत साक्ष्य है। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश का गौरवशाली अतीत हमें बार बार याद दिलाता है कि यहाँ ग्वालियर संगीत घराना भी हुआ करता है। उसकी महिमा का साक्ष्य आज भी नई पीढ़ी के संगीतकारों में हमें दिखाई देता है। सृष्टि पूर्वी सप्रे कैसे ही इस घराने की होनहार और संभावना से भरी प्रतिभा है। ग्वालियर के ही संगीत संस्कारी परिवार में आपका जन्म हुआ। गुरु तुल्य दादी श्रीमती माणिक सप्रे और गायक पिता श्री विजय सप्रे से बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत मूर्धन्य गायक पंडित श्रीराम मराठी तथा बाद में उस्ताद इकरार हुसैन के सानिध्य में आपने कंठ संगीत की बारीकियों तथा विधागत गायन के व्यवहार की तालीम ली। अपनी अनेक स्वतंत्र प्रस्तुतियों के साथ पूर्वी ने तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर सहित मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के अनेक उत्सवों में दस्तक दी है। जवाहर बाल भवन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आपको राज्य स्तरीय बालश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। आज की सभा में सुश्री पूर्वी ने गायन के लिए तुलसी, तुकाराम और कबीर जैसे संत कवियों के कालजयी पदों का चयन किया है। सुश्री पूर्वी से हमारा निवेदन है, गायन प्रारंभ करें।
2: सभी गुरुजनों से आज्ञा।

0: कार्यक्रम सुरसागर में आप सुन रहे थे भक्ति पदों का गायन, कलाकार थी पूर्वी सप्रे। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर सागर। आप हैं रेडियो आजाद हिंद के प्रसारण के साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
2: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो।

0: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश। आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आज़ाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद रेडियो रूपक।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद के ज्ञान भंडार का परिचय आपको मिला। उन्हें भारतीय प्राचीन ग्रंथों के साथ साथ देश तथा संप्रदायों के इतिहास का भी ज्ञान था। वे सिर्फ पढ़ते ही न थे बल्कि तथ्यों को अपने तर्क से समझकर उसकी व्याख्या भी करते थे।
1: स्वामी जी पूरे देश में भ्रमण कर लोगों से मिलकर ये समझे थे कि हमारे देश में दो प्रचलित धारणाएं हैं। एक मत ये है कि जो कुछ पश्चिम देशीय है वही निर्दोष, पूर्ण और सर्वांग सुंदर है। हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं जो विचार योग्य हो या जिसका पालन किया जा सके।
0: दूसरे मतावलंबी ये समझते हैं कि हमारे देश का आचार, आचरण और विचार ही श्रेष्ठ हैं। हम पश्चिम से कुछ सीख सकते हैं ये उन्हें मान्य नहीं। दोनों ही विचार संकुचित तथा संकीर्ण हैं।
1: स्वामी जी ने दोनों मतों को समझा और इन धुंधली धारणाओं को दूर करने के लिए प्राच्य तथा पाश्चात्यों नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में उन्होंने दोनों संस्कृतियों की तुलना, प्रशंसा तथा आलोचना की है। इसमें उन्होंने उन सभी तथ्यों को शामिल किया है जिनमें विभिन्न संस्कृतियों का जन्म हुआ है।
0: आज हम स्वामी जी के कुछ विचारों को देखेंगे कि उन्होंने प्राच्य और पाश्चात्य जातियों के चरित्र के बारे में क्या कहा है।
2: प्रत्येक जाति का एक जातीय उद्देश्य है। प्राकृतिक नियमों के अनुसार या महापुरुषों की प्रतिभा के बल से प्रत्येक जाति की रीति नीति उस उद्देश्य को सफल करने के लिए उपयोगी है। प्रत्येक जाति के जीवन में इस उद्देश्य एवं उसके उपयोगी उपाय स्वरूप आचार को छोड़कर और सब रीति नीति व्यर्थ है। इन व्यर्थ की रीति नीतियों के ह्रास या वृद्धि से कुछ विशेष बनता बिगड़ता नहीं। यदि उस विशेष उद्देश्य पर आघात होता तो वो जाति जरूर नष्ट हो जाती है।
1: उन्होंने विभिन्न जातियों की तुलना भारतीयों से की है।
2: तीन वर्तमान जातियों की तुलना कीजिए जिनका इतिहास आप थोड़ा बहुत जानते हैं। वे हैं फ्रांसीसी, अंग्रेज और भारतीय। राजनीतिक स्वाधीनता फ्रांसीसी जातीय चरित्र का मेरुदंड है। फ्रांसीसी प्रजा सब अत्याचारों को शांत भाव से सहन करती है। करों के भाव से पीस डालिए फिर भी वो चूं तक न करेगी। सारे देश को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर डालिए पर कोई आपत्ति न की जाएगी, किंतु जब कोई उनकी स्वाधीनता में हस्तक्षेप करता है तब सारी जाति पागलों की तरह प्रतिघात करने लगती है। कोई व्यक्ति किसी के ऊपर जबरदस्ती अपना हुक्म नहीं चला सकता। यही फ्रांसीसियों के चरित्र का मूल मंत्र है। ज्ञानी, मूर्ख, धनी, दरिद्र, उच्च वंशीय, नीच वंशज, सभी को राज्य के शासन और सामाजिक स्वाधीनता में समान अधिकार है। इसके ऊपर हाथ डालने वाले को ही इसका फल भोगना होगा।
0: अब सुनिए उन्होंने अंग्रेज जातीय चरित्र के बारे में क्या कहा था।
2: अंग्रेजों के चरित्र में व्यवसाय बुद्धि तथा आदान प्रदान की प्रधानता है। अंग्रेजों की आवश्यकीय विशेषता है समान भाग, न्याय विभाग। अंग्रेज राजा और कुलीन जाति के अधिकार को नतमस्तक होकर स्वीकार कर लेती हैं, परंतु यदि गांठ में से पैसा बाहर करना हो तो वे हिसाब मांगते हैं। राजा है तो अच्छी बात है, उसका लोग आदर करेंगे, किंतु यदि राजा रुपया चाहे तो उनकी आवश्यकता और प्रयोजन के संबंध में हिसाब किताब समझा बूझा जाएगा, तब कहीं देने की बारी आएगी। राजा की बलपूर्वक रुपया इकट्ठा करने की इच्छा से यहाँ विप्लव खड़ा कर दिया, उन लोगों ने राजा को मार डाला।
1: अब वे भारतीयों के चरित्र की व्याख्या करते हैं।
2: भारतीय कहते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक स्वाधीनता बहुत अच्छी चीज है, किंतु वास्तविक चीज आध्यात्मिक स्वाधीनता अर्थात मुक्ति है। यही जातीय जीवन का उद्देश्य है। वैदिक, जैन, बौद्ध, द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत सभी इस संबंध में एकमत हैं। इसमें हाथ न लगाना, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। इसे छोड़कर और चाहे जो कुछ करो चुप रहेंगे। लाठी मारो, काला कहो, सर्वस्व छीन लो, इससे होता कुछ नहीं, किंतु इसी दरवाजे को छोड़ दो। प्राचीन काल में पठान लोग आते जाते थे, कोई स्थिर होकर राज्य नहीं कर सका क्योंकि धर्म पर वे बराबर आघात करते रहे। परंतु दूसरी ओर मुगल राज्य किस प्रकार सुदृढ़, प्रतिष्ठित तथा बलशाली हुआ, कारण यही है कि मुगलों ने इस स्थान पर आघात नहीं किया। भारतीय ही तो मुगलों के सिंहासन के आधार थे। जहांगीर, शाहजहां, दारा, शिकोह आदि सभी की माताएं हिंदू थीं। और देखो, जो ही भाग्यहीन औरंगजेब ने उस स्थान पर आघात किया, क्यों ही इतना बड़ा मुगल राज्य स्वप्न की तरह हवा हो गया। अंग्रेजों का ये सुदृढ़ सिंहासन किस चीज के ऊपर प्रतिष्ठित है? कारण यही है कि किसी भी अवस्था में अंग्रेज उस धर्म के ऊपर हस्तक्षेप नहीं करते। पादरियों ने थोड़ा बहुत हाथ डालकर ही तो सन 1857 में हंगामा उपस्थित किया था। अंग्रेज जब तक इसको अच्छी तरह समझते तथा इसका पालन करते रहेंगे, तब तक उनका राज्य कई पीढ़ियों तक संभव है बना रहे। विज्ञ बहुदर्शी अंग्रेज भी इस बात को समझते हैं।
0: उन्होंने समझाया था कि हर देश तथा जाति के पीछे एक खास शक्ति होती है, उसी जाति से चरित्र गठन होता है।
2: उसी एक महाशक्ति का फ्रांसीसियों के विस्तार के रूप में और हिंदुओं के हृदय में मुक्ति लाभ की इच्छा के रूप में विकास हुआ है। किंतु इसी महाशक्ति की प्रेरणा से कई शताब्दियों से नाना प्रकार के सुख दुखों को झेलते हुए फ्रांसीसी और अंग्रेजी चरित्र गठित हुआ है, और उसी की प्रेरणा से लाखों शताब्दियों के आवर्तन में हिंदुओं के जातीय चरित्र का विकास हुआ है।
1: उन्हें अपने देशवासियों पर पूरा भरोसा था कि एक दिन वे अपने खोए हुए आदर्शों को फिर से प्राप्त कर लेंगे।
2: ये सोचना कि हमारे राष्ट्रीय आदर्श में भूल रही है निरी मूर्खता है। पहले अन्य देशों में जाइए, अपनी आंखों से देखकर, दूसरों की आंखों से नहीं। उनकी अवस्था और रहन सहन का अध्ययन कीजिए, और यदि मस्तिष्क हो तो उन पर विचार कीजिए। फिर अपने शास्त्रों और पुराने साहित्य को पढ़िए और समस्त भारत की यात्रा कीजिए तथा विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले आदिवासियों के चाल चलन, आचार विचार का विस्तीर्ण दृष्टि और उन्नत मस्तिष्क से, बेवकूफों की तरह नहीं, विचार कीजिए। तब समझ सकोगे कि जाति अभी भी जीवित है, दुख दुखी चल रही है, केवल बेहोश हो गई है। और देखोगे कि इस देश का प्राण धर्म है, भाषा धर्म है तथा भाव धर्म है। आपकी राजनीति, समाज नीति, रास्ते की सफाई, प्लेग निवारण, दुर्भिक्ष पीड़ितों को अन्नदान आदि आदि चिरकाल से इस देश में जैसे हुआ है वैसे ही होगा। अर्थात धर्म के द्वारा यदि होगा तो होगा, अन्यथा नहीं। आपके रोने चिल्लाने का कुछ भी असर न होगा।
1: स्वामी जी सभी को मनुष्य बनने की शिक्षा देते थे, व्यर्थ के आचार विचार को वे नहीं मानते थे।
2: एक बात पर विचार कर देखिए, मनुष्य नियमों को बनाता है या नियम मनुष्यों को बनाते हैं? मनुष्य रुपया पैदा करता है या रुपया मनुष्यों को पैदा करता है? मनुष्य कीर्ति और नाम पैदा करता है या कीर्ति और नाम मनुष्य पैदा करते हैं? मेरे मित्रों, पहले मनुष्य बनिए, तब आप देखेंगे कि वे सब बाकी चीजें स्वयं आपका अनुसरण करेंगी। परस्पर के घृणित द्वेष भाव को छोड़िए और सउद्देश्य, सदुपाय, सत्साहस एवं सद्वीर्य का अवलंबन कीजिए। आपने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो अपनी कीर्ति यहीं छोड़ जाइए। तुलसी आयो जगत में, जगत हंसे तुम रोए, ऐसे करनी कर चलो, आप हंसे जग रोए। अगर ऐसा कर सको तब तो तुम मनुष्य हो, अन्यथा तुम कैसे मनुष्य हो?
0: हमारे देश में बहुत से लोग अंग्रेजों के चाल चलन का अनुसरण करने लगे थे। उसी में वे अपने को सभ्य तथा अंग्रेजों के बराबर समझते थे। परंतु स्वामी जी ने उन्हें समझाकर कहा था,
2: पाश्चात्य जाति के गुणों को अपने सांचे में ढाल कर लेना होगा। मेरे मित्रों, एक बात आपको और समझ लेना चाहिए, हमें अवश्य ही अन्यान्य जातियों से बहुत कुछ सीखना है। जो मनुष्य कहता है कि हमें कुछ नहीं सीखना है, समझ लो कि वो मृत्यु की राह पर है। जो जाति कहती है कि हम सर्वज्ञ हैं, उसकी अवनति के दिन बहुत निकट हैं। जितने दिन जीना है उतने दिन सीखना है, उसे अपने सांचे में ढाल लेना है, अपने असल तत्व को सदा बचाकर फिर बाकी चीजें सीखनी होंगी। खाना तो सब देशों में एक ही है, पर हम पैर समेट कर खाते हैं और यूरोपीय पैर लटका कर खाते हैं। अब मान लो कि मैं उन्हीं की तरह खाता हूं, तो क्या मुझे भी उन्हीं की तरह टांग लटका कर बैठना पड़ेगा? ऐसा होने से निश्चय ही मेरी टांग यम के ग्रह की ओर प्रस्थान करेंगी। इस दुख में जो प्राण जाएगा उसका क्या लाभ? इसलिए हमें उनका भोजन पैर समेट कर ही खाना होगा। इसी प्रकार जो कुछ भी विदेशी बातें सीखनी होंगी, उन्हें अपनी बनाकर पैर समेट कर अपने वास्तविक जातीय चरित्र की रक्षा कर तब सीखनी होगी।
1: उन्होंने जातिगत भिन्नता को समझाया था, उसके कारण बताए थे, पर कभी किसी की निंदा नहीं की।
2: वे भी अच्छे हैं और हम भी अच्छे हैं। काको बंदों काको निंदों दोनों पल्ला भारी। हाँ, ये अवश्य है कि भले की भी श्रेणियां हैं। हमारे विचार से तीन चीजों से मनुष्य का संगठन होता है, शरीर मन और आत्मा। पहले शरीर की बात लीजिए, जो सबसे बाहरी चीज है। देखिए शरीर में कितना भेद है, नाक मुंह गठन लंबाई चौड़ाई रंग केश आदि में कितनी विभिन्नताएं हैं।
0: उन्होंने रंग भेद पर कहा था,
2: आधुनिक पंडितों का विचार है कि रंग की भिन्नता वर्ण संकरता से उपस्थित होती है। गर्म देश और ठंडे देश के भेद से कुछ भिन्नता जरूर होती है, किंतु काले और गोरे का असली कारण पैतृक है। बहुत ठंडे देशों में भी काले रंग की जातियां देखी जाती हैं, एवं अत्यंत उष्ण प्रदेश में भी खूब गोरी जाति बसती है। कनाडा निवासी अमेरिका के आदि मनुष्य और उत्तरीय ध्रुव प्रदेश की एस्किमो जाति काली है, तथा भूमध्य रेखा के पास बोर्नियो सेलेबीज आदि टापुओं में बसने वाले आदिम निवासी गौरांग हैं, जबकि उनकी जलवायु गर्म है। पर चाहे गोरे हों अथवा काले, दुनिया की सब जातियों की अपेक्षा ये भारतीयों की जाति अधिक सुंदर और श्री संपन्न है। ये बात मैं अपनी जाति की बढ़ाई करने के लिए नहीं कर रहा हूं, ये जग प्रसिद्ध बात है। इस देश में प्रति सैकड़ा जितने स्त्री पुरुष सुंदर हैं उतने और कहां है। इसके बाद विचार कर देखो, दूसरे देशों में सुंदर बनने में जो लगता है उसकी अपेक्षा हमारे देश में कितना कम लगता है। कारण यह है कि हमारा शरीर अधिकांश खुला रहता है। दूसरे देशों में कपड़े लत्ते से ढककर कुरूपता को बदलकर सुंदरता बनाने की चेष्टा की जाती है।
1: परंतु स्वामी जी ने पश्चिमी देशों के लोगों के स्वास्थ्य की बहुत तारीफ की थी,
2: किंतु स्वास्थ्य के संबंध में पाश्चात्य देशवासी हमारी अपेक्षा अधिक सुखी हैं। उन देशों में 40 वर्ष के पुरुष को जवान कहते हैं, छोकरा कहते हैं, 50 वर्ष की स्त्री युवती कहलाती है। अवश्य ही ये लोग अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, एवं सबसे अच्छी बात तो ये है कि बाल विवाह नहीं करते। हमारे देश में जो दो एक बलवान जातियां हैं उनसे पूछ कर देखिए कितनी उम्र में विवाह करते हैं। गोरखाली पंजाबी जाट अफरीदी आदि पहाड़ी जातियों से पूछिए। इसके बाद शास्त्र को पढ़ देखिए, 30 25 और 20 वर्ष में ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों को क्रमानुसार विवाह करने को लिखा है। आयु बल वीर आदि में इनमें और हम लोगों में बहुत भेद है। हमारी बल वृद्धि 30 वर्ष की उम्र पार करते ही शेष हो जाती है और वे लोग उस समय बदन झाड़ कर उठ खड़े होते हैं।
0: स्वामी जी ने दोनों देशों में होने वाली बीमारियों की भी व्याख्या बड़े ही रोचक ढंग से की है।
2: हम लोग निरामिष भोजी हैं, हमें अधिकांश पेट के ही रोग होते हैं। हमारे अधिकतर बूढ़े इसी पेट की बीमारी से मरते हैं। वे मांस भोजी हैं, उन्हें अधिकतर हृदय की बीमारी होती है। पाश्चात्य देशों में अधिकतर बूढ़े बूढ़ी हृदय रोग और फेफड़े की बीमारी से मरते हैं। एक पाश्चात्य देशीय विद्वान डॉक्टर पूछते हैं कि क्या पेट की बीमारी से पीड़ित लोग प्रायः निरुत्साह और बैरागी होते हैं। हृदय आदि शरीर के ऊपरी भाग के रोगों में आशा और पूरा विश्वास रहता है। हैजे का रोगी आरंभ से ही मृत्यु के भय से अस्थिर हो जाता है। टीबी का रोगी मरने के समय तक भी विश्वास करता है कि उसे आराम हो जाएगा। अतएव क्या इसलिए भारतवासी सदा मृत्यु और वैराग्य की बातें कहा करते हैं? मैं तो अभी तक इस प्रश्न का कोई समुचित उत्तर ही नहीं सोच सका, किंतु बात विचारणीय है अवश्य।
1: उन्होंने आगे और भी कहा है कि
2: हमारे देश में दांत और केश के रोग बहुत कम होते हैं और उस देश में बहुत ही कम लोगों के स्वाभाविक दांत होते हैं। गंजे तो सभी जगह पाए जाते हैं। हमारी स्त्रियां नाक और कान गहना पहनने के लिए छिदवाती हैं। वहां की भले घर की स्त्रियां नाक कान नहीं छिदवाती, किंतु कमर को बांधकर रीढ़ की हड्डी को मरोड़कर प्लीहा और यकृत को अपनी जगह से हटाकर शरीर को ही कुरूप बना डालती हैं। अपने शरीर को सुंदर बनाने के कारण उन्हें मृत्यु का कष्ट झेलना पड़ता है।
0: स्वामी जी की पैनी नजर उनके पोशाक पर भी पड़ी थी। उसकी तुलना भी वे हमारी पोशाकों से करते हैं।
2: पाश्चात्य देशीय पोशाक कामकाज करने के लिए अधिक उपयुक्त होती है। धनी लोगों की स्त्रियों की सामाजिक पोशाक को छोड़कर अन्य स्त्रियों की पोशाक भद्दी होती है। हमारी स्त्रियों की साड़ी और हमारे पुरुषों का चोगा, चपकन और पगड़ी के सौंदर्य की तुलना इस पृथ्वी पर है ही नहीं। ढीले ढाले कपड़ों की सुंदरता को तंग कपड़े पा ही नहीं सकते। हमारे सभी कपड़े कलीदार और ढीले ढीले रहते हैं, इसलिए उन्हें पहनकर कामकाज नहीं किया जा सकता। काम करने में वे नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। इनका फैशन कपड़े में है और हमारा फैशन गहने में। अब थोड़ा थोड़ा हमारा ध्यान कपड़े की ओर भी गया है। स्त्रियों की पोशाक के पेरिस और पुरुषों के लिए लंदन केंद्र है। पेरिस की नर्तकियां नए नए फैशन निकालती हैं। किसी प्रसिद्ध नर्तकी ने जो पोशाक पहनी उसी का अनुकरण करने के लिए सब दौड़ पड़ती हैं। आजकल कपड़ा बेचने वाले बड़े बड़े दुकानदार नए फैशन का प्रचार करती हैं। कितने करोड़ रुपये प्रतिवर्ष इस पोशाक बनाने में लगते हैं, इसे हम समझ नहीं सकते।
1: उन्हें पश्चिमी फैशन का भी ज्ञान था। वे बड़े मजे लेकर वहाँ के फैशन की बात करते हैं।
2: इन नई पोशाकों की सृष्टि करना इस समय एक बड़ी कला हो गई है। किसी स्त्री के शरीर और केश के रंग के साथ किस रंग की पोशाक मेल खाएगी, उसके शरीर का कौन अंग ढकना होगा और कौन खुला रखना होगा, इत्यादि बातों पर खूब गंभीर विचार कर तब पोशाक तैयार करनी पड़ती है। इसके बाद दो चार बहुत ऊंची श्रेणी की महिलाएं जो पोशाक पहनती हैं, वही पोशाक अन्य स्त्रियों को भी पहननी पड़ेगी, नहीं तो उनकी जाति चली जाएगी। इसी का नाम फैशन है। फिर भी ये फैशन घड़ी घड़ी बदलता है। वर्ष के चार मौसमों में चार बार बदलना तो आवश्यक ही है। इसके अलावा और भी कितने समय आते हैं जब पोशाक बदली जाती है ना मजे की बात।
0: इन बातों को बताते हुए स्वामी जी खूब मजा लेते थे। फैशन के बारे में तो उनकी बहुत हंसी उड़ाते थे।
2: जो बहुत अमीर होते हैं उनके कपड़े पेरिस से बनकर आते हैं, बाकी लोग अपने देश में ही उनकी नकल कर कपड़े बनवाते हैं, किंतु स्त्रियों की टोपियां तो फ्रांस की ही बनी होनी चाहिए। जिसके पास फ्रांस की ही बनी टोपी नहीं है वो अच्छी स्त्री ही नहीं समझी जाती। अंग्रेज और जर्मन स्त्रियों की पोशाक अच्छी नहीं समझी जाती। 10-20 अमीर स्त्रियों को छोड़कर वे अच्छे कपड़े नहीं पहनती, इसलिए दूसरे देशों की स्त्रियां उन पर हंसती हैं। बहुत से अंग्रेज पुरुष बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं। बिना किसी भेद के अमेरिका के सभी स्त्री पुरुष बहुत सुंदर कपड़े पहनते हैं। यद्यपि विदेशी वस्त्रों का आना रोकने के लिए अमेरिका की सरकार पेरिस और लंदन के कपड़ों पर बहुत अधिक चुंगी लेती है, फिर भी सभी स्त्रियां अपने कपड़े पेरिस तथा सभी पुरुष अपने कपड़े लंदन से ही मंगवाते हैं। तरह तरह के रंग के पश्मीना और बनात तथा रेशमी कपड़े प्रतिदिन निकलते हैं। लाखों आदमी उसी को काट छांट कर पोशाक बनाते हैं। पोशाक यदि ठीक ढंग की न हुई तो सभ्य पुरुष या स्त्री का रास्ते में निकलना ही कठिन हो जाता है। हमारे देश में कपड़ों के फैशन का यह हंगामा नहीं है, पर गहनों में थोड़ा थोड़ा फैशन घुस रहा है। रेशमी और ऊनी कपड़े के व्यापारी उन देशों में दिन रात फैशन के परिवर्तनों पर और लोगों को कौन फैशन अधिक पसंद हुआ इस सब पर खूब तीखी नजर रखते हैं, अथवा कोई नया फैशन तैयार कर उस ओर लोगों के मन को आकृष्ट करने की चेष्टा करते हैं। जहां एक बार भी अंदाजा पक्का बैठ गया कि वो व्यवसायी मालामाल हो गया। जब तृतीय नेपोलियन फ्रांस देश के बादशाह थे, उस समय साम्राज्ञी येजुनी पाश्चात्य देश की वेशभूषा की अधिष्ठात्री देवी समझी जाती थी। उन्हें कश्मीरी शाल बहुत पसंद था, इसलिए यूरोपीय लाखों रुपए का शॉल खरीदते थे। नेपोलियन के पतन के पश्चात फैशन बदल गया और कश्मीरी शॉलों की खपत यूरोप में रुक गई।
0: स्वामी जी जब ये बातें सुनाते तो लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाते थे, क्योंकि उनका सुनाने का ढंग ही इतना मजेदार होता था कि लोग सुनते ही चमत्कृत हो जाते थे। अब स्नान करने की प्रथा पर वे क्या कहते थे, सुनिए।
2: पहले शरीर को ही लेकर देखिए, बाह्य और आभ्यंतरिक शुद्धि का नाम ही पवित्रता है। मिट्टी, जल आदि के द्वारा शरीर शुद्ध होता है। दुनिया की ऐसी कोई जाति नहीं है जिसका शरीर भारतीयों के सदृश साफ हो। भारतीयों के अतिरिक्त और किसी भी जाति के लोग शौचादि में जल का इतना अधिक व्यवहार नहीं करते। यदि ये कहें कि पाश्चात्य देश वाले नहाते ही नहीं तो भी कोई हर्ज नहीं। भारत में आने के कारण अंग्रेजों ने अपने देश में स्नान करने की प्रथा चलाई है। जो विद्यार्थी विलायत से पढ़कर लौटे हैं उनसे पूछिए कि वहां स्नान करने का कितना कष्ट है। जो लोग स्नान करते हैं, अर्थात सप्ताह में एक दिन, उसी दिन वे भीतर पहनने का कपड़ा, गंजी, अधबइयां आदि बदलते हैं। अवश्य ही कुछ अमीर लोग प्रतिदिन स्नान करते हैं। अमेरिका वालों में प्रतिदिन स्नान करने वालों की संख्या अधिक है। जर्मनी वाले सप्ताह में एक दिन और फ्रांस तथा दूसरे देश वाले तो बहुत ही कम स्नान करते हैं। स्पेन, इटली आदि गर्म देश हैं, फिर भी वहां लोग बहुत कम स्नान करते हैं। लहसुन बहुत खाते हैं, पसीना बहुत होता है, पर सात जन्म में भी जल का स्पर्श नहीं होता। उनके शरीर की दुर्गंध से भूतों के 14 पुरखे भी भाग जाएंगे। भूत तो लड़के बच्चे हैं।
1: इसी संदर्भ में स्वामी जी ने एक आप बीती कही थी।
2: सभ्यता की राजधानी, रंग ढंग भोग विलास का स्वर्ग, विद्या शिल्प के केंद्र पेरिस में एक बार मेरे एक धनी मित्र बुलाकर ले गए। एक किले के समान होटल में उन्होंने मुझे ठहराया। राजाओं जैसा खाना मिलता था, किंतु स्नान घर का नाम भी नहीं था। 2 दिन किसी प्रकार मैंने सहा, फिर मुझसे नहीं सहा गया था। तब मैंने अपने मित्र से कहा, भाई ये राजभोग तुम्हें ही मुबारक हो, मैं यहाँ से बाहर जाने के लिए व्याकुल हो रहा हूँ। ये भीषण गर्मी और स्नान करने का कोई ठिकाना ही नहीं, पागल कुत्ते के जैसे मेरी दशा हो रही है। ये बात सुनकर मेरे मित्र बहुत दुखी हुए और होटल के कर्मचारियों पर बड़े कुपित हुए। उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हें यहां नहीं ठहरने दूंगा, चलो चलो कोई दूसरी अच्छी जगह ढूंढी जाए। 12 बड़े होटल देखे गए, पर स्नान करने का प्रबंध कहीं नहीं था। अलग स्नान करने के स्थान थे जहां एक बार 4-5 रुपया देकर स्नान किया जा सकता था। उसी दिन शाम को मैंने एक अखबार में पढ़ा कि एक बुढ़िया स्नान करने के लिए हौज में बैठी और वहीं मर गई। डॉक्टर चाहे जो कहें, पर मैं तो यही कहूंगा कि जीवन में प्रथम बार ही बुढ़िया के अंग को उतने जल का स्पर्श हुआ होगा, इसलिए उसकी अचानक मृत्यु हो गई। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। रूस वाले तो सर्वथा मलेच्छ हैं, तिब्बत से ही मलेच्छता आरंभ हो जाती है, पर अमेरिका के प्रत्येक निवास गृह में अवश्य ही स्नानागार और नल रहता है।
0: सुनाते सुनाते उन्होंने भारतीयों को भी आड़े हाथों लिया।
2: किंतु देखिए, हम में और इनमें कितना अंतर है। हम हिंदू किस लिए स्नान करते हैं? हमें अधर्म का डर है, और पाश्चात्य लोग शरीर साफ करने के लिए हाथ मुंह धोते हैं। हमारे शरीर में चाहे मैल और तेल लगा ही क्यों ना रहे, सिर्फ ऊपर पानी उड़ेल लेने से हमारा काम चल जाता है। हमारे दक्षिणात्य भाई लोग इतना लंबा चौड़ा तिलक लगाते हैं, उसे झावे से भी धोकर साफ करना जरा टेढ़ी खीर है। हमारे स्नान करने की प्रथा बड़ी सरल है, कहीं भी डुबकी मार लेने से काम चल जाता है, किंतु पाश्चात्य देशों में ऐसा नहीं है। उन्हें एक टोकरी कपड़ा ही खोलना पड़ता है, बटन, हुक और काज का तो कहना ही क्या। हमें शरीर दिखलाने में कोई लज्जा नहीं है, उनके लिए अच्छा नहीं है। बाप बेटे के सामने विवस्त्र हो सकता है, पर स्त्रियों के सामने सिर से पैर तक कपड़ा पहनना ही होगा।
1: कहते कहते स्वामी जी भी हंस पड़े और बोले,
2: और फिर देश भेद के कारण जो कार्य अनिवार्य हैं, उन्हें समाज शांत रूप से अपना लेता है। हमारे जैसे गर्म देश में भोजन करने के समय हम आधा घड़ा पानी पी डालते हैं, फिर हम ना डकारें तो क्या करें। किंतु पाश्चात्य देशों में डकारना बहुत असभ्य काम है। पर खाते खाते जेब से रुमाल निकालकर यदि नाक झाड़कर साफ की जाए तो कोई हर्ज नहीं। किंतु हमारे देश में ये बड़ी घृणित बात है। ठंडे देशों में बीच बीच में नाक साफ किए बिना बैठा ही नहीं जा सकता। हम लोग मैले से अत्यंत घृणा करते हैं, फिर भी हम बहुत मैले रहते हैं। हमको मैले से इतनी घृणा है कि जिसने मैला छुआ उसे स्नान करना पड़ेगा। इसलिए दरवाजे पर मैले के ढेर को हम सड़ने देते हैं। सिर्फ ध्यान इसी बात का रहता है कि हम उसे छूते तो नहीं। पर इधर जो नरक कुंड का वास होता है उसका क्या। एक अनाचार के भय से दूसरा महाघोर अनाचार। एक पाप से बचने के लिए हम दूसरा गुरुतर पाप करते हैं। जो अपने घर में कूड़े का ढेर रखता है वो अवश्य ही पापी है, इसमें संदेह ही क्या है। उसका दंड भोगने के लिए उसे ना तो दूसरा जन्म ही लेने की आवश्यकता होगी और ना बहुत देर तक संसार में ठहरना ही पड़ेगा।
0: आपने स्वामी जी के बताए किस्से सुने। प्राच्य और पाश्चात्य में प्रचलित आचार व्यवहारों की विषमता को जाना। आगे की कड़ियों में हम आपको ऐसी ही कुछ और रोचक बातें सुनाएंगे।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: अभी आप सुन रहे थे रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये दुनिया
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। ये मेरा इंडिया। देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8।